FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 18वीं तिथि, तदनुसार 8 मई सन 2026। इस वक्त प्रातः के 8:58 व 40 सेकंड हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार। समाचार दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में ये आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों

0: पक्षों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरों मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

हमें ये जीवन किस लिए मिला है? अगर कभी बैठकर सोचने का वक्त मिले तो ज़रूर सोचना। हम मकान बनाना, पैसा जोड़ना, सुख सुविधाओं को इकट्ठा करना, इन सभी में अपनी पूरी उम्र गुजार देते हैं, पर चंद मिनट बैठकर सोचना ज़रूर चाहिए कि क्या ये सब साथ जाएगा। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। इस बीच का जो समय है ना, उसे जीवन कहते हैं, और वो सिर्फ सांसारिक मोह माया में बिताने के लिए नहीं है। संत लोग हमें बार बार जगाते हैं कि अगर उस परम पिता परमेश्वर के साथ जुड़ाव इस जन्म में नहीं हुआ तो फिर पीछे मुड़कर देखने पर सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही हाथ लगेगा।

दोस्तों, कई बार जीवन की राह में चलते चलते ऐसा मोड़ आता है जब हम खुद को थका हुआ और अकेला सा महसूस करते हैं। उस वक्त हमें एहसास होता है कि हमारी शक्ति बहुत सीमित है। ऐसे पलों में उस महाशक्ति की याद आती है जो हम सब की डोर को थामे हुए है।

इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये कुरुक्षेत्र केंद्र है। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान।

चित्रकूट में एकत्रित साधुओं तथा गुरुजनों की सभा में भरत विविध प्रकार से श्री राम के प्रति अपनी भक्ति और निष्ठा प्रकट करते हैं। प्रेम के प्रण को निभाते हुए पिता की मृत्यु, माता कैकेयी की कुबुद्धि, अन्य माताओं की विकलता तथा अवध निवासियों के परिताप, इन सभी अनर्थों के मूल में भरत स्वयं को पाते हैं। तब मुनि वशिष्ठ ने अनेक कथाएं सुनाते हुए भरत जी के परिताप का समाधान किया। प्रभु श्री राम ने कहा, हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानी करते हो। जीव की गति ईश्वर के अधीन होती है। तीनों काल तथा तीनों लोकों के सभी पुण्यात्माओं से तुम्हारा स्थान ऊंचा है। शिवजी साक्षी हैं कि ये पृथ्वी तुम जैसे पुण्यात्माओं के बल पर टिकी है। प्रेम और बैर छिपाए नहीं छिपते। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। वे मुनियों के पास निशंक चले जाते हैं, किंतु बधिकों को देखते ही भाग खड़े होते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। गायक स्वर थे राजेंद्र कचरू और चतुर सेन के। संगीत दिया था सतीश भाटिया ने। ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। आइए सुनते हैं समूह गान।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: ये आकाशवाणी है,
2: हर पल आपके साथ।
1: समाचार हो या सदाबहार गीत,
2: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
1: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
2: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
1: आकाशवाणी।

0: लत तो लगेगी ही, क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है।
1: ऐसा देश है मेरा, हाँ, ऐसा देश है मेरा।
0: ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार रात्रि 8:15 पर FM 101.4 MHz अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। तो सुनना ना भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार को।

आइए आपको जानकारी दे दें आज प्रसारित होने वाले बाकी के कार्यक्रमों की। सुनिए का प्रायोजित कार्यक्रम प्रातः 7:10 पर। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। अन्नदाता कार्यक्रम का समय है 6:30। ग्राम संसार आप सुनेंगे 7:00। गीता संदेश में आज श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक 55-57 की व्याख्या की जाएगी। व्याख्या करेंगे डॉक्टर सुरेश कुमार और समय रहेगा 6:20। प्रातः 7:40 पर सुनिएगा गांधी चर्चा। प्रातः 7:50 पर आप सुनेंगे बाजाए नगाड़ा। शाम 5:00 गाने नए पुराने। शाम 7:30 पर जय जवान और शाम 7:45 पर सुनिएगा गुलदस्ता। प्रातः 8:30 पर विविध रंगी कार्यक्रम सुबह सवेरे। सजीव फोन इन नमस्ते कुरुक्षेत्र का समय रहेगा प्रातः 10:00। प्रातः 9:30 पर सुनिएगा स्वरांजलि। कुछ बातों के साथ कुछ गीत सजाकर लाएंगे कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में रात्रि 8:00। रात्रि 10:00 फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चांदनी रातें प्रसारित किया जाएगा। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्रीय यानी आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से आज प्रसारित होने वाले

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल आबूधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। 2 अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend a meeting with the newly elected BJP MLAs, during which the party's legislative leader will be selected. The new Chief Minister of the State and the Council of Ministers will be sworn in tomorrow on the birth anniversary of Kobi Guru Rabindranath Tagore. Meanwhile, preparations are underway for the swearing-in ceremony at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Necessary administrative meetings have been held and tight security arrangements have been put in place for the occasion. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, senior BJP leaders and chief ministers from other states are expected to attend the oath-taking ceremony. In Tamil Nadu, with the formation of the new government getting delayed, political situation in the state talks have been held to reach the magic number 118 to prove majority. The DMK and the AIADMK had held the legislative party meetings of the newly elected MLAs yesterday. AIADMK General Secretary Edappadi Palaniswamy has been elected as the leader of the legislative party meeting at Puducherry. The crucial meeting of the newly elected MLAs of VCK, CPI and CPIM is to take place today on the issue of lending support to the single largest party, TVK, even as the Governor Vishwanath Arlekar had demanded from them. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal chaired a meeting with the Chairman of the Indian Chamber of Food and Agriculture, Dr. M.J. Khan. Sharing this information on a social media post, he said they discussed initiatives to further enhance the quality of life of our farmers, strengthen India's position in the global agriculture landscape, deepen collaboration with the African region, and share India's expertise in the sector. He added that they also deliberated on new pathways to enhance agricultural cooperation for long-term food security. Consumer Affairs Food and Public Distribution Minister Prahlad Joshi has said government food grain stocks have reached over 604 lakh tons in the country, which is nearly three times higher than the mandatory buffer requirement. In a social media post, the minister said robust wheat and rice reserves are ensuring an uninterrupted supply for welfare schemes and the public distribution system across the country. Mr. Joshi said strong procurement, successful harvest and sustained support for farmers continue to reinforce India's commitment towards food security, farmer welfare and a resilient future. He highlighted that India's food security framework continues to grow stronger under the leadership of Prime Minister Narendra Modi. Russia has announced a ceasefire in its ongoing war with Ukraine beginning today till May 10th during celebrations marking the 81st anniversary of the Soviet victory in World War II. The announcement was made by the Russian Defense Ministry following a decision by President Vladimir Putin. Earlier, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said at a summit in Yerevan that Russia might avoid displaying military equipment during its May 9th Victory Day parade because of fears of possible drone attacks over Moscow's Red Square. In response, Russian officials warned that any Ukrainian attack on Moscow during the parade could trigger a large missile strike on central Kyiv. Russian Foreign Ministry spokesperson Maria Zakharova also criticized Western countries over their stance on May 9 celebrations and accused them of distorting Soviet history. In IPL cricket, Lucknow Super Giants defeated Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using the DLS method in a rain-hit match at the Ikana Stadium in Lucknow last night. Chasing 213 runs for victory, Royal Challengers Bengaluru made 203 for 6 in 19 overs. Earlier put into bat, Lucknow Super Giants scored 209 for 3 in 19 overs. Multiple rain interruptions reduced the match to 19-over-a-side affair, setting Bengaluru a DLS target of 213. Mitchell March scored dazzling 111 of 56 for Lucknow, while Rajat Patidar contributed 61 of 31 for Bengaluru. Mitchell March was adjudged player of the match. Today, Delhi Capitals will take on Kolkata Knight Riders at the Arun Jaitley Stadium in Delhi at 7:30 p.m. The Indian Meteorological Department, IMD, has forecast heavy rainfall over Kerala, Mahe, South Interior, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal today and tomorrow. The Met Department said the thunderstorms accompanied with lightning and gusty winds are very likely to prevail over Uttar Pradesh, East Rajasthan, Coastal Karnataka and Rayalaseema today. And that is the end of this news bulletin.
2: एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
1: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
1: जी बिमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
1: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
1: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं
2: जी,
1: यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
1: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
2: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।
1: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
2: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
1: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
2: जी,
1: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा
2: जी।
1: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की। सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
2: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है। नाम है माउना केया।
1: जी श्रोताओं, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है
2: जी।
1: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया
2: जी,
1: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है
2: जी।
1: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
2: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है, जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
1: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें
2: जी।
1: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है
2: जी। समुद्र की गहराई के 3 भाग है, सतही क्षेत्र, ये वो भाग है जहाँ अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहाँ सूर्य का प्रकाश पहुँच पाता है,
1: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहाँ समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुँचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहाँ पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं,
2: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है?
1: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
2: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
1: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
1: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम। शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
2: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
1: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था, भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब यह अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं, कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमूर्चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবীর সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसी भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में, तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं, ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड युत्कल बंगा विंध्य हिमाचल जमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो, पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है। कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
2: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कवींद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्वबोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905 अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूं, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन। सन 1901 में शांति निकेतन आरंभ हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
2: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
0: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
2: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
0: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं कवि हूं। उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा,
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
2: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बनने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
0: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम, ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा।

गांधी चर्चा में आज प्रस्तुत हैं मातृभाषा के संबंध में गांधी जी के विचार। मातृभाषा का अनादर माँ के अनादर के समान है। जो मातृभाषा का अपमान करता है वह स्वदेश भक्त कहलाने लायक नहीं है। बहुत से लोग ऐसा कहते सुने जाते हैं कि हमारी भाषा में ऐसे शब्द नहीं जिनमें हमारे ऊंचे विचार प्रकट किए जा सकें, किंतु यह कोई भाषा का दोष नहीं जिनमें हमारे ऊंचे विचार प्रकट न किए जा सकें। मुझे अंग्रेजी भाषा से बैर नहीं है, इस भाषा का भंडार अटूट है। फिर भी मेरी राय यह है कि हिंदुस्तान के सब लोगों को इसे सीखने की ज़रूरत नहीं। मैं इतनी ही प्रार्थना करूँगा कि आपस के व्यवहार में और जहाँ तक हो सके वहाँ सब लोग मातृभाषा का ही उपयोग करें। भाषा वही श्रेष्ठ है जिसको जनसमूह सहज में समझ ले। भाषा को बनाना और बढ़ाना हमारा अपना ही कर्तव्य है। एक समय ऐसा था जब अंग्रेजी भाषा की भी यही हालत थी। अंग्रेजी का विकास इसलिए हुआ कि अंग्रेज आगे बढ़े और उन्होंने स्वयं भाषा की उन्नति की। यदि हम मातृभाषा की उन्नति नहीं कर सके और हमारा यह सिद्धांत रहे कि अंग्रेजी के जरिए ही हम अपने ऊंचे विचार प्रकट कर सकते हैं और उनका विकास कर सकते हैं, तो इसमें ज़रा भी शक नहीं कि हम सदा के लिए गुलाम बने रहेंगे। हिंदू मुसलमानों के बीच जो भेद किया जाता है वह कृत्रिम है। ऐसी ही कृत्रिमता हिंदी और उर्दू भाषा के भेद में है। दोनों का स्वाभाविक संगम गंगा जमुना के संगम सा शोभित अचल रहेगा। मुझे उम्मीद है कि हम हिंदी उर्दू के झगड़े में पड़कर अपना बल क्षीण नहीं होने देंगे। मैं अपने देश के बच्चों के लिए यह ज़रूरी नहीं समझता कि वह अपनी बुद्धि के विकास के लिए एक विदेशी भाषा का बोझ अपने सिर ढोएं और अपनी उगती हुई शक्तियों का ह्रास होने दें। दुनिया में और कहीं ऐसा नहीं होता। इसके कारण देश का जो नुकसान हुआ है उसकी तो हम कल्पना ही कर सकते हैं, क्योंकि हम स्वयं उस सर्वनाश से घिरे हुए हैं। ऐसे अंग्रेजी जानने वाले लोगों का देश में एक मजबूत दल है जो यह मानते हैं कि अंग्रेजी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। काशी और प्रयाग के पंडित तो संस्कृतमयी हिंदी को चाहते हैं और दिल्ली और लखनऊ के आलिम फारसी शब्दों से लदी हुई उर्दू को। एक तीसरा दल भी है जिससे हमें लड़ना पड़ता है। यह दल हमेशा यह आवाज़ उठाता रहता है कि प्रांतीय भाषाएं खतरे में हैं। राष्ट्रभाषा जनता की ही भाषा हो सकती है, पंडितों और मौलवियों की नहीं। यह तो मैं मानता हूँ कि अपनी सहजता और व्यापकता के कारण अंत में नागरी लिपि ही चलेगी, मगर राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से अगर उर्दू लिपि भी सीख ली जाती है तो उसमें देश की सेवा ही होगी। जिस भाषा में तुलसीदास जैसे कवि ने कविता की हो वह अवश्य पवित्र है और उसके सामने कोई भाषा ठहर नहीं सकती। यदि आप मुझसे यह कहें कि हमारी भाषा में उत्तम विचार अभिव्यक्त नहीं किए जा सकते, तब तो हमारा संसार से उठ जाना अच्छा है। जब तक हिंदी भाषा में सारा सार्वजनिक कार्य नहीं होगा तब तक देश की उन्नति नहीं हो सकती। गांधी जी के इन विचारों के बाद आइए अब सुनते हैं बापू का ये प्रिय भजन।

अभी आप सुन रहे थे गांधी चर्चा। इसके तहत आज आपने मातृभाषा के संबंध में गांधी जी के विचार सुने। ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम बाजियाई नगाड़ा।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
3: लत तो लगेगी ही, क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है।
4: ऐसा देश है मेरा, हाँ, ऐसा देश है मेरा।
3: ऐसा देश है मेरा हर दूसरी और चौथे शनिवार रात्रि 8:15 पर FM 101.4 MHz अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। तो सुनना ना भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा हर दूसरी और चौथे शनिवार को। ऐसा

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: कार्यक्रम बाजे नगाड़ा में आज हम आपके लिए जो कलाकार लाए हैं वो है महेंद्र सिंह।

इसके साथ ही बाजे नगाड़ा कार्यक्रम संपन्न होता है। ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार, पहले हिंदी में तत्पश्चात अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नव निर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नव निर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वित्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नव निर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची बाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन्ह और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
4: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
5: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
4: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
3: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
6: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
3: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3-सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। ये देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
7: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमैक्स बाकी, राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं, पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा, चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है, सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला, लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए, ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यह बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
3: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

कार्यक्रम सुबह सवेरे सुनने वाले सभी श्रोताओं को शशि बाला की प्यार भरी नमस्ते। दोस्तों, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज की सुबह में वो वाली बात है ना, जिसे हम अक्सर कहते हैं मैजिक इन द एयर। ठंडी हवा के झोंके और प्यारी सी मुस्कान के साथ जब दिन की शुरुआत हो तो लगता है दुनिया वाकई खूबसूरत है, और जब बात खूबसूरती की हो तो बिना संगीत के ये बात कुछ अधूरी सी लगती है। आज हम कार्यक्रम की शुरुआत उस गीत से करने वाले हैं जिसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है उसकी एनर्जी, जिसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है उसकी सादगी। ये सिर्फ एक गाना ही नहीं बल्कि एक इकरार है, एक ऐसा वादा है जो बिना कहे बहुत कुछ कह जाता है। चलिए सुनते हैं इस गीत को और बनाते हैं अपने इस पल को और भी हसीन।

और श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पूछते हैं आपसे आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, गीतकार शैलेंद्र का असली नाम क्या था? आपको बताना है गीतकार शैलेंद्र का असली नाम क्या था, और उन्हीं का लिखा हुआ गीत भी हम आपको सुनवाएंगे। और लेकिन पहले आपको बता दें कि आपको अपना उत्तर जो है वो टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से देना है, और हमारा फ़ोन नंबर है 9466021336। एक बार फिर से फ़ोन नंबर बताते हैं, 9466021336। इस नंबर पर टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए आपको अपना उत्तर हमें लिखकर भेजना है।

श्रोताओं, इस गीत के साथ एक छोटी सी कहानी भी जुड़ी हुई है। शैलेंद्र और राज कपूर की दोस्ती बहुत गहरी है, ये तो जग जाहिर है, लेकिन शैलेंद्र बहुत स्वाभिमानी भी थे, अपनी ज़रूरतों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते थे। एक बार शैलेंद्र जी को पैसों की सख्त ज़रूरत पड़ी। उन्होंने राज कपूर के पास जाकर कहा कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, तो राज कपूर ने भी तुरंत चेकबुक निकाली, लेकिन शैलेंद्र ने उन्हें कहा कि मैं तुमसे उधार नहीं लूँगा, मुझे तुम एडवांस दे दो और इसके बदले में मैं एक गीत तुम्हें लिख कर दूँगा। उस समय राज कपूर जी मुस्कुराए और उन्होंने पैसे शैलेंद्र को दे दिए, लेकिन एक वादे के साथ दिए गए थे वो पैसे कि एक गीत लिख कर दिया जाएगा। कुछ समय बाद जब फिल्म अनाड़ी पर काम शुरू हुआ तो राज कपूर और संगीतकार शंकर जयकिशन एक ऐसी धुन पर काम कर रहे थे जो बहुत सरल और दिल को छू लेने वाली थी। राज कपूर को एक ऐसा गीत चाहिए था जो उनके उस किरदार को, जो कि उन्होंने राजू के रूप में निभाया था, उस किरदार की सादगी और उसकी फकीरी को पर्दे पर बड़े अच्छे से उतार दे। जब शैलेंद्र जी को वो धुन सुनाई गई तो उन्होंने सालों पहले राज कपूर से लिए गए उस एडवांस और अपनी उसी आर्थिक तंगी वाले दौर को याद किया और उन्होंने उस दौर को दिल से महसूस किया कि एक चाहे इंसान कितने भी अभाव में हो, अगर उसके पास दूसरों के लिए मुस्कुराहट है तो वो सबसे अमीर है। जब ये बोल शैलेंद्र ने लिखे कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार। आज भी जब हम इस गीत को दिल से सुनते हैं, शांति से सुनते हैं, आंखें बंद करके सुनते हैं, तो हैरानी होती है कि दर्द उधार लेना ये किस तरह से लिखा गया होगा और क्या बात उनके मन में आई होगी। राज कपूर जी को भी लगा कि शैलेंद्र ने उनके दिल की बात कह दी। तो भाई, हम आपको इस माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि इंसान इंसान को मुस्कुराहट बांट सकता है और हमेशा उसे बांटनी भी चाहिए, उसका गम उसका दर्द उधार ले लेना चाहिए। चलिए बातचीत का माहौल बदल लेते हैं और थोड़ा सा कुछ और विषय पर बात करते हैं, कोई और गीत सुनते हैं, नहीं तो ये कार्यक्रम आप कहेंगे आज तो बड़े गंभीर मुद्रा में पेश कर दिया गया। नहीं भाई, ऐसा नहीं करेंगे हम।

था। रेड क्रॉस का मकसद एक ही है, बिना किसी भेदभाव के मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना। चाहे युद्ध के मैदान में घायल सैनिक की बात हो, या फिर प्राकृतिक आपदा में फंसे आम लोग हों, या फिर हेल्थ इमरजेंसी, रेड क्रॉस की टीम वहां सबसे पहले पहुंचती है जहां मदद की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। इनका काम सिर्फ इलाज करना नहीं, बल्कि लोगों को नया जीवन और नई उम्मीद देना है। आज का दिन उन लाखों वॉलेंटियर्स को सलाम करने का है जो अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की सेवा करते हैं। इनका कोई धर्म नहीं होता, कोई जात नहीं होती, बस एक ही धर्म है, इंसानियत, जिसका हम सबको भी पालन करना चाहिए। और ये ज़रूरी नहीं कि हम रेड क्रॉस का हिस्सा बनकर ही मदद करें। हम अपने आसपास किसी भूखे को खाना खिलाकर, किसी बीमार की मदद करके भी रेड क्रॉस की भावना को जीवित रख सकते हैं। तो भाई, आज के दिन हमसे और अपने आप से एक वादा कीजिए कि हर पल मदद का हाथ जहाँ संभव हो सके ज़रूर बढ़ाएंगे और मानवता का साथ सारी जिंदगी निभाएंगे।

श्रोताओ, कार्यक्रम के आरंभ में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि गीतकार शैलेंद्र का असली नाम क्या था। इनका असली नाम था शंकरदास केसरीलाल, और सही जवाब बहुत सारे श्रोताओं ने भेजा है। हम बारी बारी सभी के नाम अपने कार्यक्रम में पढ़ लेंगे। पहला जो नाम है जिन्होंने सही जवाब भेजा है वो है नाहन हिमाचल प्रदेश से, योगी ठाकुर और रीमा ठाकुर। योगी महल्ला बराड़ा अंबाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, गुरशबद सिंह राहुल, ललिता सिंह, भगवान सिंह शिलाई हिमाचल प्रदेश से, दरियापुर बाबली महाराष्ट्र से गजानन येले, नवदीप येले और विश्वदेव येले, धूलिया महाराष्ट्र से अशोक कवाड़े, आदित्य कवाड़े, दीपमाला कवाड़े, सुदर्शन शाह और पल्लवी शाह पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से, भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा और पारसमणि वर्मा, कैलाश नगर कुरुक्षेत्र से सुरेंद्र दत्ता, बंटी, शंटी और लाडी, कुरुक्षेत्र से कविता चावला और उनके परिवार के सभी सदस्य, बिहार से डब्ल्यू उल्ला बेलदार, वली उल्ला और सोनम उल्ला बेलदार, साबित खान धर्मेंद्र प्रजापति खमारिया छत्तीसगढ़ से, विक्रम योग भारती, संध्या सैनी, हरमन योग भारती, खुशप्रीत अम्बली गांव फालसडा जाटान से, कृष्णा और टिया हैं सोलन हिमाचल प्रदेश से, सेक्टर दो कुरुक्षेत्र से जगपाल हुड्डा, सानिध्य हुड्डा और समीक्षा हुड्डा, गांव भाणा ब्राह्मण वाला नरवाला से मेघराज शर्मा, खंडवा से डीपी सैनी और माली, आकली दीवान मध्य प्रदेश से रामलाल चंद्रवंशी और कृष्णा चंद्रवंशी, सतीश अनेजा, बिमला अनेजा चंडीगढ़ से, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंदर सिंह छाबड़ा, ध्वनि सानवी और छाबड़ा परिवार के सभी सदस्य, गांव पीपर लोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा और पूनम वर्मा, भिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा, बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, गांव पंचायत भटेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। अगला सही जवाब देने वाले श्रोता हैं सांकरा जिला राजनांद गांव से नारायण लाल साहू, प्रणय कुमार, रुद्रांश प्रताप साहू, गौतम कुरुक्षेत्र से, राजाजी नगर बेंगलोर से एनआर प्रसाद और अखिला प्रसाद, गांव नागर कोहरा से बबलू साहू, जामुन देवी और बेबी आराध्या साहू, संजीव कुमार अमन वाल्मीकि विलेज खुकनी इंद्री करनाल से, मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति कार्तिक आर्यन वर्मा, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा मायरा सुरोशे, कविता प्रमोद कदुआपड़ा संगत जगत सिंहपुर ओडिशा से, लालपुर मारो छत्तीसगढ़ से कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी और निशांत ध्रुव, गांव मुरादगढ़ से रमेश कुमार काम्बोज, वंश और भुवेश कुमार काम्बोज, कुरुक्षेत्र इन्होंने लिखा है हमें जिला मुरादाबाद गांव दूल्हापुर से, ये हैं मोहम्मद फरमान, विनोद मूणत, नेहा, दीपक, मयंक मूणत बोरखेड़ा, पित्रामल उज्जैन मध्य प्रदेश से, बुल्ढाणा वड़चिंगी से अमोल, बुल्ढाणा इस्लामपुर से सहदेव दामोदर, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय और अमित कुमार रॉय, शंकर दास केसरीलाल ये सही जवाब है। और जवाब देने वाले अगले श्रोता हैं पंचकुला चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना।

ना केशु तुलसी मस्कीन। तेलंगाना निजामाबाद से शेखल्ला बख्श राजेश साबले पाटिल। कल्याण मुंबई से किशोर हिबराले सुजाता और प्रतीक हिबराले। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगी सापुर से। भाई इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ मंसूरी से लिख सकते हैं। ये छोटा सा शहर का नाम लिखिए, बहुत बड़ा नाम का शहर का आप नाम लिखते हैं उसे पढ़ने में थोड़ा मुश्किल आती है। यहाँ से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा और यश मंसूरी। जठार पेठ अकोला महाराष्ट्र से पूनम स्मित और श्रियांश गोरे। गांव बन बघेरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से योगेश सारवा और आशा सारवा। उमेश सांगवान है गांव पैतावास कला जिला चरखी दादरी हरियाणा से। छत्तीसगढ़ बोरसरा से वैभवी साहू और विभूति साहू। सुनील पाठक कमल पाठक गव्या मल्होत्रा अनारकली बाजार जगराव से। डोंगर गांव से राष्ट्रपाल गजपिए। सुधा नारायण के हाली बेंगलोर से। सरोज सैनी राकेश सैनी यादवेंद्र सैनी सेक्टर 8 कुरुक्षेत्र से। गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र सुरेंद्र और शमशेर भ्याण। जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान मोहिनी और कल्पित चौहान। गांव चौहलदा बागपत से संजय ढीकिया और नमन ढींगिया। नरेश नीटू भावना अनिल कटारे ख्याल बाजार पानीपत से। सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंदर कला रेवाड़। डेर पाटन गुजरात से धीरज वीर अबारी। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा मीना और योगेश शर्मा। रेलवे रोड गंज टुंडुवारा से मोहम्मद कलीम नजमा बेबी फातिमा। जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया एंजल और सोनू भाटिया। माघेराम सैनी पूनम सैनी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से। वड़िंग खेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस पिंकी और लवली। छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार साहू योगेश साहू और राहुल साहू। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कामड़े और करुणा कामड़े। कल्पना ताइलोखंडे प्रतीक्षा और रक्षता है गोड़गे नगर यवतलाल महाराष्ट्र से। रादौर से रज्जू बत्रा पप्पी खुराना और एसके पप्पी। मीन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर प्रमोद और प्रदीप येमेकर। रायपुर से नीलू मेघ नीलम वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। मार हरा दरवाजा एटा से नबी हसन शहनाज और शीलू सुहेल अब्बासी। मोहम्मद सईद अब्बासी निघट प्रवीण अब्बासी सरफराज और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य ऊपर कोट बुलंदशहर से। भुवन प्रकाश गौतम श्रेय गौतम गंज डुंडुवारा उत्तर प्रदेश से। छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया अजय देव और मास्टर अल कबीर। बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर संगीता अंजलि करवा और बाला साहेब करवा। छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से मोहम्मद जाहिद अली सैफी मोहम्मद जहान सैफी लीबा मलिक और आवाद खान। रावर करनाल से ज्ञानभूषण शर्मा सोमनाथ कालिया। बालकृष्ण प्रवीण शर्मा मुनीश शर्मा पंजाब से। सेक्टर 5 कुरुक्षेत्र से भारत भूषण और दिव्यांश। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्ला अंसारी। बक्सर बिहार से राज एस डी अंसारी। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति और ओजस्वी यादव। उत्तम कुमार रुखमनी साहिल भारती लघान पंडरिया छत्तीसगढ़ से। गांव नाईवाला राजस्थान से वेद मिड्डा और अलका मिड्डा। छत्तीसगढ़ से प्रमोद साहू और बीमा साहू। पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे वीणा पांडे विनय शंकर पांडे। निवासा खुपटी बंडू लोहार पोपलघट चंद्रकला पोपलघट। राशिद हुसैन नसरीन अंसारी नौरीन अंसारी जैनवाली मंदिर कुरावली से। ब्रजेंद्र शर्मा
आशीष विश्वकर्मा, ब्रजेंद्र विश्वकर्मा बन्ने बुजुर्ग, तहसील परेरा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से। शास्त्री नगर बीड़ शहर से किशन, आशा और सोनिया के साथ हैं विशाल सपकाल। आफताब अहमद अंसारी, रियाज अनवर, शेरवानी स्कूल गंजुडवारा, उत्तर प्रदेश से। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र, कपिल, पूजा। सौराष्ट्र राजकोट से प्रवीण, जगदीश और हीरेन भाई। अनूपगढ़ से मंगल जनागल, रोशनी और अंकुर जनागल। रश्मि झरना राजकोट गुजरात से। अकरम हुसैन बेगम, इशरत वसीम, अकरम रुबीना और आरिज अकमर, नाज मंजिल महसूल, सीतामढ़ी से। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी। किशनगंज बिहार से रविंदर मोहन, आशा देवी और कीर्ति भारती। अरविंद गुड़िया, भाव्या, निवेश, नियति, बेनीपट्टी, मधुबनी बिहार से। दुर्गा कलोनी हांसी से राजू, बबीता और सुभाष योगी। कनेर मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और बत्ता परिवार के सभी सदस्य। नर्मदा पार्क मंगलबेड़ा से मास्टर अलिम मुजाहिद और नदीम पटेल। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से विजय, कविता। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती। गिर्रा पलारी से वीरेंद्र, आशीष साहू। राजेंद्र मलकी, तारती और राघव गांवगाला, जिला अम्बाला हरियाणा से। रोशन लाल देवांगन बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से और इनके साथ हैं प्रिया। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश और करुणा वर्मा। आप सभी ने हमारा कार्यक्रम सुना, हमें सही जवाब लिखकर भेजा, इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इसी तरह से हमारे कार्यक्रम सुनते रहिए FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर।

साथियों, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह भी मनाया जा रहा है और हम आपको बता दें कि इसका जो मुख्य फोकस है इस बार का, वो है सतत परिवहन, यानी कि लगातार परिवहन चलते रहना चाहिए। सड़कों पर गति जो है वो सुरक्षित गति होनी चाहिए। इसका सीधा सा मतलब ये है कि सड़कें सिर्फ गाड़ियों के लिए थोड़ी ही हैं, पैदल चलने वालों के लिए भी हैं, साइकिल चलाने वालों के लिए और बच्चों के लिए भी, और ये सड़कें सभी के लिए सुरक्षित होनी चाहिए। जब हम अपनी गाड़ी की रफ्तार कम रखते हैं तो हम सिर्फ नियमों को नहीं मानते बल्कि किसी का घर उजड़ने से बचाते हैं। तो थोड़ा सा अगर हम ध्यान से चलेंगे या थोड़ा सा धीमी गति से चलेंगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप 2 मिनट लेट हो जाएंगे लेकिन किसी और का घर उजड़ने से बचा सकते हैं। हेलमेट और सीट बेल्ट को अक्सर लोग बोझ समझते हैं, भाई ये तो आपके लिए लाइफ जैकेट का काम करते हैं, इन्हें ज़रूर लगाइए। याद रखिए, देर भली दुर्घटना से, तो रफ्तार पर थोड़ा सा लगाम लगा कर रखिए। गाड़ी चलाते समय एक कॉल या एक मैसेज बिल्कुल आपने नहीं देखना है, यानी कि नो मोबाइल जोन में चले जाना है। देखिए, आज से कुछ वर्ष पहले की दुनिया में अगर आप जाएं तो आप सोचिए कि तब भी तो मोबाइल नहीं होते थे, तो क्या उस वक्त आपका काम नहीं चलता था? चलता था भाई, बिल्कुल चलता था। हमारे माइंडसेट इस तरह के हो चुके हैं कि बिना मोबाइल के ज़िंदगी बेकार है। नहीं, अगर आपको मोबाइल करना भी है तो गाड़ी साइड में लगाइए और फिर उसके बाद आप मोबाइल का इस्तेमाल कीजिए। शराब पीकर गाड़ी बिल्कुल मत चलाइए। पैदल चलने वालों का ज़रूर सम्मान कीजिए, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर पहला हक उन्हीं का होता है। तो दोस्तों, इस वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह में आइए हम सब शपथ लेते हैं मिलकर कि हम जिम्मेदार नागरिक बनेंगे और सड़क पर सबकी सुरक्षा के लिए हम अपने आप को जिम्मेदार मानेंगे, क्योंकि सड़क पर आपकी सावधानी से आपके परिवार की मुस्कुराहट आती है और यही गारंटी है आपकी सुरक्षा की। तो भाई, सुरक्षित रहिए, सुरक्षित चलिए। मैं हूँ शशिबाला और सुनते रहिए आकाशवाणी कुरुक्षेत्र FM बैंड 101.4 MHz पर।

तो श्रोताओं, चलते चलते हम आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि सड़क संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह जो मनाया जा रहा है, इसमें आपने भी अपना सहयोग देना है। सड़कें तो सरकार बना देती है, लेकिन उन सड़कों पर चलने का सलीका हमें सीखना होगा। अक्सर हम सोचते हैं कि हादसा हमारे साथ नहीं होगा, और यही लापरवाही जीवन की सबसे बड़ी भूल भी साबित हो सकती है।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
3: ये आकाशवाणी है,
4: हर पल आपके साथ।
3: समाचार हो या सदाबहार गीत,
4: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
3: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
4: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
3: आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: लत तो लगेगी ही क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है।
2: ऐसा देश है मेरा, हाँ, ऐसा देश है मेरा।
1: ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार रात्रि 8:15 पर FM 101.4 MHz अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। तो सुनना ना भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार को।
2: ऐसा

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वरांजलि आकाशवाणी कुरुक्षेत्र से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वरांजलि, ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम, जिसे हम विविध भारती से रिले करेंगे।

0: अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंप रहा हूँ।
1: वस्त्र कंधे पर रख लीजिए।
2: सिकंदर, सिकंदर, क्या मत की कुतिया मेरे यार, जरा सी झड़प हो गई। किसने हुई? बाल किसने हुई?
3: नहीं बताती हूँ।
2: नहीं,
3: दिलावर मुझे उठा कर लिया था। सिकंदर मुझे बचा कर यहाँ ले आया। अगर सिकंदर नहीं होता तो मैं इस दुनिया में नहीं होती।
2: बस बस करो मेम साहब।
4: मेम साहब,
2: क्या काम ना है तेरे मेम साहब अच्छे से? तू
4: नहीं,
3: मुझे तो सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब को करता।
2: नहीं, नहीं।
3: सिकंदर आज मुझे कह लेने दो, आज मुझे कह लेने दो। विशाल सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल ही दिल में प्यार करता रहा और मैंने इसे सिवाय नफरत के कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया।
2: सिकंदर ये तुमने क्या किया? क्या?
5: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
3: तुम?
6: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा, जानती हो लावारिस क्या होता है?
7: मेम साहब, लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है। अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए। मौत भी कमबख्त उसे पूरा नहीं खाती, अधमरा छोड़ जाती तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे मत कसना। और गुनाह के पीछे गुनाहगार कौन है ये कोई नहीं जानता।
5: प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थीं। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा था। जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों। एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया। एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल। सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म शराबी। कहते हैं कि जब सूरज बहुत तेज चमके उसके बाद शाम नजदीक होती है। एक के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989 प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चारों खाने चित हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया। एक वक्त था जो पीछे छूट गया, एक चमक थी जो मध्यम पड़ गई, एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश मेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई।
8: वादा।

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरू राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है। ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास, वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़े चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

17 मई 2009 प्रकाश मेहरा ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। पीछे रह गईं उनकी बनाई बेमिसाल फिल्में, वो कहानियां जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया, वो कहानियां जिन्होंने हमारा दिल जीता, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने तालियां बजाई, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा है, और उस सिनेमा का कमाल है, किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज दूसरे निर्देशकों की फिल्मों में जिंदा है। फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मूला फिल्मों में प्रकाश मेहरा हमेशा जिंदा रहेंगे।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान। संपादन आकांक्षा सिंह। प्रस्तुति रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।

कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र सुनने वाले सभी श्रोताओं को शशि बाला की प्यार भरी नमस्ते। दोस्तों नमस्ते कुरुक्षेत्र हमारा सजीव फोन इन कार्यक्रम है। इसके तहत आप हमें फोन कर सकते हैं, सुन सकते हैं अपनी ही पसंद का कोई गीत और साथ ही साथ कर सकते हैं हमसे बातचीत। तो जल्दी से हमें फोन मिलाइए क्योंकि फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। हमारा फोन नंबर है 221-322, कुरुक्षेत्र का एसटीडी कोड 01744। तो जल्दी से हमें फोन मिलाइए, हम कर रहे हैं आपके फोन का इंतजार। जब तक आप हमें फोन मिलाते हैं तब तक सुनिए हमारी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी नमस्ते, मैं ग्राम बसोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी प्रेम सिंह जी, आज कौन सा गीत सुनवाएंगे हमें?
1: जी फिल्म का मैंने रब ने बना दी जोड़ी फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे और आपको भी सुनवाना चाहेंगे।
0: जी बिल्कुल, जरूर सुनेंगे। ये बताइए क्या करते हैं आप?
1: जी बताओ दीदी, मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अच्छा, भजन गायक भी हैं, तो फिर तो आप दो पंक्तियां गा के सुना दीजिए हमें।
1: जी बिल्कुल बताओ, जैसे कि हमारा आप लोगों का ग्रुप बना हुआ है ना,
0: हाँ जी हाँ
1: जी,
0: जी
1: उसमें हम चार लोग गाने वाले हैं और चार दो हारमोनियम बजाते हैं और दो ढोलक तबला बजाते हैं।
0: तो
1: जी तो एक तब से सुना दो आपको भजन की है।
0: जी
1: जी

0: जी
1: जी, बहुत ही अच्छी आवाज में आया, आपने भजन गाया और माँ की स्तुति है और जगदम्बे माँ की आपने स्तुति की है, जो कि हर जो कि कहते हैं जन्मदात्री हैं, सभी की माँ है वो। और माता दिवस भी अब आ रहा है इस रविवार
0: सर,
1: को।
0: आपको बताऊं
1: जी
0: कुछ लोग हम निर्गुण जगदम्बे यात्रा माता जी के लिए आते हैं भजन करने के लिए, और ऐसे हनुमान जी के भजन गाते हैं।
1: जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए, आपके भविष्य के लिए भी हम शुभकामनाएं देते हैं और आपको गीत सुनवाते हैं आपकी पसंद का।
0: जी थैंक यू सो मच, मुझे कैसा लगा।
1: जी, फोन करने के लिए धन्यवाद।

0: श्रोताओं, अक्सर हम जब रेड लाइट पर रुकते हैं या किसी मंदिर से निकलते हैं या बाजार से निकलते हैं तो कई दफ़ा छोटे छोटे हाथ हमारी गाड़ी के शीशे को थपथपा देते हैं। कभी कोई मासूम बच्चा अपनी मासूम सी आंखों से हमें देखता है तो कभी कोई लाचार बुजुर्ग हाथ फैलाए खड़ा होता है, हमारा दिल भर आता है और हम जेब से कुछ पैसे निकाल कर या नोट निकाल कर उन्हें दे देते हैं। हमें लगता है हमने बहुत पुण्य का काम किया है, लेकिन सच में क्या ये पुण्य का काम है? क्या ये एक सिक्का उस बच्चे का भविष्य बना रहा है या उसे और अंधेरे की तरफ धकेल रहा है? श्रोताओं, आज हम एक ऐसे ही कड़वे सच की बात कर रहे हैं कि भीख कभी नहीं देनी है। सुनने में ये कठोर लगता है, लेकिन इसके पीछे की जो सच्चाई है ना, वो इससे ज्यादा कठोर है। अक्सर हम जिन्हें लाचार समझकर पैसा देते हैं, हो सकता है वो बहुत बड़े संगठित भिखारी माफिया का एक हिस्सा हो। हम सड़क पर बच्चों को पैसे देते हैं तो हम अनजाने में उन्हें स्कूल जाने से रोक देते हैं। उन्हें लगने लगता है कि बिना मेहनत के हाथ फैलाने से अगर पैसा मिल जाता है तो फिर पढ़ाई क्यों करनी, मजदूरी क्यों करनी? लेकिन वो अपनी जिंदगी का एक खूबसूरत हिस्सा खो रहे हैं और उस हिस्से को खोने में हमारा भी हाथ हो जाता है, चाहे जाने चाहे अनजाने में। इस तरह से दिया हुआ हमारा ये दान नहीं होता, बल्कि भिक्षावृत्ति के जाल को मजबूत करने में एक योगदान हम दे देते हैं। अब सवाल ये है कि भाई, मदद करना क्या छोड़ दिया जाए? बिल्कुल नहीं, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन मदद का तरीका बदलना होगा। जब भी कोई बच्चा भूखा दिखे तो पैसे की बजाय बिस्किट, फल या खाना खिला दीजिए। अगर कोई व्यक्ति काम करने के काबिल है तो उसे छोटा मोटा काम दिलाने में मदद करें। और सबसे जरूरी बात, उन संस्थाओं को जरूर दान दें जो बच्चों को शिक्षा और हुनर सिखा रही हैं। किसी अनाथ आश्रम में जा सकते हैं आप और वहां पर छोटे छोटे बच्चों के साथ वक्त बिता सकते हैं। जब किसी को आप हुनर देते हैं तो जीवन भर की रोटी दे देते हैं, लेकिन जब भीख देते हैं तो उसे केवल एक वक्त की रोटी देते हैं और साथ ही देते हैं उम्र भर की लाचारी। तो चलते चलते बस हम इतना ही कहेंगे इस टॉपिक पर, इस विषय पर, कि करुणा और दया को विवेक के साथ इस्तेमाल कीजिए, बुद्धि के साथ इस्तेमाल कीजिए। अगली बार जब कोई आपके सामने हाथ फैलाए तो गौर से देखिएगा कि क्या उसे पैसों की जरूरत है या फिर एक नई दिशा दिखाने की। आइए एक नए समाज के निर्माण में हम सब अपना योगदान दें। और अब देखते हैं कौन से श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार जी, बहन जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: मांगेराम सैनी जी बैंगले से।
0: मांगेराम सैनी जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है नमस्ते कुरुक्षेत्र।
1: तो हाँ जी, हाँ जी।
0: कौन सा गीत सुनवाएं आज आपको?
1: गीत तो आप सुनेंगे जी, नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे।
0: अरे वाह, क्या प्यारा सा गीत आपने छांटा है। प्यार की दुनिया की बात की है, इससे पहले हम भी प्यार की दुनिया की ही बात कर रहे थे कि दया करुणा से भरी हुई दुनिया होनी चाहिए, प्रेम की दुनिया होनी चाहिए जिसमें कोई भी बच्चा भीख ना मांगे। तो आपके इस पर क्या विचार है?
1: हमारे ऊपर तो इंतजार आ जी, नफरत की दुनिया को छोड़ो, प्यार की दुनिया में खुश रहो।
0: जी बिल्कुल ठीक आपने कहा। तो आप तक पहुंचाते हैं आपकी पसंद का
1: तो ये 5-7 जने का नाम है जी।
0: जी जी, लीजिए लीजिए।
1: विश्वनाथ शर्मा जी जांगले से, संजीव सैनी जांगले से
0: जी,
1: बंसीलाल तेजमुड़ी
0: जी,
1: इंद्राज नागर
0: जी,
1: और कुमार अलीपुरा जी
0: जी,
1: रणधीर सिंह जी
0: जी,
1: रमेश कंबोज चमरोड़ी जी
0: जी,
1: मंगत राम चौकीदार जांगला जी
0: जी,
1: और रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों को मंगे राम सैनी जी प्यार भरी राम राम।
0: जी हमको भी और आपको भी हमारी प्यार भरी राम राम, और आपके लिए सब आपके दोस्तों के लिए पहुंचाते हैं ये गीत।
1: ठीक है जी, धन्यवाद।
2: Thank you.

हेलो हेलो, हमारे साथ जुड़े थे रामकुमार सहारनपुर से, और उन्होंने जिस गीत की फरमाइश की थी वो गीत हम आप तक पहुंचाते हैं। किसी कारणवश शायद उनका फोन डिस्कनेक्ट हो गया है।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: लत तो लगेगी ही क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है।
2: ऐसा देश है मेरा, हाँ, ऐसा देश है मेरा।
1: ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार रात्रि 8:15 पर FM 101.4 MHz अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। तो सुनना ना भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार को।

0: टेली लॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।

0: हेलो हेलो
1: हेलो हेलो।
0: हेलो। हाँ
1: मिस्टर दीदी,
0: जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं सतीश बोल रहा हूँ जी।
0: सतीश कहाँ से?
1: मेरी जन्मभूमि है जिला उन्नाव, थाना रात गांव कोलिया के रहने वाला हूँ और कर्मभूमि कुरुक्षेत्र सेक्टर 7 रतगल से बोल रहा हूँ दीदी।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया दीदी। क्या कर रहे हैं जी?
0: गीत कौन सा सुनेंगे?
1: आपको सबसे पहले मेरे बच्चे का जी जन्मदिन है।
0: अरे वाह, आपको बहुत बहुत बधाई हो। पूरे आकाशवाणी परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो और बच्चे के लिए ढेरों शुभकामनाएं। जी, गीत कौन सा सुनेंगे?
1: दीदी आज कोई जन्मदिन के उपलक्ष्य में कोई सुना दीजिए गाने।
0: जी, आप तक पहुंचाते हैं ये गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: ओह

अब एक महत्वपूर्ण विषय पर हम बात कर लेते हैं, डीआरटी। डीआरटी काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि डीआरटी क्या होता है। हम आपको बता दें, डीआरटी है डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, इसे हिंदी में ऋण वसूली न्यायाधिकरण कहते हैं। ये एक विशेष कोर्ट है जिसे भारत सरकार ने बनाया है। इसका मुख्य उद्देश्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के फंसे हुए कर्ज को जल्दी वापस दिलाने में मदद करना है। साधारण अदालतों में केस बहुत लंबे समय तक चलते हैं, बैंकों का पैसा फंस ना जाए, इसलिए डीआरटी बनाया गया ताकि लोन रिकवरी के मामले 6 महीने के भीतर सुलझाए जा सके। डीआरटी के पास सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां होती हैं, ये कर्जदार की संपत्ति कुर्क करने या उसे बेचने का आदेश दे सकता है। डेप्ट का सीधा मतलब होता है कर्ज या ऋण। जब कोई व्यक्ति, कंपनी या सरकार या किसी बैंक या किसी संस्था से पैसा उधार लेती है तो उसे ब्याज के साथ वापस करने का वादा करती है, उसे हम डेप्ट कहते हैं। रिकवरी क्या होता है? जब कोई उधार लिया हुआ पैसा वापस नहीं करता तो बैंक उस पैसे को वापस पाने के लिए जो कानूनी प्रक्रिया अपनाता है उसे रिकवरी कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति बैंक या डीआरटी के फैसले से खुश नहीं है तो वो इसके ऊपर वाली अदालत ड्रैट में भी जा सकते हैं। अगर किसी ने बैंक से लोन लिया है और वो उसे चुका नहीं रहा तो डीआरटी इसे रिकवर करने में मदद करती है, जिस

0: से बैंक उसकी संपत्ति बेचकर अपना पैसा वसूल कर सकता है। और अब देखते हैं कौन से श्रोता हमसे जुड़े हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्ते कुरुक्षेत्र।
0: नमस्ते कुरुक्षेत्र, कौन बोल रहे हैं?
1: जी सचिव बाला जी नमस्कार।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं?
1: जी गांव मुरादगढ़ जिला करनाला से रमेश कुमार कांबोज।
0: स्वागत है रमेश कुमार कांबोज जी आपका। और ये बताइए कि मौसम थोड़ा थोड़ा सा बदल रहा है, मिजाज मौसम के ऐसे हो गए हैं कि ना तो बहुत गर्मी है ना बहुत सर्दी है, तो मौसम का मिजाज आपके वहाँ कैसा है मुरादगढ़?
1: हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है मैडम, कभी गर्मी कभी सर्दी।
0: जी तो ये जो बारिश
1: मौसम इस टाइम,
0: ये जो बारिश हो रही है, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस बारिश का किसानों पर क्या असर पड़ रहा है, फसलें जो हैं हमारी वो उन पे क्या असर है, क्या ये बारिश फसलों के लिए अच्छी होगी या फिर अच्छी नहीं है?
1: मैडम जी इस टाइम तो कोई खास फसल नहीं है।
0: अच्छा,
1: जो उनसे खड़ी है उनके लिए तो अच्छी है।
0: अच्छा,
1: लेकिन दाल वाली जो फसल है उनके लिए नुकसान है थोड़ा सा।
0: अच्छा अच्छा, तो चलिए गीत बताइए कौन सा सुनेंगे।
1: गीत है मैडम जी गंगा जमुना सरस्वती फिल्म का, डिस्को भांगड़ा वाला गाना।
0: जी डिस्को भांगड़ा।
1: हाँ जी,
0: और आप तक पहुंचाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद मैडम जी।

0: Daily Law के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
2: बहन जी नमस्कार।
1: नमस्ते
2: बहन जी, मैं जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ।
1: कहाँ से?
2: पालमपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।
1: पालमपुर भाई बहुत अच्छी और खूबसूरत सी जगह है, वहाँ पर आपका अपना घर है?
2: जहाँ मेरा बेटा रहता है जी, उसका आंखों का हॉस्पिटल है।
1: अच्छा, पालमपुर में आपका बेटा रहता है, तो आप बेटे के साथ ही रहते हैं?
2: मैं वैसे तो पंजाब में रहता हूँ जी, पर इधर भी आ जाता हूँ। बेटा और बहू दोनों अपने हॉस्पिटल में जब होते हैं तो इनके पास हॉस्पिटल में बैठ जाता हूँ जी।
1: जी बहुत अच्छी बात है। और पालमपुर का मौसम कैसा है, थोड़ा पालमपुर के बारे में बताइए।
2: पालमपुर का मौसम तो बहन जी हमेशा ही खुशगवारी रहता है।
1: जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। हाँ जी,
2: और आजकल तो इधर इतना खुशगवार मौसम है कि जब बाहर निकलते हैं तो आसपास चाय के बागान बागान ही नजर आते हैं। और ऊपर जो पहाड़ियां है उन पर बर्फ नजर आती है जैसे चांदी बिखरी पड़ी हो।
1: अरे क्या बात है, और उस पर जब सूरज की किरणें पड़ती होंगी तो सोना लगता होगा।
2: फिर तो बस पूछो मत जी, बस ऐसे जी करता कि देखे जाएं।
1: तो आप सुबह सुबह जल्दी उठकर हर रोज सूर्य देवता के दर्शन करते हैं, उनको उगते हुए देखते हैं?
2: बिल्कुल जी, बहुत ही सुंदर नजारा होता है सुबह सुबह जब सैर करने निकलते हैं तो ऐसे लगता है कि शायद ही इससे सुंदर जगह कोई हो।
1: जी, धरती पर स्वर्ग, इस वक्त आप स्वर्ग में हैं, स्वर्ग का आनंद ले रहे हैं। जी, गीत कौन सा सुनेंगे?
2: उसकी कृपा से आनंद ले रहे हैं।
1: जी, गीत कौन सा सुनेंगे
2: बहन जी? गीत आज मैं सुनूंगा, इन्हीं वादियों का ही गीत है, फिल्म है दिल ही तो है
1: जी,
2: उसमें गीत है मुकेश जी और सुमन कल्याणपुर जी के आवाज में, और मेरी इच्छा ये हो रही है कि उसकी मैं थोड़ा सा गुनगुना।
1: हाँ हाँ बिल्कुल गुनगुनाइए।
2: चुरा लेना तुमको जे मौ

गीत को जे मौसम सुहाना, मैं जाऊंगी तुम मेरे पीछे ना ना।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी बहन जी, मैं ग्राम जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से आपका नियमित श्रोता सुरित रमेश साहू बोल रहा हूँ बहन
0: जी। कैसे हैं सुरित रमेश साहू जी?
1: जी दीदी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। दीदी आप कैसे हैं? और हमारे एफएम कुरुक्षेत्र रेडियो के जितने भी हमारे उद्घोषक भाई बहन कैसे हैं बहन?
0: सब ठीक है, आकाशवाणी परिवार मस्त है, दुरुस्त है। और गीत कौन सा सुनवाएं आज आपको?
1: गीत है दीदी, खुशियां खुशियां दामन में जिससे क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाता।
0: जी आप तक पहुंचाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। फोन करने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते कुरुक्षेत्र।
1: ये आकाशवाणी कुरुक्षेत्र है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम, जिसे हम विविध भारती।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। कार्यक्रम की शुरुआत हरिहरन की आवाज से। शब्दकार मुस्तार सिद्दीकी, संगीत हरिहरन का और एल्बम का नाम लविंगली योर्स।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: अली मोरे अंगना इस एल्बम का गाना शुभा मधुकल की आवाज़ से, इन्हीं का लिखा हुआ गीत संगीत जवाहर वत्तल का।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं, और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना,

0: आवाज़ भी, टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीज़ें आप पी के इमिडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमिडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
1: ये है अभिजीत सावंत की आवाज, समीर के बोल, हरदीप सिद्धू और प्रेम पाल हंस का संगीत है।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा।

पंकज उधास की आवाज़ आपने सुनी। शब्दकार जफर गोरखपुरी, संगीत पंकज उधास का, एल्बम लाइफ स्टोरी। रंग तरंग।

रंग तिरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश अदनान सामी की आवाज़ मकबूल ख्वाजा के बोल संगीत अदनान सामी का एल्बम किसी दिन।

0: तूने बत्ती देखी न मैंने झंडी देखी, एक्सीडेंट हो गया रपा रपा, एक्सीडेंट हो गया।
1: एग्रीमेंट

0: ना मैंने खतरा देखा,
1: एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, एक्सीडेंट हो गया,
0: एग्रीमेंट हो गया, परमानेंट हो गया।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के

0: जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए। चलते चलते आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
0: इन दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
2: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रॉक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस तो आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको ओरली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
3: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है यादों की महफिल। अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक ब्रेक का।

0: ब्रेक का समय पूरा हो चुका है, अब आपको सुनवाने जा रहे हैं चलती का नाम गाड़ी। इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में, मजरूर सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है SD बर्मन का।
1: बाजू।

0: चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंदी मुट्ठी लाख की हर खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: अरे बंदी मुट्ठी लाख की हर खुली तो प्यारे खाक की,
0: मुझ

0: जो समझाए उसी की मची धूम, आ जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली। कुंवारा बाप फिल्म का ये गाना किशोर कुमार महमूद और साथियों की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुर के बोल, संगीत है राजेश रोशन का।

0: उमस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली पहली।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: मिलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: यादों की महफिल इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मेरा नाम जोकर। इस फिल्म का गाना मन्ना डे की आवाज़ में, नीरज के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है।

क्या ये सर्कस है, और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: बाजार है हप हप, खाता है कूड़ा भी रहता है भूखा भी, फिर भी वो मालिक पे करता नहीं वार है। और इंसान ये माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है?
0: माल जिसका खाता है, प्यार जिससे पाता है, गीत जिसके गाता है, उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चलें, चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: यह है जीत फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में, गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: साथ अकेली लड़की दिल कैसे कोई संभाले।
1: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना खुद्दार फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में बोल मजरू सुल्तानपुरी के संगीत है राजेश रोशन का।

भाभी फिल्म का ये गाना आपने सुना नितिन मुकेश और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में, हसरत जयपुरी के बोल और संगीत अनु मलिक का। इस गीत के साथ ही आज का यादों के महफिल ये कार्यक्रम संपन्न होता है।

0: दोस्तों नमस्कार, सुरीला सफ़र इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी। दोस्तों विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपने आज की इबारत यानी कि आज जो टेक्स्ट हमने भेजा है वो तो आपने पढ़ ही लिया है और इससे संबंधित बहुत सारी बातें भी आपने हमें लिख भेजी है, उससे पता चलता है कि कितने शिद्दत से आपने उसे पढ़ा है। अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम आपको इसे पढ़ करके सुना देते हैं। शादियों का मौसम चल रहा है तो ख्याल आया कि ऐसे में सजना संवरना तो बनता है, अगर चंद्रहार मिल जाए तो सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा। शादी में जाएंगे तो दोस्तों के बीच खान पान और मौज मस्ती होगी, दुल्हा दुल्हन रस्म रिवाजों के बंधन में बंध जाएंगे, फिर दुल्हन अपनों की दुआएं लेकर इस घर आंगन से विदा होगी। आधी रात जब चंद्रमा आधा होगा तो बातें होंगी, दिन प्यार करने के होंगे और प्यार से बना एक प्यारा घर होगा जो उनकी नज़रों में सबसे न्यारा होगा। ये आज का जो टेक्स्ट है हमने प्रेषित किया, आपने पढ़ा और नहीं पढ़ा तो हमने आपको पढ़ के सुना दिया और जिन शब्दों के गाने हमने शामिल किए उन पर थोड़ा सा हमने जोर भी दे करके पढ़ा है ताकि आपको समझ में आ जाए। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि सुरीला सफ़र में एक बात तो है जो बांधे रखता है और वो ये है कि आपका गाना बजे या ना बजे एक्साइटमेंट बरकरार रहती है, आपकी बातें भी हमें बांधे रखती है और आज के गाने मुझे लगता है शादियों की नोकझोंक से भरे होंगे। एक साथी हमारी ये भी लिख रही है कि शहनाइयों की गूंज बता रही कि खुशियों ने दस्तक दे दी है और ऐसे में अगर खनकती चूड़ियों के साथ माथे पर बिंदिया सज जाए तो महफिल में चार चांद लगना तय है, बारातियों के स्वागत में हंसी ठिठोली होगी, पकवानों की खुशबू से आंगन महकेगा और फेरों के वक्त जब सात वचनों की गूंज होगी तो हर आँख में दुआओं का समंदर होगा, विदाई की उस घड़ी में बाबुल की लाडली जब नए सफर पर निकलेगी तो यादों का कारवां साथ होगा, फिर तारों भरी वो पहली रात होगी, मीठी बातों के सिलसिले होंगे और शुरू होगा एक ऐसा सफ़र जिसमें दो दिल मिलकर अपने सपनों का आशियाना सजाएंगे। जी हाँ, कुछ हद तक आपकी ये बातें ठीक है लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी गाने जुड़ते चले जाएंगे। अब वो कौन से गाने हैं ये आपने कुछ लोगों ने अनुमान लगा भी लिया है तो चलिए सुनते हैं आपके और हमारे गानों के बीच कितना मेलजोल होता है। लेकिन इसी बीच हम आपसे कुछ बातें भी पूछना चाहते हैं कि जब आप किसी शादी समारोह में जाते हैं तो बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव वहाँ पर होते हैं, कुछ हंसी ठिठोली होती है, कुछ ऐसी शरारत हो जाती है जो ताउम्र हमें याद रहती है, तो आप किसी शादी समारोह में गए कुछ ऐसी बात हो गई जो अनोखी लगती है या जिनको सालों बाद भी उस बात को याद करते हुए आपके मन में एक खुशी की लहर दौड़ जाती है या हंसी आ जाती है या ठहाका लगाने पर मजबूर हो जाते हैं, ऐसा कोई अनुभव हो तो।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में करोड़ों रुपए की राशि हस्तांतरित की जिसमें लाडो लक्ष्मी योजना की सातवीं किस्त शामिल है। मुख्यमंत्री ने 9,76,000 बहनों के खाते में 205 करोड़ रुपए की राशि जारी की।
2: प्रदेश में जो बेनिफिशरीज हैं उन बेनिफिशरीज को सीधा लाभ उनके खाते में पहुंचाने का काम पारदर्शी तरीके से हमारी सरकार कर रही है। आज लाडो लक्ष्मी योजना की सातवीं किस्त जारी करते हुए मुझे खुशी हो रही है। अब तक 7 किस्तें जारी की जा चुकी है। 7 किस्तों में बहनों के खाते में 1,415 करोड़ रुपया जमा किया। ये महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा इनिशिएटिव था।
1: मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा,
3: इसी तरह मुख्यमंत्री ने किसान मुआवजा राशि भी जारी की।
4: जो फसल खराब हुआ था खरीफ का उसमें 1,50,583 किसानों को आज 370 करोड़ 52 लाख रुपए की मुआवजा राशि आज जारी की।
3: इसके अलावा दयालु योजना के तहत 5,677 परिवारों को 215 करोड़ 29 लाख रुपए की सहायता राशि और 11 लाख 23 हजार बहनों के खाते में गैस सिलेंडर सब्सिडी की 38 करोड़ 54 लाख रुपए की राशि जारी की गई। साथ ही 64,923 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 100 करोड़ 45 लाख रुपए की राशि डिजिटल माध्यम से प्रदान की गई। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताये बहुजन सुखाये के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है, जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। यह मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व कृषि कल्याण संगठन ने पराली प्रबंधन को लेकर संयुक्त प्रयास शुरू कर दिए हैं। राज्य सरकार पराली प्रबंधन को लेकर प्रति एकड़ 1200 रुपए की प्रोत्साहन राशि दे रही है। भिवानी में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि जिले में किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक किया जा रहा है। उन्हें यह भी बताया जा रहा है कि पराली जलाने वाले किसानों को सरकार से मिलने वाले अनुदान बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पराली जलाने वाले किसानों पर नजर रखी जा रही है। अभी तक भिवानी जिले में इंटरनेट के माध्यम से 74 पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। इनमें से 18 मामलों में FIR दर्ज की गई है और एक मामले में 5,000 का जुर्माना लगाया गया है। इंडिया AI और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार पलवल जिला न्यायालय द्वारा कल 9 मई को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल संचालन के लिए 7 बेंचों का गठन किया गया है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।

इसके संगीतकार हैं उषा खन्ना। एक साथी हमारी लिख रही है कि अरे वाह, एकदम ठीक शुरुआत। शादियों से पहले शादी का ख्याल तो आता ही है ना, तभी तो उसके बाद ही बात आगे बढ़ती है। लेकिन इसी के साथ एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि भाई शादियों का मौसम चल रहा है तो ये अब शादी का ख्याल कहाँ से आया, चाय की बात कहाँ से आई, वो तो पहले ही हो चुकी है। जी हाँ, इन बातों को हमें एक डोर में बांधना होता है और इसीलिए इन शब्दों को जोड़ करके गाने बनाए जाते हैं, तो ऐसी बातें होती है। चलिए, एक साथी लिख रहे हैं कि शादी जैसे शुभ अवसर पर सजना संवरना उत्सव की भव्यता बढ़ाता है और सामाजिक मान्यताओं को मजबूत करता है। दुल्हन का श्रृंगार परिवार में लक्ष्मी के आगमन का संकेत देता है। ये परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है जो विवाह को पवित्र बनाती है। शादी में सजना संवरना भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है जो न केवल सौंदर्य बढ़ाता है बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को भी बढ़ाता है। एक साथी लिख रहे हैं कि शादी, दुल्हन, श्रृंगार, कपड़े, खासकर जेवर सिर्फ सजावट नहीं बल्कि परंपरा, संस्कृति और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक होते हैं। निश्चित रूप से दुल्हन की शोभा बढ़ाते हैं और उसे सबसे अलग और खास लुक देते हैं। भारतीय शादियों में दुल्हन के लिए आवश्यक पारंपरिक जेवर होती है। गले में भारी और कलात्मक हार जैसे कुंदन, पोलकी या टेम्पल ज्वेलरी दुल्हन के मुख्य आकर्षण होते हैं। मांग टीका या माथा पट्टी माथे पर पहना जाता है जो चेहरे की सुंदरता को दोगुना कर देता है। लेकिन हमने आपसे ये कहा कि कहीं आप शादी में गए, वहाँ का कोई रोचक अनुभव हो तो वो हमसे साझा कीजिए। उसके बाद दो सवाल और हैं हमारे, तो वो भी हम आपसे पूछेंगे। अब हम अपनी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता है। ख्याल आया और ख्याल क्या आया, ऐसे में सजना संवरना तो बनता है। चलिए, सौदागर फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज़, गीत और संगीत रविंद्र जैन का, कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही हैं ये आप हमें बताइए।

अभिनेत्री पद्मा खन्ना पर फिल्माया गया ये गाना है। साथियों के कमेंट्स आने लग गए हैं कि शादी ब्याह में जब वो जाते हैं तो कौन सी कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो हमें हंसा देती है या मन को एक यूं कहते हैं ना खुशी से भर देती। तो एक साथी लिख रहे हैं कि मेरी शादी आखिरी लगन जुलाई में हुई थी, उस समय बाराती 2 दिन का प्रवास करता था, मूसलाधार बारिश में छाता पकड़ फेरे लिए थे, जो आज भी तस्वीर देखते हैं तो याद आता है बरसात में तुमसे मिले हम सनम। आज 38 बरस हो गए विवाह को, किंतु वो बरसात में फेरे लेना आज भी याद है। एक साथी लिख रहे कि उस समय शादी समारोह के भोजन में खाना परोसते थे, बूफे सिस्टम नहीं था, मुझे लाल कद्दू की साग पसंद नहीं है तो मैंने वो पहले ख़त्म कर दी। उन्हें लगा कि मुझे साग बहुत पसंद आई है और वो बार बार परोसते रहे और मैं ज़बरदस्ती खाती रही। पकवान लड्डू तो दूर ही रह गए, क्या करें, उस वक्त उम्र छोटी थी, समझ नहीं पाए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि शादी का मौसम चल रहा है, 1 मई 2026 को हमारे पड़ोसी के बेटे की शादी थी अजमेर में एक होटल के ग्राउंड में। बारात आ गई, दूल्हा स्टेज पर पहुंच गया, दुल्हन भी स्टेज पर पहुंच गई, वरमाला की रस्म कंप्लीट हुई थी कि अचानक तेज बारिश हो गई और घर के सदस्य और गेस्ट भी गीले हो गए। महिलाएं जो सच सवर के आई थी, तेज बारिश के कारण मेकअप खराब हो गया और मैं स्वयं और धर्म पत्नी भी गीले हो गए। तो इस तरह से ये जो समारोह है थोड़ा सा गड़बड़ा गया। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि एक रिश्तेदार की शादी में स्टार्टर और कुछ खाने की चीज़ें देने वाले वेटर घूम रहे थे, सबको दे रहे थे। मेरे पास आकर एक प्लेट मुझे दी, मैंने उसे एक कोने में ले जाकर उसे ही खाने को कहा। साथ में ये भी कहा कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आप सबको रात 12 बजे के बाद आपको खाना मिलेगा तो आप पहले खा लो। वो मना करने लगा कि कोई देख लेगा। मैंने मेरी जिम्मेदारी पर उसे खाना खिला ही दिया। उनको ये बात बहुत अच्छी लगी और कहने लगे कि कोई भी ऐसा हमारे बारे में नहीं सोचता है। जी, आपकी ये सोच बहुत हमें भी पसंद आई कि आपने दूसरों के बारे में पहले सोचा। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा जो टेक्स्ट है उसकी अगली लाइन पर थोड़ा सा गौर करते हैं। अगर चंद्रहार मिल जाए तो सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा। इसमें 2 गाने छुपे हुए हैं। तो पहला जो गीत है यानी कि चंद्रहार वाला, वो ये है। लता जी की आवाज़, हसरत जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, साधना और सुनील दत्त पर फिल्माया गया ये गाना है। फिल्म कौन सी है ये आप हमें बताइए।

ये जो गाना आपने सुना गबन फिल्म का ये गाना है। एक साथी लिखते हैं कि शादी ब्याह की बात छिड़ते ही गहनों की बात ना हो, ये कैसे हो सकता है, और उस पर कोई दुल्हन चंद्रहार पहन ले तो उसके सौंदर्य के आगे तो चांद भी शर्मा जाता है। एक हमारी साथी ने लिखा है कि शादी की एक बात बहुत ही मज़ेदार जो हम कभी नहीं भूलते, हमारे भाई की शादी से पहले जब लेडीज संगीत होता है तो उसमें हमें थोड़ी मस्ती सूझी और हम बीच में से उठ करके अपने छोटे भाई की जीन्स और शर्ट और एक कैप लगाकर आकर बैठ गए। बाद में जब सबकी नजर गई तो सब इतना हंसे और सब ने अपने साथ फोटो खिंचवाई और डांस भी किया। एक साथी हमारे ये भी लिख रहे हैं कि शादी का सीजन चल रहा है, अभी कुछ ही दिन पहले मैं शादी में गया था तो जहां भी जाता हूं सिर्फ परोसना चालू हो जाता हूं। ऐसे में दोस्तों को ज्यादा ज्यादा प्यार से खिलाना मुझे बहुत पसंद आता है। एक शादी में जब दोस्तों ने 10 गुलाब जामुन और 4 दोना रायता रख दिया, अब तो मुझे पीना होगा और खाना होगा, और सचमुच उन्होंने मुझे बहुत ही गहरा बना दिया। अब इसका अर्थ अंत में क्या था ये समझ में नहीं आया। इतनी बात समझ में आई कि आप सबको खिलाते थे, एक बार आप गए तो दूसरे दोस्तों ने आपको बहुत सारा खाना परोस दिया और कहा कि खाना ही पड़ेगा, तब आपको समझ में आया कि ज़्यादा खाना किसी को खिलाने से क्या होता है। चलिए, धन्यवाद आपका। अब हम अगली बात आपसे पूछना चाहते हैं कि जब हम या कोई भी बाराती बनकर जाते हैं तो हमारा व्यवहार कितना संयमित होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि जो बाराती आते हैं तो शादी ब्याह में वो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ों की डिमांड करते हैं जो कि पूरी नहीं कर पाते हैं घराती, या फिर बहुत हुड़दंग करते हैं तो उससे भी व्यवधान आता है, या कोई असंयमित व्यवहार करते हैं तो भी शादी समारोह की शोभा जो है वो कम हो जाती है। तो किस तरह का व्यवहार बारातियों को करना चाहिए, कितना संयम रखना चाहिए, इस बारे में भी हम आपके विचार जानना चाहते हैं। अगला गाना, सैया से नैना लड़ाने से कौन रोकेगा, अर्धांगिनी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज़, बजरू सुल्तानपुरी के बोल, वसंत देसाई का संगीत। कौन सी अभिनेत्री ये गाना गा रही हैं बताइए हमें।

अभिनेत्री मीना कुमारी पर फिल्माया गया गाना है। साथ ही हमारे लिखते हैं कि जिसे विवाह या परिणय सूत्र भी कहा जाता है, शादी ये मानव समाज का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र स्तंभ है। ये केवल दो व्यक्तियों का मिलन नहीं बल्कि दो परिवारों, संस्कृतियों और विचारधाराओं का संगम है। भारतीय परिवेश में तो शादी को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है जो इसकी गहराई और गंभीरता को दर्शाता है। और एक साथी लिख रहे हैं कि आज मंजू जी बड़ी सहजता और सरलता से धीरे धीरे बात करते हुए इस शादी के सफर को पूरा कर रही है और हम सब बाराती बनकर इस शादी में जरूर शामिल हो रहे हैं। हाँ, कोई ढोलक बजाएगा, कोई गीत गाएगा, कोई दुआएं देगा, कोई मस्ती करेगा। अभी बात खत्म नहीं हुई है और ये बात और भी आगे बढ़ेगी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मेरी शादी को इसी महीने 28 मई को 40 साल पूरे हो जाएंगे। शादी शाम को 6:45 पर थी। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों को बारात में नाचना था, किंतु मेरे बड़े भैया ने बारात को शॉर्टकट से ले जाकर मंडप में पहुंचा दी और कह रहे थे शादी का मुहूर्त निकल जाएगा और सब नाराज हो गए। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि ये 80 के दशक की बात है। मेरे गांव में दो जुड़वा बहनों की शादी थी। सब रीति रिवाज बहुत ही अच्छी तरीके से हो गई। विदाई के समय में घर परिवार वाले रोने धोने लगे हुए थे और इसी गहमी में रिश्तेदारों ने दोनों कन्याओं की विदाई करवा दी। बारात अलग अलग गाँव से आई थी। बाद में पता चला दोनों दुल्हनों के ससुराल में अदला बदली हो गई है। फिर आनन फानन में उनके सही घर में उन्हें पहुँचाया गया। आज भी वो घटना याद करके वहाँ के जो निवासी है वो हंसने लगते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारी बात आगे बढ़ती है कि दोस्तों के बीच जो हमने आपसे टेक्स्ट जो लिखा है उसके बारे में कि शादी में जाएंगे तो दोस्तों के बीच खान पान और मौज मस्ती होगी। तो इन्हीं बातों पर जो गाना है आपकी खातिर, इस फिल्म का गाना है। शैली शैलेंद्र की आवाज़, बप्पी लाहिरी का संगीत, विनोद खन्ना, रेखा और साथियों पर फिल्माया गया ये गाना है। आवाज़ किसकी है ये आपको पहचानना है।

तो दोस्तों की बातें हो गई, एक हमारे साथी की बात अब आपको पढ़ के सुनाते हैं। लिखते हैं कि बारात का उद्देश्य केवल खाना पीना और नाचना नहीं है, बल्कि एक नए रिश्ते की गवाही देना है। रस्मों के दौरान शांति बनाए रखना और वधु पक्ष की भावनाओं को समझना जरूरी है, विशेषकर विदाई के समय। जब एक परिवार अपनी बेटी को विदा कर रहा होता है, बारातियों का व्यवहार अत्यंत संवेदनशील और धैर्यपूर्ण होना चाहिए। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि आपका व्यवहार ही आपका परिचय होता है, ये बात हर बाराती को ध्यान में रखना चाहिए। एक साथी ने लिखा है कि हमारे यहाँ दूल्हे का कान पकड़ने की रस्म होती है, जिसमें 7 फेरों के बाद दुल्हन का भाई दूल्हे का कान पकड़ के रखता है और जब तक उसका नेक नहीं मिलता तब तक पकड़ कर रखता है। हम सब जब भी मेरे भाई की शादी की सीढ़ी देखते हैं तो यह सब रस्में देख कर बहुत ही हंसी आती है। एक साथी लिखते हैं कि 11 मार्च 1992 को गंगानगर जिला संगरिया में रात 10 बजे ठीक खाने के समय ऐसा तूफान आया कि सब कुछ उड़ा के ले गया, शादी का मजा किरकिरा हो गया। एक साथी लिखते हैं कि दीदी आपका एक सवाल बहुत अच्छा है, हाल ही में अपने भतीजे की शादी में गई थी, लड़की वालों ने जूती चुराई की रस्म में मुंह खोलकर पैसे मांगे, जो होना नहीं चाहिए। रस्मों को तोड़ मरोड़ कर अपनी मांग पूरी करना ये गलत बात है। जूते चुराई में बहुत झगड़ा और झंझट हुआ था। तो भाई शादी ब्याह का जो कार्य होता है सबके लिए एक अत्यंत शुभ और खुशी का मौका होता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, दूल्हा दुल्हन रस्मों रिवाजों के बंधन में बंध जाते हैं, ये हमारी बात है, टेक्स्ट में लिखी हुई बात। चलिए इसी पर एक गाना सुनवाते हैं, मोम की गुड़िया। इस फिल्म का गाना लता जी की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अभिनेत्री कौन है आप बताइए।

अभिनेत्री तनुजा पर फिल्माया गया एक ये गाना आपने सुना। एक साथी लिखते हैं कि जिस पिता की बेटी पराया घर जाने वाली है उस पिता को बहुत दर्द होता है क्योंकि उसने फूलों की तरह उसे प्यार किया है। उस पिता ने अपने जीवन भर की कमाई अपनी बेटी के दहेज में दे दी है। फिर हम बारात लेकर जाते हैं। एक मर्यादा सहनशीलता और अनुशासन ढंग से हमें बारात में जाना चाहिए और दोनों परिवार और प्रेम और स्नेह का आशीर्वाद देना चाहिए। यहाँ अभी अगला जो गाना है हम आपको सुनवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक बात आपसे पूछना चाहते हैं कि बेटी की विदाई के समय उसे क्या सीख देनी चाहिए, ये आप हमें लिख करके भेजिए। और एक हमारे साथी ने ये बात लिखी है कि हाँ ये जो गीत है इसके बारे में मैंने सोचा तो था, यानी जो अभी मोम की गुड़िया फिल्म का गाना, लेकिन उसके बारे में हमने लिखा नहीं, पर पसंद है गाना और आपने सुनवा दिया। एक साथी लिख रहे हैं कि बारात का उद्देश्य एंजॉयमेंट करना ही नहीं है, बाराती घराती को बहुत तंग भी करते हैं और जिसे कभी कभी माहौल बहुत ख़राब भी हो जाता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साथी लिख रहे हैं कि पुराने ज़माने में नीचे बैठकर यानी पंगत में खाने में तो मज़ा आता है, बूफे में नहीं आता है। वहीं अब शादियों में बूफे के बदले टेबल कुर्सियों पर बिठा कर खाना परोसा जाता है। ये बदलाव काफ़ी अच्छा और सफल भी हो रहा है। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि समय धीरे धीरे बदल रहा है, हमारे भारत के कई शहरों में और कुछ समाजों में यह सख्त फैसला लिया गया है कि शादी में निश्चित प्रकार के व्यंजन ही बनाए जाएंगे और खिलाए जाएंगे ताकि व्यंजन व्यर्थ ना जाए और दुल्हा दुल्हन के माता पिता पर खर्च का बोझ ना पड़े, अन्य फिजूल खर्चों को भी रोका जाए। मेरी प्रभु परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि हमारे संपूर्ण देश में सभी समाजों में ये निर्णय लेना चाहिए। चलिए अब हम अपने टेक्स्ट की बात को आगे बढ़ाते हैं कि दुल्हन अपनों की दुआएं लेकर इस घर आंगन से विदा हो जाती है। नीलकमल फिल्म का ये गाना अब आपको सुनवाते हैं। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, साहिल उद्यानवी के बोल, संगीत किसका है ये आपको बताना है। साथ ही आप हमें ये भी लिख करके भेजिए कि बेटी को विदाई के समय क्या सीख देनी चाहिए।

नीलकमल फिल्म का गाना आपने सुना, संगीत रवि का। जब भी ये गाना सुनते हैं तो हाथ कंप कपा जाते हैं और आंखें नम तो हो ही जाती है, मुझे ऐसा लगता है, आप बताइएगा। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मंजरी, जब मेरी बेटी पैदा हो रही थी ये गाना बज रहा था, आज याद आ गई और मैं रोने लगी हूँ। जिस बेटी को हम बड़े प्यार से पालते हैं उसे एक ही झटके में दूसरे को सौंप देते हैं, ये बात एक माँ बाप से बेहतर और कौन जान सकता है उस दर्द को या उस तकलीफ को। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आजकल तो लड़कियाँ खुद ब खुद सब सीख लेती हैं, माँ की सीख यदि मान ले तो ये जो घर आजकल टूट रहे हैं ये टूटने से बच जाए। लेकिन ये सीख की अगर हम बात करते हैं तो क्या केवल लड़कियों के लिए सीख होती है? लड़कों के लिए भी तो बहुत सीख होती है, लड़के वालों के लिए भी तो बहुत सारी सीख होती है, तो उन बातों पर भी हमें गौर करना चाहिए। और एक साथी लिख रहे हैं कि बेटी का हृदय सिंधु समान विशाल होता है, अतः सभी उठती लहरों ज्वारों और हृदयंगम कर शांत चित्त नए जीवन में प्रवेश करना चाहिए। चलिए अगला गाना हम सुनते हैं, आधी रात होगी, आधा चंद्रमा होगा, बात आधी होगी, नवरंग फिल्म का गाना।

ये सीख उसे देना चाहिए। चलिए हमारी जो अगली बात है वो ये है कि प्यार से बना एक प्यारा घर होगा जो उनकी नजरों में सबसे न्यारा होगा। साथ साथ फिल्म का गाना जगजीत सिंह, चित्रा सिंह की आवाजें, जावेद अख्तर के बोल, कुलदीप सिंह का संगीत, कौन से कलाकारों पर फिल्माया गया है आप बताइए।

आज सुरीला सफर कार्यक्रम में जिस गाने की सबसे ज्यादा चर्चा हुई या फिर लोगों को पसंद आया वो नीलकमल फिल्म का गाना। लिखते हैं कि बाबुल की दुआएं लेती जा, ये गीत पिता और पुत्री के उस अनकहे और पवित्र रिश्ते की पराकाष्ठा है जहां एक पिता अपने जिगर के टुकड़े को विदा करते समय अपना कलेजा निकाल कर रख देता है। मोहम्मद रफी साहब की दर्द भरी आवाज ने इस गाने में पिता की लाचारी, उसकी ममता और उसकी शुभकामनाओं को इस तरह पिरोया है कि आज भी यह गाना बजते ही आंखें नम हो जाती है। धन्यवाद आपका। और आज विविध भारती का ये जो कार्यक्रम है सुरीला सफर, ये सुरीला सफर आपने तय किया मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ। अब कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट है कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल आज अपने नेता का चुनाव करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने के लिए पार्टी के नियुक्त पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही कलकत्ता पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में वो नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। इसी बैठक में बीजेपी विधायक दल की नए नेता का चयन किया जाएगा। इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य, आकाशवाणी के लिए।
0: शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरु थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता का निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व द्वारा केरल में पार्टी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर लिया जाएगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि के लिए डीआरडीओ, वायुसेना, डीसीपीपी और उद्योग जगत को बधाई दी है। श्री सिंह ने इसे भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है कि कैसे विश्वास और संस्कृति बार बार हुए आक्रमणों तथा मुश्किलों के बाद भी अस्तित्व में रह सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वाधीनता के बाद मंदिर के पुनर्निर्माण में देश के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका का स्मरण किया। श्री मोदी ने कहा कि मंदिर के इतिहास से जुड़े शौर्य और बलिदान को सम्मान करने के लिए अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित होंगी। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा है कि प्रवासन को लेकर भारत का दृष्टिकोण प्रवासियों की सुरक्षा, देश छोड़ने से लेकर उनकी संभावित वापसी तक व्यापक शासन व्यवस्था और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के मुख्य संचालन सिद्धांतों पर आधारित है। उन्होंने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय पलायन समीक्षा मंच को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि भारत प्रवासियों की आवाजाही को सुचारू बनाने के प्रयास कर रहा है।
4: अप्रोच टू माइग्रेशन गवर्नेंस।
5: भारत ने 23 देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौतियों से निपटते हुए समावेशी, मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता के स्तंभ के रूप में भारत की बढ़ती भूमिका का जिक्र करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समृद्धि में देश के महत्वपूर्ण योगदान का उल्लेख किया। श्री जयशंकर ने सूरीनाम में विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस वर्ष वैश्विक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान के अनुसार भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है।
6: इंडिया कंट्रीब्यूट्स।
5: भारत कुल वैश्विक विकास में 17% का योगदान देता है। हम अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जोखिम को कम करने में मदद कर रहे हैं। हम अधिक अवसर पैदा करने में सहायक हैं। हम आज और अधिक विकल्प तैयार कर रहे हैं। हम आज विभिन्न देशों के लिए ऐसे और अधिक मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहे हैं और उन्हें अंतिम रूप दे रहे हैं ताकि वे इनका लाभ उठा सकें।
6: इंक्लूडिंग मोर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर कंट्रीज टू अवेल ऑफ इट।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @HIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। पिछले वर्ष लगाए गए वैश्विक टैरिफ को अदालत द्वारा स्थगित करने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने नए शुल्कों की घोषणा की थी। अमेरिकी प्रशासन ने इसके बाद व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 122 का इस्तेमाल कर 24 जुलाई 2026 तक अस्थायी 10% टैरिफ लागू करने का फैसला किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष

0: अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि अपने लोगों की हत्या करने वाले ऐसे शासन को हथियार प्राप्त करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए जिससे लाखों लोगों की जान जा सकती हो। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। लगभग 3.5 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत आकाशवाणी भवन से हुई। ये मैराथन कृषि भवन, रेल भवन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर समाप्त हुई। मैराथन पूरा करने वाले सभी प्रतिभागियों को पदक प्रदान किए गए। वहीं पुरुष और महिला दोनों वर्गों में शीर्ष 3 प्रतिभागियों को ट्रॉफी प्रदान की गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत 6ठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। प्रतियोगिता में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। 213 रन के लक्ष्य के जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु निर्धारित 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सका। मिशेल मार्श को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 527 अंक गिरकर 77,318 पर, जबकि निफ्टी 153 अंक की गिरावट के साथ 24,173 पर था। मौसम विभाग ने 10 से 13 मई के बीच देश के उत्तर पश्चिमी भागों के विभिन्न स्थानों पर बिजली चमकने, बादल गरजने और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। केरला, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुच्चेरी और करैकाल में तेज बारिश की संभावना है। रविवार तक उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए आज कोलकाता में बैठक। डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना ने स्वदेशी ग्लाइड हथियार तारा का सफल उड़ान परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर को भारत की दृढ़ता, एकता और सभ्यतागत शक्ति का शाश्वत प्रतीक बताया। अमरीकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने ट्रंप प्रशासन द्वारा भारत तथा अन्य देशों से आयात पर लगाए गए 10% शुल्क को अवैध घोषित किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिका और यूरोपीय संघ ये सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास परमाणु हथियार न हो। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना प्यार किया तो डरना क्या, इस फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज, शकील बदायूनी के बोल, संगीत है रवि का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए। विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आह फिल्म का गाना अब आपको सुनवाएंगे हम। लता मंगेशकर की आवाज, गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

शैलेंद्र का लिखा और शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया। ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में अब आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम पतीता।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मदारी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजें, फारूक कैसर के बोल, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में अब आपको सुनवाते हैं इंदिवर का लिखा हुआ गाना, कल्याण जी आनंद जी का संगीत, फिल्म का नाम पारस।

पोस्ट बॉक्स नंबर 999 ये फिल्म का नाम है। हेमंत कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, पीएल संतोषी का लिखा हुआ गाना और संगीत है कल्याण जी वीरजी शाह का।

0: आकाशवाणी अब अपने 90 बरस की ओर बढ़ रहा है। इस मौके पर आज यानी 8 मई को विविध भारती एक वॉकथॉन आयोजित कर रहा है।
1: तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे।
0: तो आज शाम 5 बजे मिलिए गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर। और चलिए हमारे साथ वॉकथॉन पर।
1: चलो चले मितवा।
0: आकाशवाणी के 90 बरस के जश्न में हिस्सा लीजिए, विविध भारती के सदस्यों के साथ वॉक कीजिए।
2: चलते चलते
0: आज शाम 5 बजे गोराई 2 के छत्रपति शिवाजी महाराज ग्राउंड यानी पेप्सी ग्राउंड पर।
1: आजा शाम होने आई।
3: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बड़ा भाई फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, एहसान रिजवी के बोल, संगीत नाशाद का।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम हेलो सहेली बस कुछ ही पलों में।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: सखियों, हौसला हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाता है। मुश्किलें बार बार राहें रोकती हैं, लेकिन उम्मीद की किरण लक्ष्य तक पहुंचा ही देती है। और हर मुश्किल हो जाती है दूर जब बातें करके मन हो जाए हल्का। और बातें करने के लिए सखियों से बेहतर और क्या है, है ना? तो बस आज अपनी सखियों से बातें करने के लिए, उनका मन हल्का करने के लिए विविध भारती के स्टूडियो में मौजूद हूँ मैं, आपकी दोस्त सहेली दीपा माहेश्वरी। आज आपकी सखी से होंगी बातें बहुत सारी। तो पहले कॉल की आशा लिए हम बैठे हैं और ये हुआ हमारा इंतजार खत्म। बजी फोन की घंटी और देखते हैं किस सखी का है ये पहला कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, फोन के उस तरफ। आज कौन से सखी से बात हो रही है हमारी, क्या नाम है आपका?
1: जी मेरा नाम संगीता अग्रवाल है।
0: कहाँ से बात कर रही हैं आप संगीता जी?
1: मैं गुड़गांव मुंबई से बात कर रही हूँ।
0: अच्छा, मुंबई में रहती हैं आप तो?
1: हाँ जी।
0: जीवन में इन दिनों क्या चल रहा है संगीता जी, कैसी हैं आप?
1: हाँ एकदम बढ़िया, जीवन भी अच्छा चल रहा है।
0: तो आप बढ़िया बात है। और आप घर पर ही रहती हैं, गृहिणी हैं या किसी तरह का कोई काम करती हैं, क्या करती हैं आप?
1: वैसे तो गृहिणी हूँ, लेकिन थोड़ा पार्ट टाइम में मैं अपना इंडियन हैंडीक्राफ्ट का मेरा छोटा सा बिजनेस है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया। इंडियन हैंडीक्राफ्ट मतलब कि हस्तकला, कहाँ से लेती हैं? घर पर ही कुछ बनाती हैं या कहीं से मंगवाते हैं आप, किस तरह से होता है ये सब?
1: हाँ जी, मैं मतलब थोड़ा सा ट्रेडिंग जैसे आप समझ सकते हैं उसे, जयपुर से रिलेटेड है मेरे सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम।
0: अच्छा, तो ये अच्छा, तो ये जो सामान होते हैं आप जयपुर से मंगाती हैं सारी चीजें, तो गिफ्ट आइटम्स होते हैं या इनको फिर किस तरह से बेच

0: रहती हैं, और ये भी बताइए कि आप कैसे पसंद करती हैं, क्योंकि आप तो रहती हैं मुंबई और आपका अधिकतर जो सामान है वो आता है जयपुर से, तो किस तरह से ये जो चुनाव आप करती हैं कि क्या पसंद आएगा आपके कस्टमर को, ये सब कैसे होता है?
1: आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, तो व्हाट्सएप पे सारे पिक्स आ जाते हैं हमारे होलसेलर के यहाँ से, मैन्युफैक्चरर के यहाँ से, तो उसमें भी सेलेक्ट करते हैं, और साल में दो बार हमारा विजिट रहता है जयपुर में।
0: अच्छा,
1: तो वहाँ पे सिलेक्शन करके आते हैं ज्यादातर।
0: अच्छा, तो बहुत बढ़िया बात है। और किस तरह का लोग आपके अनुभव के अनुसार किस तरह की चीजें लोग ज्यादा पसंद करते हैं?
1: मोस्टली ना जैसे पेंटिंग्स है, टेबल के ऊपर रखने के जो आर्टिफैक्ट्स रहते हैं वो रहते हैं, और फ्रोज वगैरह वगैरह रहते हैं, तो उस तरीके के आइटम लोग बहुत पसंद करते हैं
0: जी।
1: ज्यादातर टेबल वेयर आइटम जो रहते हैं
0: वो ज्यादा पसंद किए जाते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है ना कि आप रहती हैं मुंबई और जो आजकल का डिजिटल जमाना है इसका पूरा इस्तेमाल कर रही हैं आप, और जयपुर से सामान मंगवा करके यहाँ मुंबई में बेचती हैं, मतलब आप सेल आउट करती हैं। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाएं?
1: गीत तो वैसे मुझे पुराने काफी पसंद है, उसमें से एक मेरा पसंदीदा गीत है ओ मेरे दिल के चैन, जो कि फिल्म है मेरे जीवन साथी से
0: जी।
1: और मुंबई की भागदौड़ में चैन तो कम ही है, इसलिए गीत सुनकर मैं थोड़ा चैन मिल जाता है
0: जी। तो आपकी पसंद का ये गीत आपको प्रस्तुत करते हैं, और लीजिए चैन के थोड़े से लम्हे।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, आज किससे बात हो रही है हमारी?
1: जी मैं पूनम मंडोवरा जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ।
0: मध्य प्रदेश जबलपुर से क्या बात है? तो पूनम जी, क्या चलता है आपके जीवन में और क्या कर रही हैं आप इस वक्त?
1: शिक्षिका हूँ केंद्रीय विद्यालय में।
0: अरे वाह, आप एक शिक्षिका हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती हैं। तो कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं आप?
1: कक्षा 6 से 10 तक मैं विज्ञान की शिक्षिका हूँ।
0: विज्ञान की शिक्षिका कक्षा 6 से कक्षा 10वीं तक। तो ये आप कितने सालों से पढ़ा रही हैं?
1: मुझे 14-15 वर्षों का अनुभव।
0: 14-15 वर्षों का, यानी कि बहुत सारा एक अनुभव आपके साथ इकट्ठा हो गया होगा। तो काफी सारा समय आपको पढ़ाने में निकल जाता होगा।
1: जी बिल्कुल, अभी नया सिलेबस भी आपने सुना भी होगा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो हम लोग का सिलेबस की बुक्स भी हर साल लगभग बदल रही है।
0: अच्छा अच्छा, तो इसके लिए तो आपको भी तैयारी करनी होती होगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, हमें भी कई वर्कशॉप अटेंड करनी पड़ती हैं। कई बार हमें घर से सप्ताह भर 10 दिन के लिए बाहर रहना पड़ता है। घर में भी हमें करीब 1 या 2 घंटा पढ़ाई करनी पड़ती है।
0: जी देखिए, सब जानते हैं कि पढ़ाने के लिए खुद पढ़ना होना या शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी तो है ही, लेकिन हमेशा लगातार पढ़ते रहना पड़ता है। तो आप फिर खुद भी पढ़ती हैं और अपने बच्चों को भी पढ़ाती हैं, कैसे ये सब चीज आप मैनेज करते हैं?
1: जी सहेली आपने बिल्कुल सही बोला, ये बहुत मुश्किल काम है क्योंकि हमें ना समय का प्रबंधन बड़े अच्छे से करना पड़ता है।
0: जी ये बात तो बिल्कुल सही कही।
1: अपने दोनों बच्चों पर भी ध्यान देना है, साथ ही मुझे विद्यालय के बच्चों पर भी बराबरी से ध्यान देना है। तो मुझे समय का प्रबंधन बड़े सकुशलता से करना पड़ता है।
0: जी बिल्कुल
1: सही कहूँ तो मैं कुछ टीवी वगैरह ज्यादा मोबाइल वगैरह नहीं देखती हूँ। बस हाँ, आपके विविध भारती के गाने और विविध भारती की जो मुझे न्यूज है
0: जी जी
1: वो बड़ी अच्छी लगती है, तो अपने रिक्रिएशन या अपने एंजॉयमेंट के लिए वो जरूर मैं सुनती हूँ।
0: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। और दोनों बच्चे सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं या किसी और भी अलग एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी वो सब पसंद करते हैं भाग लेना?
1: हाँ जी बिल्कुल, आपने सही बोला, मेरे दोनों बच्चे चेस के बड़े शौकीन हैं।
0: चेस खेल के शौकीन है, क्या बात है। घर में खेला जाता है या स्कूल में ही सिखा रहे हैं आप बच्चों को?
1: नहीं, स्कूल में सिखाते हैं, साथ में मैं उन्हें बाहर चेस क्लब मैंने ज्वाइन करा रखा है। और अभी रिसेंटली वो दोनों रीजनल चेस स्पोर्ट्स मीट में गए थे
0: जी,
1: और दोनों का सिलेक्शन नेशनल्स के लिए हुआ है।
0: क्या बात है, तो बहुत बहुत बधाई आपको। पूनम जी बताइए, इस बात पर कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप?
1: जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे यादों की बारात मूवी का कोई सा भी गाना सुना दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं फिल्म यादों की बारात से ये गीत।

0: अंतराल हुआ खत्म और चलिए देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: बड़ौदा से।
0: बड़ौदा से? बड़ौदा से कौन सी से की बात कर रही है? क्या नाम है आपका?
1: बड़ौदा से रमीला बेन बोल रही हूँ।
0: बड़ौदा से रमीला बेन, कैसा है बड़ौदा रमीला बेन?
1: ओ बड़ौदा तो बहुत बड़ा है, मगर हम तो बड़ौदा में छोटा सा गांव है सुंदरपुरा, वहाँ से बोल रही हूँ।
0: अच्छा, ये बड़ौदा से पास में है सुंदरपुरा?
1: सुंदरपुरा गाँव है
0: जी। तो इन दिनों तो बहुत गर्मी होगी वहाँ?
1: बहुत सारी गर्मी है, रहने को भी कहाँ जाए कहाँ जाए, ऐसा लगता बर्फ गिरे तो अच्छा है।
0: लेकिन आम के भी तो मजे ले रहे होंगे आप?
1: हाँ हाँ, आम हमारे पास में बगीचे है बहुत सारे, वहाँ आम के नए नए कितने भी सारे आम है।
0: अच्छा,
1: मेरी शादी हुई थी 1990 में, अभी 36 के उतर के 37 में हो जाएगी।
0: 36 वर्ष पूरे हो गए आपके शादी के? तो ये तो बहुत बड़ा एक साथ आपका आपके पति के साथ है, तो इतने सालों का क्या अनुभव रहा आपका, क्या कहना चाहेंगी आप हमारी सखियों को?
1: हमारे 3 बच्चे हैं।
0: 3 बच्चे, अरे वाह। तो बहुत सारे जी।
1: और वो प्रियंका।
0: अच्छा, तो जीवन के बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे आपने इतने सालों में?
1: अरे बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं।
0: आपके आने वाले जिंदगी में सुखद और खुश भरे दिन आए, ये शुभकामना करते हैं। रमीला बेन, आज आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मेरे पति को तो क्रांति पिक्चर का गाना बहुत अच्छा लगता है,
0: तो क्रांति फिल्म का एक गीत आपके लिए, ये हम विविध भारती की ओर से सुनिए।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है आज हमारी?
1: इस गर्मी में थोड़ी सी ठंडक का एहसास हुआ जब आपकी आवाज का दीपा जी हमारे कानों में आगाज हुआ।
0: जी आपने अपना नाम नहीं बताया, आपने हमारा नाम तो पहचान लिया।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, पालदा नाका इंदौर से
0: हसीना भी। तो बताइए क्या हाल है इंदौर के? और इंदौर का तो जो भोजन है, खाना वहाँ का बहुत मशहूर है, सराफा, 56 दुकानें।
1: जी बहुत मशहूर है मैडम यहाँ पर, और साफ सफाई में नंबर वन है।
0: जी हाँ, ये तो नंबर वन है हमारे देश का साफ सफाई में इंदौर शहर। तो क्या चल रहा है इन दिनों आपके जीवन में?
1: अभी तो जॉब पे थे मैडम, तो आपको कॉल कर रहे थे। और गर्मी बहुत ज्यादा है गर्मी।
0: जी तो आप जॉब करती हैं?
1: जी सिलाई करते हैं।
0: सिलाई का काम करती हैं, तो घर से करती हैं या कहीं जाती हैं आप?
1: दुकान पे जाना पड़ता है।
0: अच्छा, इन दिनों में आप अपना ध्यान रखिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो सर पे कपड़ा वगैरह बांध के निकलती हैं ना आप?
1: हाँ, 9 बजे निकल जाते हैं, इतनी ज्यादा 9 बजे इतनी गर्मी नहीं रहती है, मगर फिर भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है।
0: हाँ ये बात तो सही है। और जब काम से आप फुर्सत पाती हैं तो आप क्या करती हैं अपने फुर्सत के क्षणों में?
1: अधिकतर सुनते हैं मैडम, रेडियो के बिना तो हम लोग एक पल नहीं रह पाते। हाँ। कहीं पर भी फोन इन का भी काम आता है ना, सब दूर लगाते रहते हैं।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए आज आपका कॉल लग भी गया, तो आज हसीना भी आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
1: इनका नाम है अपना बना लो, और गाने के बोल है, इस दिल का नहीं कोई, इस दिल से प्यार करना, देखो कोई प्यार न करना, मरना लेकिन प्यार न करना, ये सुना दीजिए।
0: चलिए लीजिए, पेश है आप ही की पसंद का गीत विविध भारती की ओर से।

0: हेलो सहेली।
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, किस सहेली से बात हो रही है हमारी?
1: साधना प्रतापगढ़ से।
0: साधना जी प्रतापगढ़ से, कैसी है साधना जी?
1: बहुत अच्छी, अपना सही
0: है। बस हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। और कैसा चल रहा है मौसम प्रतापगढ़ में?
1: बहुत ही अच्छा मौसम है, किस तरह का मौसम है।
0: अच्छा
1: जी, आज मुझे गाना सुनना
0: है। हाँ बताइए, कौन सी फिल्म का गाना सुनना चाहती हैं आप?
1: मिलन फिल्म का गाना है।
0: तो चलिए सुनते हैं पिया मिलन का गोरा मुखड़ा गुलाबी चुनरिया, आप ही की पसंद का ये गीत।

0: बाद हम फिर हाजिर हैं। देखते हैं कि सहेली का लगा है कॉल। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम।
0: नमस्ते, क्या नाम है आपका? कौन से सखी से बात हो रही है हमारी?
1: हमारा ये मेरी नाम है ग्राम बैठी पोस्ट पकड़िया जिला सिंदौली से।
0: जिला सिंदौली से। ये कौन से बड़े शहर के पास पड़ता है इमरती जी?
1: ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी में सिंदौली शहर पड़ता है।
0: अच्छा, तो वहाँ से बात कर रही हैं। क्या करती हैं इमरती जी?
1: मैं घर में रहती हूँ मैम, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, आप देख नहीं सकते, घर पे रहते हैं तो?
1: लेकिन मैं आप लोगों का प्रोग्राम सुनती हूँ हमेशा मैं रेडियो पे।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो
1: और आप लोग आते हैं सखी सहेली में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग हंसते भी तभी अच्छा लगता है।
0: तो मुस्कान आप ही सबके लिए होती है और जो बातें होती हैं हम सब सखियों के लिए तो होती है। जो बात आप लोग लिखते हैं, जो संदेश हम पढ़ के आपको सुनाते हैं, वो चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़े, कुछ नया सीखे, है ना?
1: जी, हर विषय पे आप लोग जानकारियां देते हैं, हर विषय की जो बातचीत आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा
0: जी
1: जानकारियां भी मिलती है रेडियो के जरिए।
0: जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तो इमरती जी बताइए, आज कौन सी फिल्म का गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: फिल्म का इतना मैं चाहूँ तुझे, उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में गीत है, बहुत अच्छा गीत लगता है मुझे। नए पुराने सभी तरह के गीत अच्छे लगते हैं, रेडियो पे जैसा भी गाना बजता है वो सभी गाने अच्छे।
0: जी बिल्कुल, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, मैं रजनी रावत बोल रही हूँ।
0: रजनी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप?
1: जी, मैं एमपी भिंड जिले से बोल रही हूँ।
0: एमपी भिंड से। रजनी जी, क्या करते हैं आप? गृहिणी हैं या कुछ किसी तरह का काम करते हैं?
1: जी, वैसे तो मैं गृहिणी ही हूँ और घर में ही काम करती हूँ जो कुछ करना है। बाकी फिल्मी गाने सुनने का बहुत शौक है, पुराने गीत
0: जी।
1: और आपके प्रोग्राम सुनने का शौक है पूरे विविध भारती के।
0: क्या बात है, विविध भारती के आप कौन कौन से कार्यक्रम सुनती हैं?
1: विविध भारती का एक गीत मालिका है
0: जी,
1: सबसे अच्छा लगता है मुझे छाया गीत।
0: जी हाँ,
1: और वो कम से कम मैं 15-20 सालों से मतलब वो कार्यक्रम सुन रही हूँ। मैं छोटे से मतलब मैंने विविध भारती सुना है बचपन से, और मेरी उम्र मतलब लगभग 45 साल होगी
0: जी।
1: मैंने कम से कम 20-25 साल हो गए विविध भारती सुनते सुनते।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है।
1: जी हाँ, और सखी सहेली सुनना थी यही में
0: जी।
1: सखी सहेली तो बहुत बाद में शुरू हुआ था प्रोग्राम।
0: तो आज रजनी जी कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: जी, मुझे आशा भोसले के बाद में तीसरी कसम फिल्म का गाना है पान खाए सैया हमारे।
0: तो आशा जी को याद करते हुए सुनते हैं ये आपकी पसंद का गीत। पान

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: हम झनकार बोल रहे हैं, मुंबई से।
0: झनकार मुंबई से, क्या बात है, आपकी तो आवाज में ही एक झनक सुनाई दे रही है झनकार जी।
1: जी बहुत धन्यवाद।
0: तो क्या करती हैं झनकार आप?
1: आजकल तो मेरी एक कथक टीचर है और श्रीमती नूतन पटवर्धन, मैं उनको असिस्ट करती हूँ, बच्चों को कथक सिखाती हूँ उनके साथ।
0: क्या बात है, तो आप कथक सिखाती हैं, इसका मतलब है कि आपने भी पहले सीखा होगा।
1: मैं बहुत साल से उनके साथ हूँ और अभी भी सीख ही रही हूँ, क्योंकि ये ऐसी विद्या है जो चलती रहती है, हम कभी कह नहीं सकते कि हम परांगत हो गए हैं। तो अभी भी उनके साथ सीख ही रही हूँ, कुछ आया नहीं है ज्यादा, पर हाँ ये उन्होंने कहा कि थोड़ा मेरी हेल्प करो, साथ में असिस्ट करो, तो मुझे तो बहुत गौरव महसूस हुआ, तो मैं उनके साथ बच्चों को आजकल कथक थोड़ा सिखाती हूँ।
0: बहुत सुंदर बात है,
1: क्या बात है। शायद आपको पीछे घुंघरू सुनाई पड़े होंगे, क्योंकि मैं उसी क्लास में हूँ।
0: अच्छा, आप उसी क्लास में हैं और सिखा रही हैं?
1: सीख रही हूँ इस वक्त, तो
0: सीख रही हैं
1: अपनी।
0: अच्छा, बहुत सुंदर बात है। और जब सिखाती हैं आप, आपने जो सीखा उसी तरीके से आप सिखाती हैं, या अपने आपने कोई अपना ही एक तरीका अपनाया है बच्चों को सिखाने?
1: नहीं, शास्त्रीय संगीत भी सीखती हूँ मैं, और कथक में भी एक हम गुरु जो प्रणाली होती है, गुरु शिष्य, हम उसी को फॉलो करते हैं। तो इसमें आपको अपना बिल्कुल नहीं डालना होता है
0: जी।
1: ये बहुत संभाल के दी गई विद्याएं होती हैं जो गुरु से शिष्यों में जाती है, तो उसको थोड़ा सा संभालना पड़ता है और अपने को थोड़ा पीछे रखना पड़ता है।
0: ये बात
1: हम कुछ भी करते हैं, सिखाते हैं, हमको हमारे दिमाग में पता है। दीपा जी, मैं आपको बात कर रही हूँ, मैं जब बोलती हूँ ना बच्चों के साथ, है तत तत है, तो मेरे दिमाग में मेरी ताई की आवाज होती, गुरु की।
0: क्या बात है,
1: वो जैसे बोलती थी थई जोर से मारो, तक लगाओ, तो वो अपने आप मेरे अंदर से मेरे गुरु ही बोल रहे होते हैं, वो ही कोशिश करती हूँ।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: तो अपूर्णता है थोड़ा, तो है तो गलती होती होगी, लेकिन ये हम वैसी ही चाहते हैं जैसे है, कम से कम पहले थोड़ा आ जाए, तब हम शायद कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं।
0: जी बिल्कुल सही,
1: योग्य हो जाए तब कर सकते हैं, अभी मुझे नहीं लगता मैं उस योग्य हूँ।
0: देखिए, गुरु शिष्य परंपरा की यही खूबसूरती है कि कभी भी जो सीखता है विद्यार्थी हमेशा अपने आप को विद्यार्थी ही समझता है, और कहीं वो अहम या अहंकार की भावना पनप ही नहीं पाती।
1: इसलिए हमारे यहाँ तो शुरू में नमस्कार किया जाता है
0: जी,
1: जिस जगह हम हैं उस जगह को अपने गुरु को सबको नमस्कार करके ही हम क्लास शुरू करते हैं
0: जी। तो आप कोई छोटा सा तोड़ा टुकड़ा अगर इस वक्त आपको याद है तो बोल के बताएंगी?
1: कोशिश कर सकती हूँ
0: जी,
1: और चलिए मैं आपको एक टुकड़ा बोलती हूँ
0: जी,
1: जो तीन ताल में है, और मैं बोलती हूँ तो तीन ताल में 16 मात्रा होते हैं, और मैं वो आपको टुकड़ा बोलती हूँ। तत तत थुन थुन तिक दा दिक दिक है, तत तत थुन थुन तिक दा दिक दिक है, तिक दा दिक दिक है, तिक दा दिक दिक है, ता थे तत तत थे, तत तत थे, तत तत थे। इसे सादा तोड़ा बोलते हैं, और कथक में जो कई अंग होते हैं जैसे ठाट है, आमद है, तोड़े हैं, टुकड़े हैं, परन है, तो ऐसा ही ये एक सादा तोड़ा है। और ये बहुत ही शुरू में 2-1 साल बच्चे जब सीखते हैं तो फिर उनको सिखाया जाता है।
0: क्या बात
1: और
0: है,
1: और आपने एकदम से बोला तो बस मेरे को ये मैंने बोल दिया
0: जी। तो देखिए, लेकिन आप क्योंकि हमेशा सीख भी रही हैं, सिखा भी रही हैं, तो आपको वो मुंह जबानी अच्छे से याद है। तो बताइए झनकार जी, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: मैं वो एक स्वामी पिचल का है, पल भर में ये क्या हो गया, मुझे
0: जी
1: बहुत
0: जी जी जी वो बहुत सुंदर गीत है, तो सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, किससे बात हो रही है हमारी?
1: मेरा नाम सीमा है।
0: सीमा जी कहाँ से बात कर रही हैं सीमा जी?
1: ये उज्जैन, उज्जैन के पास गांव है पान बिहार।
0: अच्छा सा नाम है, पान बिहार, है ना, सुनने में
1: अच्छा था और बड़ा भी।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्या करती हैं सीमा जी आप?
1: कुछ नहीं मैडम, मैं तो खेती का काम करती हूँ।
0: खेती का काम? तो ये कोई छोटा काम नहीं है, ये तो बहुत बड़ा काम है और बहुत महत्वपूर्ण भी है ना।
1: महत्वपूर्ण भी, मतलब खेत पे ही शुरुआत खेत से ही होती है हमारे तो सुबह की।
0: तो किस तरह का काम आपका खेत पे रहता है? कोई
1: ये निंदाई खुदाई है, तो कोई चारा वारा डालना है
0: जी,
1: इसमें पानी देना है।
0: तो वहाँ पे पशु भी है?
1: हाँ है ना,
0: क्योंकि आपने चारे की बात की ना, तो वहाँ पे पशु भी है
1: ना। है भैंस?
0: क्या है वहाँ पर पशुधन में?
1: भैंस
0: है। कितनी भैंसे हैं?
1: दो भैंसे हैं और दो गाय हैं।
0: दो गाय दो भैंसे, तो भाई इन्हें भी बहुत ध्यान से रखना होता है ना, बिल्कुल अपने परिवार अपने बच्चों की तरह।
1: बच्चों की तरह रखना पड़ता है उनको, टाइम से पानी पिलाना।
0: जी तो इन दिनों गर्मी भी बहुत है, तो उनके भी चारा देने का,
1: तो उनको छाया की व्यवस्था भी की है ना।
0: जी अच्छा, बहुत सुंदर बात कि उनके, आप खुद का तो ध्यान रख ही रही हैं, उनके लिए भी छाया की एक अलग से जगह बनाई है जहाँ पे वो छाव में रह सके, बैठ सके,
1: बंदे रहते हैं और उनको चारा पानी पानी वानी टाइम टाइम से खिलाते हैं।
0: जी तो थक कर जब शाम को घर पे आती हैं, फिर से आपको भोजन बनाना होता होगा?
1: पे घर रहे, इसमें घर में अंदर बांध के खिला देते हैं।
0: अच्छा अच्छा, तो बहुत अच्छा लगा बात करके आपसे सीमा जी। आप बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज?
1: जी मैडम, मेरे को वो सुनना है, माँ तो कितनी अच्छी है कितनी भोली है।
0: तू कितनी अच्छी है तू कितनी भोली है, तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: जी, इस वक्त किससे बात हो रही है हमारी?
1: मैम, मैं मनीषा कौशल इंदौर से बात कर रही हूँ।
0: मनीषा जी इंदौर से। मनीषा जी जी, क्या कर रही थी अभी आप फोन लगाने से पहले?
1: मैम, मैंने अभी ब्लाउज कटिंग कर रही हूँ, सिलाई का काम करती हूँ मैं।
0: सिलाई का काम करती हैं।
1: खुशी इतनी हो रही मुझे कि मेरी कॉल लग गई, पहली बार कॉल लगा मेरा।
0: तो ये तो बहुत अच्छी बात है ना।
1: क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैं हमेशा बोलते थे कि एक बार मैं लगा के रहूंगी, क्योंकि वो हमेशा सखी सहेली सुनते हैं, दिन भर उनका प्रोग्राम चलता रहता है। उनको मतलब शौक है रेडियो सुनने का, तो वो वेडिंग का काम करते हैं, तो वो मतलब चलता रहता उनका डेली का, तो वो बोलते लगा के देखना एक बार तो लग ही जाएगा तेरा।
0: बोल बहुत अच्छा लगा। आप बताइए, आज आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनना चाहती है?
1: मैम बहुत प्यार करते हैं तुमसे, सलंग वाला गाना सुनवा दीजिए।
0: तो चलिए सुनते हैं आप ही की पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली दीदी, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, बताइए। हाँ, किससे बात हो रही है हमारी आज?
1: दीदी मैं बोल रही हूँ कवाई शालपुरा जिला बारा राजस्थान से, प्रेम लता तिवारी साहब। और दीदी आज मेरा 7 सालों बाद कॉल लगा, इसके लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है।
0: 7 सालों के बाद?
1: जी दीदी,
0: बहुत बहुत बधाई आपको प्रेमलता जी, तो बहुत खुशी हो रही होगी आपको।
1: हाँ दीदी, बहुत खुशी हो रही है।
0: रेडियो तो सुनती हैं, इसके अलावा आपको क्या पसंद है?
1: दीदी मेरे को तो रेडियो सुनना पसंद है, और मतलब कहीं अपन मतलब कोई मतलब अच्छा धार्मिक कार्यक्रम होते हैं ना
0: जी,
1: उसमें जाना पसंद है मुझे।
0: बहुत अच्छी बात है, तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनवाए हम?
1: दीदी फिल्म का नाम है गाइड, पिया तोसे नैना लागे रे।
0: तो चलिए सुनते हैं गाइड फिल्म का पिया तोसे नैना लागे रे, आप ही की पसंद का गीत।

0: हेलो सहेली में बातों का सिलसिला आज बस इतना ही। हेलो सहेली में रिकॉर्डिंग होती है हर मंगलवार सुबह 11 बजे से। कॉल करने के नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 02240002462, अंग्रेजी में 02240024662। इसके अलावा 02268670288, यानी 02228670288, 022 मुंबई का STD कोड है। हेलो सहेली कार्यक्रम में आज जिन सहेलियों के कॉल लगे हैं उनसे अनुरोध है कि आप अगले 2 महीने तक कॉल न करें, ताकि अन्य हमारी सहेलियों को एक अवसर प्रदान हो सके। आज की हेलो सहेली में सहयोग दिया संपादन में नम्रता टिकोड़े ने, तकनीकी रूप से सहयोगी रही हमारी इंजीनियर किरण बंग, विविध भारती की ओर से प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो दीजिए दीपा माहेश्वरी को इजाजत। नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गीतों भरी कहानी सपने में ठिठका इंतजार। इसकी लेखिका है ममता सिंह और वही आपको ये कहानी सुना रही है।
2: उसने आंगन में रखे गमलों को बाहर दरवाजे के सामने रखा, एक निगाह कमरे में डाली, मेन स्विच बंद किया, दरवाजा खींचा, वो बंद हो गया। चाबी पैंट की जेब में डालकर बरामदे तक आ गई थी वो। उसके गुलाबी गाल और नीली आंखों में ज्वार सा नजर आ रहा था। लग रहा था कि आंखें जैसे अब छलकी कि तब छलकी, आंखों में नदी बह रही थी। मैं कार से उतरकर उसकी ओर दौड़ी, उसे हुलसकर गले लगाने की कोशिश की, लेकिन उसके ठंडे रिस्पॉन्स से मैं वहीं रुक गई। बेटा, सारी किताबें एक साथ रख ली है ना, अकेले क्यों परेशान हुई? मैं तो आ रही थी ना, मैं रखवा देती। मैंने उसका सूटकेस अपने हाथ में लेते हुए कहा। उसने सूटकेस की ओर देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया, कुछ बोली नहीं। मेरा मन कर रहा था उसे अपनी तरफ खींचकर खूब कस के गले लगा लूं, उसका सारा दर्द अपने आंचल में छुपा लूं, लेकिन उसके पथराए व्यवहार से मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। डर लग रहा था कहीं इस बार भी मैं इसे खो न दूं। पता नहीं ये कैसी पीढ़ी है, इन्हें ज्यादा प्यार दिखाओ तो ये बिदक जाते हैं, पर इसके नजरिए से सोचती हूं तो इसका बर्ताव ठीक लगता है। इतनी छोटी सी उम्र में इसने कितनी बड़ी दुनिया देख ली, दुखों के न जाने कितने रंग इसकी नाजुक हथेली में लगे। ऊपर वाला भी कभी कभी किसी के साथ बड़ी नाइंसाफी करता है। अनुष्का की आंखें मुझसे मिली और फिर सड़क की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बहुत सारे प्रश्न तैर रहे थे। अनुष्का ने अपनी आंखें मेरी आंखों पर चिपका दी। हाँ, कहने के साथ साथ वो सारे प्रश्न मेरे कानों में गूंजने लगे जो मुझसे पूछे गए थे। इस मशीनी युग में रिश्ते से ज्यादा कागज की अहमियत है। मम्मी, मेरी ज्यादातर किताबें वहीं पड़ी हैं, मैं एक बार फिर आऊंगी ले जाने के लिए। अनुष्का की आवाज बहुत मध्यम थी। बिल्कुल बेटा, तुम जब चाहोगे आ जाना, मैं तुम्हें लेकर आऊंगी। कहते कहते मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया था, आवाज भर्रा गई थी। मैं डर गई थी कि कहीं इसी घर में अकेले रहने का ये फैसला न कर ले। इस ख्याल से ही मेरा दिल बैठ गया। 3 बरस मैंने अनुष्का के बिना कैसे बिताया ये मेरा दिल ही जानता है। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच।

अनुष्का पूरे रास्ते कार की खिड़की से बाहर देखती रही। कई बार उसने टिश्यू पेपर से आंखों को दबाया, शायद भराए पानी को सुखा रही थी। उसकी आंखें गोलाई में ऐसे

रही थी जैसे सड़क के किनारे दुकानों पर लिखी हर इबारत को वो पढ़ रही हो, जबकि वो तो सिर्फ अपने आप से गुफ्तगू कर रही थी। मैं उसकी ओर देखकर कुछ कहना चाहती थी पर जैसे जबड़ा लॉक हो जाता। डर लग रहा था कहीं उसे कोई बात बुरी न लग जाए और वो मेरे साथ चलने से इनकार कर दे। इन 3 बरस में बचपन के सुनहरे रंग से अलग किशोरावस्था का चंपई रंग इसके गालों पर निखर आया है। हालात ने इसे जल्दी से सयानी बना दिया है। पार्किंग एरिया में गाड़ी रुकी और वक्त के उस एक पल से मैं बाहर आ गई। देखो बेटा अनुष्का, ये देखो, ये तुम्हारा कमरा है। अनुष्का ने जब दहलीज पार की तो एक अजीब सी गंध ने उसे घेर लिया। घर सजा धजा, दीवारों पर वही तस्वीरें टंगी थीं, रस्किन बॉन्ड, रुडयार्ड की जंगल बुक और भी उसकी पसंद की तमाम किताबें कमरे में जस की तस सजी थीं। उसकी आंखों के सामने पुराने घर की टूटी अलमारी, माँ के कपड़ों से भरी संदूक और रसोई में रखी चूल्हे की आंच पर खाना पकाती माँ का चेहरा घूम गया। लाचार, बेबस, जीर्ण माँ से वो असंख्य सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन वो कोई सवाल वो पूछ नहीं सकी और माँ विदा हो गईं। वो इस दुनिया से चली गईं। कई बार अनुष्का ने पूछना चाहा, हर बार वो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर टाल देती। वैसे भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से जूझते इंसान के प्रति दया भाव ज्यादा होता है, प्रेम कम। अनुष्का कभी अपने इस कमरे को देख रही थी जो उससे कहीं छूट गया था, कभी वो उस घर को याद कर रही थी जिसे अभी अभी छोड़कर आई थी। दरवाजे पर खड़ी उसकी आंखों में समंदर सा ज्वार था, आंखों में जंगल था जो उसके मन की वीरानी को बयां कर रही थी। चौखट के उस पार वही घर था, दीवारें, खिड़कियां, आंगन, सब कुछ वैसा ही, लेकिन उसका मन मानो हजार टुकड़ों में बटा पड़ा था। उसने गहरी सांस ली। क्या मैं सचमुच लौट आई हूं? लेकिन किस रूप में? कहीं फिर यहां से कहीं और तो नहीं जाना पड़ेगा मुझे? कब मेरी किसको जरूरत पड़ जाए और मैं उसके काम आ जाऊं? आखिर उस घर में अपनी माँ की जरूरत बनकर ही तो मैं गई थी ना। माँ के लिए मैं सिर्फ जरूरत थी। उसकी आंखों में स्मृतियों का सागर उमड़ आया। ये वही घर था जिसे छोड़कर अनुष्का भटकती रही कानूनी लड़ाइयों और अनचाहे सवालों के बीच। अब फिर उसी चौखट पर आ खड़ी थी। उसका मन भारी हो रहा था।

वही लौटकर माँ ने मुझे अपनाने का दावा किया था, वही माँ जब चाहा छोड़ दिया, जब चाहा अपना लिया। किसी ने मेरे भीतर की ज्वाला को जानने की कोशिश ही नहीं की कि मेरे जज्बात का फैसला हर बार कानून करेगा। मैं कहाँ रहूंगी, कैसे रहूंगी, कितने दिन रहूंगी, इसका निर्णय कानून ने किया। आखिर मुझे क्यों, माँ के अधूरेपन का बोझ मुझे क्यों ढोना पड़ा? आखिर मैंने क्या गुनाह किया था, क्या बात थी आखिर? मैंने उसके कंधे को सहलाया, उसने अपनी पलकें उठाई, मेरी ओर देखा, उसकी आंखों में अपनापन पाकर मुझे राहत मिली, सुकून मिला। अनुष्का की पनीली आंखों में टूटी हुई स्मृतियों का गुबार था जिसे मैं लगातार देख रही थी। फिर अचानक मैंने उसे खूब कस के सीने से लगा लिया और उसके भीतर का झरना फूटकर देर तक बहता रहा और मेरे भीतर की ममता देर तक उसे भिगोती रही। मैं उसे बहुत देर तक सीने से लगाए बैठी रही। फिर धीरे धीरे उसने दरवाजे के भीतर कदम रखा, हर कोना मानो उसके चुप्पी सुन रहा था। एक मेज पर रखी पुरानी चादर, दीवार पर धूल जमी तस्वीरें और बंद खिड़की से आती ठंडी हवा, सब कुछ अपना सा लगा। वो सीधी खिड़की तक गई, उसने खिड़की खोली, धूप का एक सुनहरा टुकड़ा कमरे में भराया। उसने सूटकेस का जिप खोला, उसमें से कुछ वो तलाशने लगी। कुछ किताबें उसी घर में छूट गई हैं, सोचते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर धीरे धीरे अपने सामान सूटकेस से बाहर निकालने लगी वो। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मैं रसोई में चली गई। अनुष्का के लिए फ्रैंकी और ब्रेड टोस्ट लेकर लौटी तो देखा वो अपनी पुरानी ड्राइंग बुक पलट रही थी। वाटर कलर का डब्बा और ब्रश मेज पर रखा हुआ था। कितनी जुनूनी है ये लड़की, सचमुच अजीब है। सेकंड क्लास में पढ़ती थी तभी कितनी सुंदर पेंटिंग करने लगी थी। संस्कृति मंत्रालय के कला विभाग में एक पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। इतनी छोटी सी उम्र में इसने फर्स्ट प्राइज ले लिया था। जिंदगी का वो सबसे खुशगवार लम्हा था जब गोद में बैठी अनुष्का ने मुस्कुराते हुए अपने नरम हाथों का घेरा मेरे गले में डाल दिया था। उसे जब पहली बार घर लेकर आए थे तब घर पहुंचकर एक छोटी सी पार्टी दी थी हमने, और बस उसकी सारी थकान, कानूनी झंझट, समाज के ताने सब गायब हो गए थे। कितना सुनहरा समय था वो, आंखों के सामने जैसे अभी ठहर गया है।

उस रोज अनुष्का ने मुझे पहली बार माँ कहा था, तब जैसे घर में फूलों की बरसात हुई हो। वो पैदाइशी ही उम्र से दो कदम आगे थी। अनुष्का की ड्राइंग बुक मैंने अपने हाथ में ले ली और पलटने लगी। एक पन्ने पर मेरी निगाह अटक गई। आंखों के सामने कागज का वो पन्ना याद आ गया जिस पर मैंने हस्ताक्षर किया था। सर्दी की सियाह रात थी, मैं और नीरव किसी शादी में जा रहे थे। हम जंगल से गुजर रहे थे। यूं कि जंगली जानवरों के डर से हम जंगल को जल्द ही पार कर लेना चाह रहे थे। नीरव गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे थे। ठंडी और कुदरती हवा खाने की गरज से मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया हुआ था। एसी बंद था। गहन निर्जन सन्नाटे में झींगुरों की तेज आवाज के बीच अचानक झाड़ियों से आती रोने की पतली सी आवाज ने गाड़ी में ब्रेक लगा दिया और हम बड़े निर्भीक हो गए थे। उस समय रात के इस बीहर सन्नाटे में कराह भरी महीन महीन रोने की आवाज समझने में खासी परेशानी हो रही थी कि किसी इंसानी बच्चे की कराह है या कोई जंगली जानवर का बच्चा है या कोई छोटा मेमना जो बिल्कुल नवजात शिशु जैसा है। हम सड़क से थोड़ी दूर पेड़ों के झुरमुटों के बीच पहुंच गए थे। सामने कुछ सूखी डालियां पड़ी थीं, जिन्हें हटाया तो कंबल और सफेद कपड़ा जैसे कुछ दिखाई दिया। हम और नजदीक गए, उस आकृति के और करीब गए और करीब गए। अरे, ये तो किसी बच्चे की रोने की आवाज लग रही है। नीरव, ऐसा लग रहा कोई बच्चा है। ये कपड़े में लिपटा कोई बच्चा लग रहा है, नवजात शिशु। ओह, हमने फौरन गाड़ी से टॉर्च निकाला और ओस में नहाए पेड़ों पर हम रोशनी फेंकने लगे इधर उधर। तभी टॉर्च जब उस झाड़ी पर पड़ी जहां कंबल और सफेद कपड़ा जैसा कुछ दिखाई दिया, उस पेड़ के नीचे नजदीक गए तो देखा कपड़े में लिपटी नवजात बच्ची कांप रही थी। उसका रोना अनवरत जारी था। मेरा तो कलेजा जैसे मुंह को आ गया था। सवालों का समुद्र जैसे मेरे भीतर समाकर पूरे जंगल को पानी पानी कर देगा। हमने उस नवजात शिशु को उठाया और इधर उधर देखा। फिर मैं सोचने लगी, आखिर समाज ने ऐसा कौन सा वितान रचा है जिसके चलते ये नवजात शिशु अभिशप्त कर दी गई है। ऐसा कौन सा प्रश्न रहा होगा जिसके तहत इसकी माँ ने यहाँ उठाकर इस प्यारी बच्ची को फेंक दिया। उस माँ का कलेजा कांपा नहीं होगा। हम संभल संभल के और डरते हुए उस बच्ची के नज़दीक पहुँचे। हाथों में ग्लव्स पहने नीरो ने उसे झुककर उठाया और मेरी गोद में डाल दिया। उस बच्ची का स्पर्श पाते ही मैंने अपने पेट में 9 महीने का उभार सा महसूस किया। मेरी छाती में जैसे दूध उतर आया था। मैं ममता से भर गई थी। ऐसा लगा मैं माँ बन गई हूँ। सुनो, इस बच्ची को ना ऊपर वाले ने हमारी गोद भरने के लिए इन झाड़ियों में भेज दिया है। किस्मत की किताब का एक नया पन्ना लिखा जाने वाला था। कहते हुए मैंने अपना सिर नीरव के कंधे पर टिका दिया था। मेरी गोद की गर्माहट पाकर वो बच्ची थोड़ी देर के लिए जैसे चुप हो गई थी। फिर थोड़ी ही देर में उसके रोने का सुर और ज्यादा ऊंचा हो गया था। उसकी धड़कनों की रफ्तार बहुत तेज थी। समझ में नहीं आ रहा था उस नन्ही जान को पानी पिलाना ठीक होगा या नहीं। कितने दिन की बच्ची है ये भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा था।

उस फूल से नरम नाजुक बच्ची की जान बचाने के लिए हमने फौरन एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस के सायरन से जंगल का वीराना शोर से भर गया। कुछ ही देर में वो मासूम अस्पताल की रोशनी में थी। फाइल पर लिख गया, अननोन गर्ल, उम्र 1 दिन। उसकी नाम की जगह खालीपन था, पहचान की जगह एक सवाल। माँ की गोद नहीं, कागज के पन्नों में कैद जिंदगी की शुरुआत। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची सुबह अखबार की सुर्खी बन गई थी। चाय का प्याला हाथ में लिए मैं तो जैसे बर्फ बन गई। अब क्या होगा, उस बच्ची का कोई ना कोई उम्मीदवार जरूर आधमकेगा, फिर मेरी सूनी गोद का क्या होगा? नीरो, ऊपर वाले ने मेरी सूनी गोद भर दी थी, झाड़ी में पड़ी वो बच्ची ऊपर वाले ने मेरे लिए ही तो भेजी थी ना। नीरो, ये बच्ची तो अपने लिए जंगल में कोई छोड़ गया था। चलो चलो, जल्दी चलते हैं अस्पताल, वरना कोई भी उस बच्ची को अपना उम्मीदवार बताकर उठा ले जाएगा। चलो चलो, जल्दी चलते हैं। देखा है ना, यहां तो हर चीज का व्यापार होता है। वाक्य पूरा होते तक मेरी आवाज कांप गई थी, दिल कलप गया था, जैसे उस नन्ही जान से मेरा बरसों का नाता हो। क्या वो खिलौना है जो अस्पताल से कोई उठा ले जाएगा? अरे, वैसे हमने अडॉप्शन के लिए आवेदन तो पहले ही कर रखा है, ये कागजी कार्रवाई होगी और वो बच्चे हमें मिल जाएगी। नीरो ने मुझे दिलासा दी थी। अस्पताल की खिड़की से अंदर झांकते ही मेरे कदम जैसे रुक गए थे। नन्ही सी देह, नींद में सिकुड़ा हुआ चेहरा, वो जैसे कोई अधूरी कविता लग रही थी। मेरा आंचल एक बार फिर ममता से भर गया। ऐसा लग रहा था एक बार फिर मेरी छाती में दूध उतर आया हो। नीरो, यही हमारी बेटी है, यही है हमारी बेटी। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में अविश्वास के बादल थे। नीरो ने धीरे से मेरा हाथ थामा, पर उनके भीतर भी वही प्रश्न उमड़ा, क्या सचमुच बच्ची हमें मिलेगी? कहीं कानूनी झंझट में उलझकर इसकी उंगली हमसे छूट न जाए। सपना जैसे पास खड़ा था, लेकिन छूते ही ओझल हो जाने का डर मेरे साथ था। बच्ची को घर लाना इतना आसान नहीं था। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, अदालत, कागजात, पूछताछ, हर जगह शक की नजरें थीं। तो क्या आप बाज हैं? क्यों चाहते हैं बच्चा? क्या गारंटी है कि आप उसका भविष्य बिगाड़ेंगे नहीं? आप सही तरीके से इस बच्चे को माता पिता का प्रेम दे पाएंगे, ये हम कैसे यकीन करें? ये सवाल मुझे भीतर तक छलनी कर देता था। कई रातें मैंने रोते रोते गुजारी, पर हर सुबह वही दृढ़ वाक्य दोहराती, नीरो, उस बच्ची ने कांटों सी जिंदगी पाई है, हमें उसके लिए कांटों का ये रास्ता भी पार करना होगा। आप सीधे गोद नहीं ले सकते बच्ची को, आपको सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्सेज अथॉरिटी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आप इंतजार कीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, डॉक्टर ने सख्त स्वर में समझाया था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, पूरी जांच, ये सब होने के बाद ही आपको बच्ची मिल सकती है। मेरी आंखें फाइल से हटकर बच्ची पर टिक गई थी। कागजों से बड़ी हैं उसकी सांसें, सोचते हुए मेरा मन थोड़ा उदास हुआ था। घर लौटते ही मैंने वो फॉर्म भरा, जिसे पूरा करने के बाद वो दुधमुही मासूम मुझे मिल जाएगी, जिसकी अधमुधी आंखें अपनी माँ को देखने को आतुर होंगी। आधार कार्ड की कॉपी, आयकर रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, परीक्षा के प्रश्न पत्र की तरह न जाने कितने तरह के प्रश्न थे उसमें, जिनके उत्तर देकर मुझे और नीरो को भरने पड़े वो फॉर्म। प्रत्येक कॉलम भरते हुए मुझे लगता जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई हो और मैं दीवार पार कर रही हूँ। हर दस्तावेज पर कलम चलाते हुए आंखों के सामने उस प्यारी बच्ची का चेहरा आ जाता, उसकी निरीह आंखें,
नन्ही नरम हथेलियां, उसकी निर्बल सांसें, उसकी अकेली पहचान। कल तक जो मेरे लिए कोई नहीं थी, आज वो मेरे दिल की धड़कन बन गई। मेरी सांस, मेरी दुनिया है वो बच्ची, मेरे जिगर का टुकड़ा बन गई थी। क्या मां बनने के लिए इतना सारा हिसाब किताब करना जरूरी है? मां बनने के लिए इन सारे हिसाब का जवाब देना जरूरी है? मैं खुद से ही सवाल कर रही थी।

कानून का इंतजार करना होगा। 60 दिन तक हम देखेंगे कि असली माँ बाप सामने आते हैं या नहीं। वकील मिस्टर सेठी ने यही तो कहा था। बाद में ये 4 से 6 महीने मेरे और नीरव के लिए सदी से भी लंबे थे। हर दिन एक ही चिंता होती, कहीं ये बच्ची किसी और को सौंप न दी जाए। कानून को हमें अपनी ममता क्यों साबित करनी पड़ रही है? कभी अस्पताल के बाहर खड़े होकर हम सोचते, अपनी उस अबोध बच्ची तक पहुंचने के लिए हमें और कितनी दीवारें पार करनी होंगी। कानूनी कागजात के साथ साथ हमारी और भी तरह से जांच हुई। एक दिन एक सोशल वर्कर घर आई। उन्होंने एक एक करके सब देखा, रसोई, कमरा और वो झूला जिसे मैंने पहले ही सजा रखा था। एक जासूस की तरह उन्होंने मेरे घर का मुआयना किया। अगर बच्ची अपनी असली माँ बाप के बारे में पूछेगी तो आप क्या बताएंगे? उनके ये सवाल मुझे बहुत परेशान कर रहे थे, बेहद चुभने वाले थे ये सवाल। हम उन्हें सच बताएंगे, लेकिन ये भी कि माँ बाप वही होते हैं जो बच्चे को अपनाते हैं, जो बच्चे का पालन पोषण करते हैं। वो माँ बाप नहीं होते हैं जो पैदा करके झाड़ी में फेंक देते हैं, नीरव ने दृढ़ स्वर में कहा था। फिर पुलिस हमारे घर आई, पड़ोसियों से सवाल जवाब किए।

फिर शुरू हुआ हमारे कोर्ट के चक्कर काटना। क्या आप जानते हैं, दत्तक संतान के अधिकार असली संतान के समान ही होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं इस सब बातों के लिए? जज ने अपनी फ्रेंच कट दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए सख्ती से पूछा था। जज साहब, यही हमारी सबसे बड़ी चाहत है। मुझे बच्ची चाहिए, बच्ची को माँ का गोद चाहिए। मेरी सुनी गोद ऊपर वाले ने भर दी है, आप ये बच्ची मुझसे मत छीनिए, लरजते स्वर में मैंने कहा था। फिर अदालत के आदेश पर अखबार में नोटिस निकाला गया, यदि किसी को इस बच्ची पर दावा करना हो तो 30 दिनों के भीतर अदालत में उपस्थित हों। महीने भर डर के साए में जीती रही मैं, कहीं कोई उस बच्ची का उम्मीदवार न प्रकट हो जाए। पर ऊपर वाले ने सुन ली, कानून की कलम हमारे हिस्से में आई। और जब कानून की कलम हमारे हिस्से में आई तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा, मेरी आंखों से आंसू का झरना फूट पड़ा था। मैं खुश थी मेरी, लेकिन मेरी आंखों की नदी रुकी नहीं रही थी। हमारी सारी भाग दौड़, सारी थकान, सारी बेचैनी उस क्षण पिघल कर एक आनंद की बूंद बन गई थी, जब रुई के गुलाबी फाहे सी नरम नरम वो बच्ची मेरे गोद में आई थी। नीरो भी पिता बनकर निहाल हो गया था। घर का दरवाजा खुला, सर्दियों से सूना आंगन जैसे जीवन से भर गया हो। छोटे छोटे कपड़े टंगे, दूध की खुशबू, खिलौनों की खनक, सब में एक नई रोशनी थी। घर का हर कोना जैसे नन्ही सांसों की आहट से भर गया। झूले में ऊपर की ओर टंगी चक्री गोल गोल घूमने लगी और बच्ची की आंखें भी गोलाई में गोल गोल घूमने लगी। मैं उसे देख देख कर मुस्कुराती रही। नीरो, देखो ना कितनी प्यारी लग रही है ये। पहली बार हंसी है ये। मुझे अपने गाल पर नमकीन पानी का ठंडक महसूस हुआ था, मेरे होठों पर जैसे किसी ने गुलाब की पंखड़ी धर दी हो। नीरो चुपचाप खड़ा देखता रहा, उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर सुकून था, खुशी थी। उसने बच्ची की हथेली पर अपनी उंगली रखी और उस नन्ही पकड़ में उसे अपना भविष्य, अपनी विरासत, अपना पूरा वजूद महसूस हुआ। उस मासूम की एक मुस्कान, एक किलकारी जैसे उनके जीवन का सबसे मधुर संगीत बन गई थी। अगली सुबह की पहली रोशनी खिड़की से छन कर कमरे में आई। नन्ही बच्ची ने आंखें खोली और अचानक मासूम सी हंसी बिखेर दी। उसके रोने और उसकी किलकारी से पूरा घर जैसे जगमगा उठा। उस बच्ची की आवाज ही मेरी सुबह की घंटी है, मेरी पूजा की आरती है। मैंने जैसे ही अपनी उंगली उसकी ओर बढ़ाई, नन्ही बच्ची ने कसकर पकड़ ली। उस पकड़ में बड़ी ताकत थी। शाम को आंगन में झूला डाला गया। रात को बच्ची सोती तो मैं धीरे धीरे लोरी गाती। नीरो पास बैठकर मुझे और उस बच्ची को देखता रहता।

कितना अजीब है, कल तक ये चेहरा अजनबी था, ये बच्ची मेरे लिए अजनबी थी, आज इसकी सांसें हमारी रूह में बस गई। इसकी किलकारियों ने घर की हर दीवार पर नई धड़कन लिख दी थी। रात को जब बच्ची रोती, मैं नींद से उठकर दूध की बोतल तैयार करती। थकी होती पर उसे लगता जैसे उसकी थकान ही बच्ची की मुस्कान में घुलकर गायब हो जाती है। नीरो दफ्तर से लौटकर सीधे बच्ची की उंगली पकड़ लेता, दिन भर का तनाव उसी पल मिट जाता। रीना, हमने उसे अपनाया नहीं है, इसने हमें अपनाया है, हमारी जिंदगी को इसने अपनाया है, इसने खुशी दी है हमें, नीरो ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा था। मैंने बच्ची को सीने से लगाते हुए आंखें बंद कर ली। मेरे भीतर का अटूट मातृत्व समुद्र में तब्दील हो गया था। तब महसूस हुआ कि मां बनना कितना कठिन होता है, लेकिन मातृत्व का सुख पाना भी किसी नियामत से कम नहीं। वो बरसात की भोर थी, आंगन की मिट्टी में ताजी महक फैली हुई थी, पेड़ों की पत्तियों से टपकते मोती जैसे कण हवा में चमक रहे थे। मैंने खिड़की खोली तो भीतर तक ठंडी बयार आ गई। झूले पर बैठी नन्ही काया ताली बजा बजा कर बारिश की बूंदों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे बादलों से बातें कर रही हो। उसी क्षण

0: उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने एक कमजोर थकी हुई स्त्री खड़ी थी। उसके चेहरे पर पीड़ा थी। मैं इसकी जन्म देने वाली माँ हूँ, मेरी प्रश्नवाचक निगाहों को भांपते हुए उसने धीमे स्वर में कहा, जैसे धरती हमारे पैरों तले खिसक गई हो। इतनी मुश्किलों के बाद तो हमारी मुराद पूरी हुई, फिर यह अचानक ये मुसीबत कहाँ से आ गई? मेरे होठ बुदबुदाए, लेकिन स्त्री ने अनुष्का को देखकर अपने कांपते हाथ जोड़े। मैं इसे अपने पास नहीं रख सकी, हालात ने मुझे बेबस कर दिया, अब मेरे पास समय नहीं बचा है। मैं चाहती हूँ कुछ समय के लिए मैं इसे अपने घर ले जाऊं। वैसे तो तुम्हारी गोद ही इसकी सच्ची दुनिया है। उसने अपने आंचल से अपनी आंखें पोंछी, फिर उसने अनुष्का की मासूम हथेली छू ली और बच्ची के शरीर में एक निशान भी बताए। बच्ची ने बिना सोचे उसकी उंगली पकड़ ली और अगले ही पल खिलखिला उठी। उसकी मुस्कुराहट की खनक ने मेरे भीतर से वीरान सन्नाटा भर दिया। अनुष्का के बगैर जीने की कल्पना मात्र से मैं सिहर गई। मैंने उसे अपनी बाहों में कसकर भर लिया। कभी कभी अजनबी चेहरा ही रूह का सबसे बड़ा टुकड़ा बन जाता है। जिंदगी ने हमें ऐसे दोराहे पर ला खड़ा किया जहां से रास्ता नहीं नजर आ रहा था। वो औरत जिसने मां बनने का दावा किया है, वो कैंसर की मरीज है, वो भी सेकेंड स्टेज में। उसने वो सारे कागजात सामने रखे हैं जिससे उसे अनुष्का को सौंप दिया जाना चाहिए, लेकिन दिमाग और दिल की लड़ाई में दिल को ही हथियार डालना पड़ता है। फिर से अदालत की सीलन भरी दीवारें, बोझिल हवा और कोनों में सिसकते सन्नाटे, जज का फैसला, जन्म देने वाली माँ को कैंसर है, उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए बच्ची का अधिकार उसी के पास रहेगा। हालांकि इस सब प्रक्रिया में कई बरस बीत गए, अनुष्का की जन्मदात्री माँ भी और ज्यादा कृशकाय हो चुकी थी। इस दौरान उससे कई मर्तबा मुलाकात हुई। उसकी तकलीफ देह हालात के बारे में जानकर अनुष्का को उन्हें उनकी बची खुची जिंदगी के लिए सौंप देना ही इंसानियत थी। उसकी आंखें बुझती लौ जैसी थीं। वो मेरे जीवन की सबसे बोझिल रात थी। रात हौले हौले जा रही थी, लेकिन सुबह की कोई आमद नहीं नजर आ रही थी। ओस में भीगी पेड़ों की शाखें उदास हो गई थीं। अनुष्का का घर में आने का समय पता ही न चला, लेकिन उसे कुछ समय के लिए ही सही, उसके जाने का लम्हा सदी बन गया था। अनुष्का बहुत बोलती थी, बहुत प्यारा बोलती थी, लेकिन उस रात जब उसे इस घर से उस घर, यानी उसकी माँ के पास ले जाया जा रहा था, तब वो जैसे बेजान गुड़िया में तब्दील हो गई थी। उसे तब तक पता चल चुका था कि जहाँ जा रही है वही उसकी असली माँ है, मेरी तो वो दत्तक पुत्री है। मेरे भीतर तूफान कुलाचे मार रहा था, नीर और निर्विकार भाव से इस नियति को स्वीकार कर रहा था। मेरे कानों में सिर्फ अनुष्का की किलकारियों की गूंज रह गई। वो लम्हे जब पहली बार उसने माँ पुकारा था, वो रातें जब बुखार में हमने जाकर उसके माथे पर ठंडी पट्टियां रखी थी, वो मासूम मुस्कान जो उनके जीवन का एकमात्र संगीत थी, सब कुछ ऐसे पल भर में स्मृतियों की तिजोरी में रख उठे थे। अनुष्का ने मासूम निगाहों से मेरी ओर देखा। हम सब ने अपनी सुविधानुसार अनुष्का का घर तय कर दिया, लेकिन अनुष्का के नजरिए से किसी ने नहीं सोचा। वो अपनी माँ के घर जब पहुंची तो उसके रोने का सिलसिला रुका ही नहीं।
1: फिर जब वो रुका तो उसकी सुनी आंखें मेरा आंचल तलाशती रही। मैं उससे जब मिलने जाती मेरा आंचल पकड़ लेती, मुझे आने ही नहीं देती थी। ऐसे कस कर लिपट जाती जैसे मैं ही उसके जन्म देने वाली माँ हूं। वक्त ने उसे जल्दी समझदार और बड़ा बना दिया था। उसकी सूनी आंखों में सपनों की जगह इंतजार ठिठक गया था। घर में रखे खिलौनों को हाथ न लगाती, खामोशी उसकी सदा बन गई थी। उसे जैसे हम दो परिवारों ने एक छोटी बच्ची से वस्तु बना दिया था। उसकी पीड़ा को महसूस कर मेरा दिल कचोटने लगता था।

किताबों के ऊंचे रैक से एक मोटी किताब गिरी और मैं जैसे यादों के ऊंचे पहाड़ से धम से नीचे आ गिरी। पर इस बार पहाड़ से नीचे आने पर अनुष्का जैसी प्यारी फूल मेरे सामने है। उसने दरवाजा पकड़ रखा था जैसे ये आखिरी सहारा हो। उसकी आंखें कह रही थीं, माँ तुमने मुझे झाड़ी से उठाया था, पर क्या सचमुच माँ की जगह भर सकोगी? अनुष्का, अनुष्का, उस दिन तुम झाड़ी में मिली थी अकेली और डरी हुई। मैंने तब तुमसे एक वादा किया था, तुम्हें मैं कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी और मैं उस वादे को हमेशा निभाती रहूंगी। कहते हुए मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अनुष्का के होंठ कांपे। याद आया कि उस दिन उसने पहली बार किसी अनजानी बाहों में अपने दर्द को ढक लिया था। उस औरत की छाती पर सिर रखकर रोई थी और फिर अब वही छाती फिर से उसके लिए स्तंभ थी। धीरे धीरे अनुष्का की उंगलियां चौखट से ढीली हो गईं। उस पल दोनों के बीच एक पुल बन गया, बीते हुए दर्द और आने वाली उम्मीद के बीच का पुल। घर के भीतर हल्की सी रोशनी बिखरी हुई थी। शाम की धूप खिड़की से छनकर कमरे में उतर रही थी, मानो वर्षों से बंद पड़े सन्नाटे को सहलाने आई हो। दीवारों पर समय की धूल थी, पर उस धूल में भी ममता की डोर थी। अनुष्का धीरे धीरे कमरे में चली आई। उसकी उंगलियां दीवार से छू गईं, जहां पहले माँ ने तस्वीर टांगी थी। तस्वीर अब वहां नहीं थी, सिर्फ कील बाकी थी। वो कील मानो उसकी अपनी जिंदगी का प्रतीक थी, अधूरा खाली इंतजार करता हुआ कील। उसकी आंखें भर आईं, पर ये आंसू मातृत्व की कमी के नहीं थे, बल्कि अपनी यात्रा की थकान के थे। उसने अपनी माँ की तस्वीर पर माला पहनाते हुए धीमे स्वर में कहा, माँ तुमने मुझे जन्म दिया और छोड़ दिया, फिर लौटकर मुझे पाया और खो दिया। लेकिन मैं अब तुम्हारी अधूरी छाया में नहीं रहना चाहती, मैं अपना जीवन खुद लिखूंगी। अनुष्का के शब्द हवा में गूंजे, मानो घर की दीवारें भी सुन रही हों। अनुष्का की पलकों पर आंसू की बूंद ठहर गई। उसने खिड़की खोली, सूरज की किरणें भीतर उमड़ आईं। कमरा अचानक उजाले से भर गया, जैसे अंधेरे की परतें टूटकर बिखर गई हों। उसने एक लंबी सांस ली और दरवाजे की तरफ पलटकर देखा। वही चौखट जो उसकी अनचाही शुरुआत की गवाह थी, अब उसी चौखट पर खड़े होकर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं अब किसी की छोड़ी हुई बच्ची नहीं, मैं अब एक माँ की बेटी हूँ। यही घर अब मेरी पहचान बनेगा। अब मैं इस घर से कहीं और नहीं जाऊंगी। अनुष्का की आंखों में उदासी की धूसर बादल की बजाय पहली बार इंद्रधनुष चमका था। एक नई शुरुआत का उस पल मानो वर्षों की वेदना धूप की तरह पिघल गई। बाहर आकाश में ढलता सूरज सुनहरी छटा बिखेर रहा था।

सपने में ठिठका इंतजार, ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखिका और स्वर ममता सिंह, संपादन काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आप कोलैप्स भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से, गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली, आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका BP चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उसको आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स, अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इट्स बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शो में सोचो असली OG कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो, क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती के कार्यक्रम एफएम बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए श्रोताओं, आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। गीता संदेश प्रसारण समय रहेगा 6:20 से। आज अध्याय 2 के श्लोक 55 से 57 की व्याख्या होगी। व्याख्याकार होंगे डॉक्टर

सुरेश कुमार। युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी लेकर हाजिर होंगे आज विशाल। समय रहेगा 5:30। कार्यक्रम गाने नए पुराने आप सुनेंगे अब से कुछ ही देर में साएं 5:05 से। किसान भाइयों का पसंदीदा कार्यक्रम अन्नदाता लेकर हाजिर होंगे साएं 6:30 से। ग्राम संसार का समय रहेगा साएं 7:00। संगीत के आकर्षण इस प्रकार से रहेंगे। सैनिकों के लिए समर्पित कार्यक्रम जय जवान सुनेंगे 7:30 से। गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गुलदस्ता समय होगा 7:45। कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत आप सुनेंगे साएं 8:00 से। श्रोताओं की फरमाइश पर आधारित कार्यक्रम चांदनी रातें आप सुनेंगे रात्रि 10:00 से। हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से साएं 6:00। 8:45 रात्रि 11:00 अंग्रेजी में समाचार 6:05 पर रात्रि 9:00 और रात्रि 11:05 पर आप हमारे केंद्र से प्रसारित आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे। प्रादेशिक समाचार 6:10 पर आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से रिले होंगे। अभी आप सुन रहे थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। साय के 5:05 होने को हैं। आइए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम गाने नए पुराने। कार्यक्रम गाने नए पुराने सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके दोस्त संत कौशिक का प्यार भरा नमस्कार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत।

श्रोताओं, क्या खूब एहसास है इस गीत के साथ। मोहब्बत जब दिल से निकले तो हर शब्द कविता बन जाता है। बढ़ते हैं एक खूबसूरत पुराने गीत के साथ, जिसे सुनकर आज भी दिल सुकून महसूस करता है। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म कामचोर से।

दोस्तों, रिश्तों की मिठास और यादों की कसक, यही तो संगीत की असली ताकत है। आइए पुराने दौर से नए दौर में चलते हैं और सुनते हैं राब्ता फिल्म से ये गीत।

आप सुन रहे हैं गाने नए पुराने और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त संत कौशिक। संगीत का ये सफर यूं ही चलता रहेगा क्योंकि गीत सिर्फ सुर नहीं होते, ये हमारी भावनाओं की आवाज होते हैं। तो श्रोताओं आइए सुनते हैं एक और बेहद रोमांटिक गीत।

तो दोस्तों, इसी के साथ गाने नए पुराने में आज का हमारा ये सफर, संगीत का खूबसूरत सफर यहीं संपन्न होता है। उम्मीद है नए और पुराने गीतों का ये संगम आपके दिल को जरूर पसंद आया होगा। मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के साथ। और अब अनुमति दीजिए अपने दोस्त संत कौशिक को कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गाने नए पुराने, ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं युवाओं का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी विशाल के साथ।

युवाणी कार्यक्रम सुन रहे सभी युवा साथियों को आपके दोस्त विशाल का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम में आज हम सुनवाएंगे आपके फरमाइशी गीत, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है युवा फरमाइश। इसके साथ ही आप सभी को जानकारी दी जाएगी विश्व रेडक्रॉस दिवस पर। इसके साथ ही जानकारी का एक और विषय रहेगा सड़क सुरक्षा सप्ताह। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमें आई है जमशेदपुर झारखंड से। फरमाइश करता है रेशमा कुमारी, राकेश, प्रकाश, निशा। आइए आप सभी श्रोताओं को सुनवा चलते हैं कि फरमाइश का ये गीत।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: एक आवाज जो बचपन में सुनी थी,
3: एक आवाज जो हर समय आपके साथ थी,
2: एक आवाज जो आज भी दिलों को जोड़ती है।
3: हम सबकी अपनी आकाशवाणी 90 साल की हो रही है।
2: 90 साल की सेवा, संवाद और संस्कार की यात्रा।
3: आइए इस गौरवमय अवसर पर हम सब मिलकर कहें,
2: आकाशवाणी
3: विश्वास की आवाज।
4: आइए दोस्तों, आप सभी को जानकारी दे चलते हैं विश्व रेड क्रॉस दिवस पर। दोस्तों, ये दिन मानवता, सेवा और करुणा का प्रतीक माना जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को जरूरतमंदों की सहायता करने और मानव सेवा के प्रति जागरूक करना है। ये दिवस रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक हेनरी ड्यूना की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने युद्ध में घायल सैनिकों की दयनीय स्थिति को देखकर मानव सेवा का संकल्प लिया था। इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो 1863 वर्ष में हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध, प्राकृतिक आपदा, महामारी और अन्य संकटों के समय लोगों की सहायता करना है। ये संस्था बिना किसी जाति, धर्म या देश के भेदभाव के मानव सेवा करती है। दोस्तों, रेड क्रॉस रक्तदान शिविर आयोजित करती है, घायलों की मदद करती है तथा जरूरतमंदों को भोजन, दवाइयां और प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराती है। दोस्तों, ये दिवस हमें ये संदेश देता है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आज के समय में जब दुनिया अनेक प्राकृतिक और सामाजिक समस्याओं का सामना कर रही है, तब रेड क्रॉस जैसी संस्थाएं लोगों के लिए आशा की किरण बनती हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी रेड क्रॉस कार्यकर्ताओं ने निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता की। तो दोस्तों, ये थी जानकारी विश्व रेड क्रॉस दिवस पर। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमें आई है पंजाब से। फरमाइश करता है पप्पू राजा, संगीता महक, सुनीता रानी, आरजू, हसमुख लाल बुलबुल। आइए आप सभी को श्रोताओं को सुनाए चलते हैं कि फरमाइश पर ये गीत।

0: शिक्षा स्कीम के टेली लॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: आइए दोस्तों आप सभी को जानकारी दिए चलते हैं सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में। दोस्तों सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रत्येक वर्ष लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। बढ़ती संख्या दुर्घटनाएं आज एक गंभीर समस्या बन चुकी है। प्रतिदिन अनेक लोग तेज गति, लापरवाही और यातायात नियमों की अनदेखी के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। इसलिए सड़क सुरक्षा सप्ताह का महत्व और भी बढ़ जाता है। दोस्तों इस सप्ताह के दौरान विद्यालयों, कॉलेजों और विभिन्न संस्थाओं द्वारा रैलियां, पोस्टर प्रतियोगिताएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। लोगों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, मोबाइल फोन का प्रयोग ना करने तथा शराब पीकर वाहन ना चलाने के लिए प्रेरित किया जाता है। यातायात संकेतों का पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। सड़क पर चलते समय थोड़ी सी सावधानी अनेक जीवन बचा सकती है। इसलिए वाहन हमेशा निर्धारित गति में चलाना चाहिए तथा पैदल यात्रियों को भी जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। बच्चों और युवाओं को शुरू से ही यातायात नियमों की जानकारी दी जानी चाहिए ताकि वे जिम्मेदार नागरिक बन सकें। तो दोस्तों ये थी जानकारी सड़क सुरक्षा सप्ताह के बारे में। आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमें आई है बठिंडा पंजाब से। फरमाइश करता है परम सिंह, मनजीत, करणवीर, दपिंदर, कुलदीप। आइए आप सभी श्रोताओं को सुनाए चलते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत।

0: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
1: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
0: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
2: लत तो लगेगी ही क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है।
3: ऐसा देश है मेरा, हाँ, ऐसा देश है मेरा।
2: ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार रात्रि 8:15 पर FM 101.4 MHz अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र तो सुनना ना भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार को।
3: ऐसा देश है मेरा, हाँ, ऐसा देश है मेरा।
4: आगे से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की। अगली फरमाइश हमें आई है कोल्हापुर महाराष्ट्र से। फरमाइश करता है विजय चौहान, तेजस्विनी, बेबी शौर्या, श्रेयस, अंकिता, आप सभी को सुनाए चलते हैं इनकी फरमाइश पर ये गीत।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमें आई है बिहार रेडियो लिसनर्स की तरफ से। फरमाइश करते हैं सुधा शर्मा अनामिका शर्मा। आइए आप सभी श्रोताओं को सुनवाई चलते हैं इनकी फरमाइश पर। यो फरमाइश कार्यक्रम का ये अंतिम गीत है।

अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम युवाणी। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। साय के 6 बजने को हैं। समय है हिंदी व अंग्रेजी में समाचारों का, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। प्रादेशिक समाचार 6:10 पर आकाशवाणी के रोहतक केंद्र से रिले होंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को नेता चुना गया। श्री शाह ने बताया कि बैठक में श्री अधिकारी के निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी तमिलगा वित्रिक कड़गम टीवीके को नई सरकार के गठन के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

0: और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दे दिया है। 5 विधायकों के साथ कांग्रेस पहले ही समर्थन दे चुकी है। 2 विधायकों वाली वीसी के पार्टी बाद में अपना निर्णय घोषित करेगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डाटा दिया गया है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। राज्य मंत्रिमंडल मंत्री जीतू भाई वाघानी ने बताया कि पर्व के अंतर्गत सोमनाथ में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को प्रदर्शित करने वाले कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया है। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 941 अंक बढ़कर 77,959 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 298 अंक की बढ़त के साथ 24,331 पर दर्ज हुआ। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल भारतीय महिला रिकव टीम ने फाइनल में प्रवेश किया। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय निशित कुमार। Senior BJP leader Suvendra Adhikari will be the new Chief Minister of West Bengal. BJP Legislature Party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become the first BJP Chief Minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
2: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
3: The election process was completed just a few days ago. Around 8 proposals and supporting nominations were received and all of them were in favor of the same name. Sufficient time was also given for any other nomination but no second name was proposed. Therefore, as the central observer, I declare Suvendu Adhikari as the elected leader of the West Bengal Legislative Party.
2: विधान मंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: Tomorrow morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. Prime Minister Narendra Modi, along with the host of union ministers and several chief ministers from the BJP ruled states, will attend the ceremony. As the ceremony is being held on the occasion of Rabindra Jayanti, cultural performances will also form part of the program. In the formation of a new government in Tamil Nadu, TVK, the single largest party, has been seeking support from the CPI, CPM and the VCK. Congress has already lent support with 5 MLAs. After much discussion today, the CPI and CPM, having 2 MLAs each, has offered unconditional support to TVK to form the government. VCK is likely to announce its decision after the meeting this evening or tomorrow. In another political development, the state BJP president Nayanar Nagendran has clearly said that the party gracefully accepted the election results. Interacting with media, he said the BJP does not wish to align with the TVK in any attempt to form the new government in the state of Tamil Nadu. Somnath Amritpur will be celebrated to mark the 75th anniversary of the reconstruction of Somnath Temple. The Prime Minister Narendra Modi will participate in the Somnath Amritpur on the 11th of this month at Prabhas Patan, Somnath. Speaking to the media, Gujarat Minister Jitu Bhai Vaghani said the Prime Minister will lead a 1 kilometer long mega roadshow from the Triveni helipad to the statue of Veer Amirji Gohil. Prime Minister Modi will also perform the Kumbh Abhishek Dhwaj Puja and Mahapuja at the Somnath Temple. The Defence Research and Development Organisation, DRDO, and the Indian Air Force have successfully conducted the maiden flight trial of the Tactical Advanced Range Augmentation Tara weapon off the coast of Odisha yesterday. Raksha Mantri Rajnath Singh has congratulated DRDO, IAF, DCPP and the industry for the maiden flight trial. He described it as a significant development in advancing India's indigenous defence capabilities. Tara is India's first indigenous glide weapon system that converts unguided warheads into precision-guided weapons. It has been designed and developed by the research center Imarat Hyderabad along with other DRDO laboratories. India and Singapore have stressed the importance of bilateral cooperation in countering terrorism as strategic partners. The fifth meeting of the Joint Working Group on Combating Terrorism and Transnational Crime between India and Singapore was held in New Delhi yesterday. The Joint Working Group agreed that confronting terrorism requires concerted action in a sustained and comprehensive manner. The government has said that domestic LPG supply across the country is smooth and no dry out has been reported at any distributorship. Addressing an inter-ministerial briefing in New Delhi, Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma, said that government's effort has been to ensure that domestic consumers do not face any shortage of gas and that prices remain stable amid the evolving situation in West Asia. Ministry of Ports, Shipping and Waterways has said government continues to engage with every stakeholder to ensure the welfare of all Indian seafarers and uninterrupted maritime operations. Spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, said that the government continues its outreach to countries in the Gulf. Informed as part of that, Foreign Secretary Vikram Misri paid an official visit to the UAE yesterday. In Indonesia, 3 people were killed after Mount Dukono volcano erupted this morning. Rescuers have found all the survivors from a group of 20 hikers who went missing after the eruption. According to police, 15 people have been taken to hospitals to treat further injuries. India's Simranjeet Kaur has advanced to the semi-final of the women's recurve individual event at the Archery World Cup Stage 2 in Shanghai today. And with that, we end this news bulletin.
4: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकेति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खाते में करोड़ों रुपए की राशि हस्तांतरित की। श्री नायब सिंह ने पंजाब सरकार पर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने में विफल रहने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार ने कहा, देश भर में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति सुचारू रूप से जारी। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। और हरियाणा में आज विश्व रेड क्रॉस दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खातों में करोड़ों रुपए की राशि हस्तांतरित की, जिसमें लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त शामिल है। मुख्यमंत्री ने 9,76,000 बहनों के खातों में 205 करोड़ रुपए की राशि जारी की।
5: I will see the protection to the

0: beneficiezen, onbeneficiezen, zie dan dat komt de kartene voor. Zijn ik aan al de secretjes, Amerische kaakkerie, al dat wil ik zien, jodenen, zaten kisten, jari kakker, ik moet je kussen horen hier. Dat ik zal kisten, jari kiezakje. Zat kisten, en we hebben ook een karte, 1,615 euro, jammer hier, je mijn jouw boek, artik, niet zo zet ik aan niet, adem die verhaal, prikker, ik ben aan die verdieping.
1: मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनों के तहत 35,65,000 लाभार्थियों को 1,146,73,00,000 रुपए जारी किए गए। इसी तरह मुख्यमंत्री ने किसान मुआवजा राशि भी जारी की।
2: जो फसल खराब हुआ था खरीफ का, उसमें 1,50,583 किसानों को आज 370,52,00,000 रुपए की मुआवजा राशि आज जारी की।
1: इसके अलावा दयालु योजना के तहत 5,677 परिवारों को 215,29,00,000 रुपए की सहायता राशि और 11,23,000 बहनों के खाते में गैस सिलेंडर सब्सिडी की 38,54,00,000 रुपए की राशि जारी की गई। साथ ही 64,923 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के रूप में 100,45,00,000 रुपए की राशि डिजिटल माध्यम से प्रदान की गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज अलग अलग क्षेत्रों में हरियाणा व पंजाब सरकार से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों की तुलना करते हुए पंजाब सरकार को असफल बताया। मुख्यमंत्री आज चंडीगढ़ में सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में लाभ राशि के सीधे हस्तांतरण उपरांत पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हाल ही में पंजाब में हुए बम विस्फोट के संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है, जबकि वहां के पुलिस महानिदेशक के अनुसार इसके तार आईएसआई से जुड़े हो सकते हैं। श्री नायब सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार नशे व खनन को नियंत्रित करने का झूठा दिखावा कर रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं। उनके पंजाब दौरों पर विपक्ष द्वारा उठाई जा रही आपत्ति के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के लोग उन्हें प्यार से अपने कार्यक्रमों में बुलाते हैं, तो इससे विपक्ष को क्या परेशानी है। एक प्रश्न के उत्तर में श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा काफी पहले की गई घोषणा के बावजूद आज तक वहां महिलाओं को आर्थिक लाभ नहीं दिया गया। हरियाणा के वर्तमान बजट में महिलाओं के लिए 6,500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करने के बाद पंजाब सरकार ने लोक दिखावा करते हुए आनंद फानंद में विधानसभा में महिलाओं के लिए घोषणा कर दी, जबकि अभी तक एक महिला को भी लाभ नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है। नई दिल्ली में आज पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
3: भारत सरकार ने ये कोशिश की अभी तक कि कोई प्राइस इंक्रीज ना हो और इसके लिए एक्साइज ड्यूटी भी कम की। इसके अलावा और भी बहुत सारे कदम लिए, जैसे कि रिफाइनरीज के अंदर एलपीजी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, पीएनजी कनेक्शंस को प्रमोट करना, हमारे फर्टिलाइजर प्लांट्स को भी धीरे धीरे बढ़ाया गया और अब लगभग 98% तक उनकी सप्लाई इंश्योर की गई है।
1: तो श्री शर्मा ने कहा कि सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 5 किलोग्राम के सिलेंडरों की आपूर्ति भी बढ़ा दी है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर ने आज पलवल में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में केंद्र व राज्य सरकार द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। केंद्रीय राज्य मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पलवल जिले में विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विकास कार्यों की रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए गए हैं। एक सवाल के जवाब में श्री गुर्जर ने कहा कि विकास कार्यों में कोताही बरतने की शिकायत बैठक में सामने आई है, ऐसे मामलों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बल्लभगढ़ से पलवल तक मेट्रो परियोजना को लेकर उन्होंने बताया,
4: अभी बात हुई है उसका कृपया चल रहा है, आरआरटीए का भी सर्वे चल रहा है, मेट्रो का भी चल रहा है, दिल्ली में फिर से बैठक करके उसे आगे किया जाए।
1: बंगाल में ममता बनर्जी द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोप पर उन्होंने कहा,
4: विपक्ष जब भी हारता है तो ऐसा है कि चोरी हो गई, वोट चोरी हो गई, गड़बड़ हो गई, जबरदस्ती जीत गए, बंगाल में चोरी हो गई, तो फिर चोरी केरल में क्यों नहीं हुई, तमिलनाडु में क्यों नहीं हुई? जब लोकसभा के चुनाव हुए थे 240 सीटें एनडीए की आई थी, तब उन्होंने कहा वोट चोरी हो गई, ये हार को पचा नहीं पाते।
1: हरियाणा में नगर निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने वार्ड 12 से निर्दलीय चुनाव लड़ रही पूर्व पार्षद ओमवती पुनिया के घर पहुंचकर उनकी भाजपा में घर वापसी कराई। पूर्व पार्षद ओमवती पुनिया ने भाजपा प्रत्याशी राकेश चकोता को समर्थन देने की घोषणा की और कहा कि वह भाजपा प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने के लिए मेहनत करेंगी। अम्बाला नगर निगम चुनाव को लेकर आज विभिन्न राजनीतिक दलों तथा आजाद उम्मीदवारों द्वारा शहर के अलग अलग क्षेत्रों में रोड शो निकाले गए। इन रोड शो में उम्मीदवारों के समर्थन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। उम्मीदवार खुले वाहनों में सवार होकर लोगों के बीच पहुंचे और लोगों से समर्थन मांगा। प्रदेश के पूर्व मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता कृष्ण मूर्ति हुड्डा ने आज रोहतक में एक पत्रकार वार्ता की। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक पत्रकार वार्ता में दिए उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें हुड्डा ने सांपला नगर पालिका चुनाव में सांपल वासियों से भाजपा के खिलाफ मतदान करने की अपील की थी। उन्होंने कहा कि सांपला नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार भी खड़ा नहीं कर पाई, जबकि यह क्षेत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र में आता है। पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री के गृह जिले में करीब खत्म होने के कगार पर है। आज विश्व रेडक्रॉस दिवस पर हरियाणा में रक्तदान शिविर सहित कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जींद जिले में रेडक्रॉस भवन में आयोजित मुख्य समारोह में मानवता की सेवा का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना संदेश दिया। मुख्य अतिथि अतिरिक्त उपायुक्त प्रदीप कौशिक ने बताया कि रेडक्रॉस सोसाइटी की ओर से रक्तदान शिविर के आयोजन के अलावा लगभग 5.25 लाख रुपए की लागत के सहायक उपकरण भी वितरित किए गए।
5: रेडक्रॉस दिवस के उपलक्ष्य में आज हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप बुलाया है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा रक्तदान के लिए मोटिवेट हो, जो व्यांग है उनको कुछ अप्लायंसेस, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। लगभग 5.25 लाख रुपए के अप्लायंसेस जो है, जिसमें कानों की सुनने की मशीन है, व्हील चेयर है और बैग है, फिक्स सेफ्टी बेल्ट है।
1: फरीदाबाद में भी विश्व रेडक्रॉस दिवस जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा सेवा, जागरूकता और मानवता को समर्पित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के सचिव विजेंद्र सरोता ने बताया,
6: आज विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर जिला रेडक्रॉस सोसाइटी द्वारा एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और एक यूथ रेडक्रॉस के साथ सेमिनार किया गया है। उसके बाद हमारे नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती सभी रोगियों को फल और मिठाई वितरित की गई, विशेष पोषाहार वितरित किया गया।
1: आज विश्व थैलेसीमिया दिवस व विश्व रेडक्रॉस दिवस के अवसर पर हिसार रेडक्रॉस भवन में रक्तदान शिविर और एक रैली का भी आयोजन किया गया। रैली में लोगों को नशे के दुष्परिणाम बारे जागरूक किया गया। मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभार्थियों के खाते में करोड़ों रुपए की राशि हस्तांतरित की। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
7: FM बैंड 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है गीता संदेश, प्रस्तुति डॉक्टर सुरेश कुमार की।
8: श्रोताओं नमस्कार, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 55 से आगे की व्याख्या। गीता के श्लोक मानव मात्र के हृदय को कोमल व निर्मल करने और जीवन पथ को सुदृढ़ बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। द्वितीय अध्याय के श्लोकों की व्याख्या श्रृंखला में श्लोक संख्या 55। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन मोहग्रस्त और द्वंद्व से भरा हुआ है। उसकी बुद्धि स्थायित्व को

0: को प्राप्त कर निश्चयात्मक स्वरूप को धारण नहीं कर रही है। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनसे स्थिर बुद्धि पुरुष के विषय में पूछते हुए कहते हैं कि कौन व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, जब पुरुष अपने मन में उत्पन्न अर्थात मन में विद्यमान संपूर्ण कामनाओं को सम्यक रूप से त्याग देता है और आत्मा के द्वारा आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वह पुरुष स्थित प्रज्ञ अर्थात स्थिर बुद्धि कहलाता है। इस लोक या परलोक के किसी भी पदार्थ के संयोग या वियोग की जो किसी भी कारण से किसी भी प्रकार की मंद या तीव्र कामनाएं मनुष्य के अंतकरण में निवास करती हैं, उन सब के लिए सर्वान कामान पद का प्रयोग किया गया है। कामनाओं के वासना, स्प्रीहा, इच्छा और तृष्णा आदि अनेक भेद हैं। इन सब से सदा के लिए सब प्रकार रहित होना ही कामनाओं का त्याग है। आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहने का अर्थ है अंतकण में विद्यमान संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाने के पश्चात समस्त दृश्य जगत से सर्वथा नित्य शुद्ध बुद्ध परमात्मा के यथार्थ स्वरूप का दर्शन करके जो उसी परम तत्व में नित्य तृप्त हो जाता है, यह अवस्था आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहना है। वर्तमान समय और समाज के संदर्भ में अर्जुन को दिया गया यह उपदेश सार्थक तथा प्रासंगिक है, क्योंकि यदि मनुष्य जगत में शांतिपूर्ण सभ्य और सुसंस्कृत समाज की स्थापना चाहता है तो उसे राग द्वेष आदि सभी कामनाओं का परिमार्जन कर अपने मन को स्थिर रखना होगा। स्थिर मन में ही स्थिर बुद्धि का होना निश्चित है। श्लोक संख्या 56। दुखेश्व अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्प्रीह वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहते हैं कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग उत्पन्न नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जिस पुरुष की स्प्रीहा सर्वथा समाप्त हो गई है तथा जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह मुनि स्थिर बुद्धि कहलाता है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः से अभिप्राय है कि भयंकर से भयंकर तथा असहनीय दुखों के प्राप्त होने पर भी स्थिर बुद्धि मनुष्य के अंतकरण में उद्वेग अर्थात संताप का सर्वथा अभाव होना, यह संपूर्ण जगत आदि भौतिक आदि दैविक और आध्यात्मिक आदि त्रिविध दुखों से पीड़ित है। इन्हीं दुखों की अग्नि में सदा संतप्त रहता है जो पुरुष इस परिवर्तनशील संसार में रोग शोक वियोग अपमान तिरस्कार आदि कारणों से अंतःकरण में विचलित नहीं होता है, वही स्थिर बुद्धि मुनि है। सुखेषु विगत स्प्रेह का अर्थ है कि स्थिर व्यक्ति के अंतकरण में स्प्रीहा का सदा अभाव रहता है। स्प्रीहा कामना का ही एक प्रकार है। अनुकूल वस्तु के अभाव से उस वस्तु की कामना करना ही स्प्रीहा है। कामना रहित होना ही स्थिर बुद्धि मुनि कहलाता है। वीतराग भय क्रोध का भाव है कि स्थिर बुद्धि योगी अथवा मुनि के अंतकरण और वाणी में आसक्ति अर्थात आकर्षण डर और क्रोध आदि विकारों का अभाव, किंतु लोक कल्याण के लिए वाणी में आसक्ति डर क्रोध दिखलाया जा सकता है, लेकिन वास्तव में इन विकारों का अभाव रहता है। साधारण मनुष्य के लिए भी मन में उत्पन्न होने वाले आसक्ति, डर, क्रोध आदि विकार वेदना का ही कारण बनते हैं, शांति का नहीं। अतः मानव मात्र को भी बुद्धि की स्थिरता प्राप्त कर तटस्थ भाव की ओर बढ़ना चाहिए। श्लोक संख्या 57। ये सर्वत्रानभि स्नेहस्तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति नैद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताते हैं कि जो पुरुष सब स्थानों पर स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु को प्राप्त करके न प्रसन्न होता है और न ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है। श्लोक में सर्वत्र अभी स्नेह का भाव है कि स्थिर बुद्धि पुरुष ममता पूर्वक होने वाली सांसारिक आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देता है। अभिप्राय है कि जिस प्रकार सांसारिक व्यक्ति अपने पुत्र, स्त्री, भाई बहन, माता पिता और परिवारजनों में स्नेह अर्थात प्रेम अथवा मोह के कारण बंधे हुए रात दिन निरंतर मोहात्मक बुद्धि अर्थात सापेक्ष बुद्धि में ही व्यवहार करते हैं, योगी पुरुष कदापि कहीं पर भी आसक्ति मन से अर्थात मोहग्रस्त बुद्धि से व्यवहार नहीं करते हैं, क्योंकि उनके मन में शुभ अवस्था को या अनुकूलता को प्राप्त होकर भी हर्ष उत्पन्न नहीं होता और न ही अपने प्रतिकूल अर्थात अशुभ परिस्थिति को प्राप्त कर द्वेष होता है। स्थिर बुद्धि तभी स्थापित रहती है जब पुरुष तटस्थ भाव से संसार में व्रतता अर्थात व्यवहार करता है। श्रोताओं, गीता संदेश कार्यक्रम में आज आपने दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 55 से 57 तक व्याख्या सुनी।
1: अभी आप सुन रहे थे गीता संदेश, प्रस्तुति डॉक्टर सुरेश कुमार की। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। साय के 6:30 होने को हैं। अब किसान भाइयों के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अन्नदाता।

कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सब बन भैया ने रिसाले भाई की राम राम। कार्यक्रम अन्नदाता, इसमें भाई हम चर्चा करते रहे हैं खेती बाड़ी ने लेकर, पशुधन ने लेकर और कई तरह की जो सरकार की योजनाएं हैं भाई उन्होंने लेकर, जो है ना किसान के बारे, हित के बारे, उनका जो है ना फायदा किस डाल हो, ये सारे डाल की बातें हम कार्यक्रम में करते रहे हैं। पर भाई न्यू सोचा है कि भाई जो खेती बाड़ी है उसकी तरफ जो है ना किसानों का रुझान तो बहुत बढ़ रहा, पर भाई ये देखा है कि पहले समय की जो खेती थी और आज की जो खेती हो रही है भाई उसमें काफ़ी अंतर पड़ रहा है। पहला तो खेत में न्यू करे करते भाई जो देसी खाद थी, ज़्यादातर जो है ना किसान भाई देसी खाद का प्रयोग ज़्यादा करे करते, पर भाई आजकल न्यू देखने में आ रहा है कि जो रासायनिक खाद है उसका जो है ना खूब जो है ना अपने खेत में बोआ है और खूब भाई प्रयोग भी कर रहे हैं।

0: हैं, तो जैविक खेती की जो प्रथाएं हैं प्राकृतिक आदान और टिकाऊ तरीके पर जोर दे हैं, जिसके जो पोषक तत्व हैं उसमें भाई भरपूर फसलें हैं, जिसमें अक्सर देखा है जिसमें विटामिन है, खनिज है, और भाई जो है ना एंटीऑक्सीडेंट का जो स्तर है वो बढ़िया रहा है, और इसके साथ साथ भाई जो जैविक उत्पाद हैं उनमें अनुवांशिक रूप से जो है ना संशोधित जीवों में जो अनुपस्थिति है प्रकृति और संशोधित भाई जो खाद्य उत्पाद हैं उनके लिए उपभोक्ता की जो प्राथमिकता है उसके अनुरूप रहे हैं। तो भाई पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देकर जैविक खेती न केवल भाई किसान और उपभोक्ता का कल्याण करा है, बल्कि जो है ना वो अपने देश में जितनी भी परिस्थिति के संतुलन है उनमें भी योगदान देकर बढ़िया टिकाऊ कृषि जो है ना भविष्य का समर्थन करा है। तो ये तो भाई हमने बात कर ली, क्योंकि भाई जो प्राकृतिक खेती है या जैविक खेती की तरफ रुझान बढ़ा रहे हैं, तो इससे जो है ना जैविक खेती प्रणाली की एक बहुत बढ़िया ऐतिहासिक नींव यह है, क्योंकि जो प्राचीन काल से चली आ रही पद्धति है और उसकी उत्पत्ति उन पारंपरिक जो कृषि प्रथाएं हैं उन तक पता लगाई जा सका है, क्योंकि भाई हमारे जो बुजुर्ग थे वो पहला ये देखे कर रहे थे कि भी जो खेती करे कर रहे थे वो प्राकृतिक तौर पर ही करे कर रहे थे, जैविक तौर पर ही करे कर रहे थे, तो उन्हें देखो उनका स्वास्थ्य आज भी बढ़िया है। और भाई आजकल देखा है जो भाई स्वास्थ्य है ग्रहण करे, तो लोग नहीं सोचे हैं कि भाई माना बढ़िया मिल जाए खाना तो भाई पैसे चाहे कितने लग जो, पर भाई आजकल जो है ना खेती में ज्यादातर देखा है एक तो रासायनिक खाद जो है ना भाई ज्यादा गिर रहे हैं, दूसरा जो भाई दवाइयां हैं इनका प्रयोग भी खेती में ज्यादा गिर रहे हैं, क्योंकि भाई हम तो जहरे खाने लग रहे हैं, इससे जो है ना हमारा जो स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। आजकल देखा है ज्यादातर आदमी घर में जो है ना दवाइयां लेते रहे, कोई ना कोई परिवार में बीमार भी रहता रहा है, क्योंकि भाई खान पान जो है ना ये सब बदल गया है। तो भाई हम तो ये कहें कि आपने जो है ना जैविक खेती की तरफ रुझान बढ़ाना है और भाई पैदावार को भी बढ़ाना है, और भाई बढ़ावेंगे तो हमारा भविष्य भी अच्छा रहेगा, इसकी क्यों, क्योंकि भाई जैविक खेती की संभावनाएं भी अपार हैं। तो भाई देश में जैविक खेती को बढ़ावा देकर तो हम तो न्यू कह रहे हैं कि जैविक खेती को बढ़ावा देंगे तो भाई हर देश का नागरिक स्वस्थ रहेगा और भाई सारे के सारे भाई अपने काम धंधे में फिर लागे रहे करेंगे। तो भाई देखो डॉक्टरों की तरफ तो कम रुझान रहेगा, क्योंकि भाई जैविक खेती अच्छा खाना पीना रहेगा बढ़िया स्वास्थ्य रहेगा तो मेहनत मजदूरी करेंगे और भाई अपने देश में जो है ना तरक्की भी करते रहेंगे। तो ये तो हमने जिक्र कर लिया है कि भाई जो जैविक खेती है इसमें भविष्य की संभावनाएं तो देखो है ही है। यह संदेश यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: जलवायु और लिंग, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन का असर सब पर एक जैसा नहीं होता। गांव की महिलाएं जो खेती में काम करती हैं इससे ज्यादा प्रभावित होती हैं। अक्सर उनकी बात सुनी ही नहीं जाती और मुश्किलें बढ़ जाती हैं। आपदा के वक्त जैसे बाढ़ या सूखे में कैंप्स या आश्रय में उनके साथ यौन हिंसा का खतरा भी होता है, लेकिन इन्हीं महिलाओं के पास एक ऐसा ज्ञान भी होता है जो जलवायु संकट से लड़ने में मदद कर सकता है। बस जरूरत है उन्हें योजनाओं और फैसलों में शामिल करने की। क्या आप जानते हैं दुनिया भर में हर 3 में से लगभग एक महिला के अपने जीवन काल में शारीरिक या यौन हिंसा का अनुभव किया है।
2: लत तो लगेगी ही, क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है।
3: ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा,
2: ऐसा देश है मेरा, हर दूसरे और चौथे शनिवार रात्रि 8:15 पर FM 101.4 MHz अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। तो सुनना ना भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार को।
3: ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा।
0: और भाई इब चर्चा करेंगे फसल विविधीकरण योजना पे। भाई विविधीकरण सारे जाना है कि भी फसलों को जो है ना देखो ये तो है नहीं भाई हम जो है ना किसान भाई भी एक ही काम पर लग रहे हैं कि भाई गेहूं उसके बाद धान फिर गेहूं फिर धान। भाई दूसरी फसलों की तरफ अगर हम रुझान बढ़ावेंगे तो भाई हमारी खेती जो है ना एक तो बढ़िया होगी, दूसरा जो जमीन है भाई, इसकी ताकत जो बढ़ जाएगी।

और भाई ये तो सुनिए अपने रागनी गायक कलाकार थे करमपाल शर्मा। और भाई ये बात कर लें आज की नसीहत में, भाई आंवले के बागां की जो देखभाल है वो किस डाल आपने करनी है। भाई आंवला जो है ना, देखो सारे जाना है कि भी आंवला कितना गुणकारी फल है। वास्तव में देखा तो भाई एक प्रकृति की ऐसी देन है जिसमें जो है ना शरीर में जो कई डाल के रोग हो जाए उन्हें दूर करने की जो है ना क्षमता इसके में है। क्योंकि भाई जो आंवला है उसमें खास विटामिन का जिक्र करें तो भाई उससे मिला है विटामिन सी। और भाई आंवले का देखा है बाजार में जावा है तो भाई आंवले का अचार भी मिल जा है, आंवले का मुरब्बा भी मिला है और भाई इसकी कैंडी भी बना है, वो भी आप जो है ना अच्छी डाल जाना है। क्योंकि भाई सारे बाजार में जावा है और खान पीने की चीज़ें तो खासकर जो है ना देखने मिलती रहे हैं तो भाई इसमें जो है ना कई बार देखा है कुछ कीड़े या रोग भाई इसकी जो फसल है आंवले की उसने नुकसान पहुँचा दे हैं। और भाई समय पर अगर हम इनका उपचार न करें, इनके पेड़ की देखभाल न करें तो भाई देखो नुकसान होगा। और नुकसान होने पर भाई क्या होगा कि जो हमारा आर्थिक नुकसान होगा जिसके लिए हमने भैया आंवले के पेड़ ला रखे हैं खेत में या भाई बाग लगा रखे हैं तो भाई हमने उनकी अच्छी डाल देखभाल करनी बड़ी जरूरी है। और इसमें जो बीमारी खास देखने मिला है वो है भाई शाखा पर जो है ना गांठ बनाने वाली जो सुंडी है ना वो खास कर जो है ना इसके पेड़ में जो है ना देखना मिला है। क्योंकि भी जो इसकी टहनियां हैं उनका जो अगला भाग है गांठ के रूप में फूल जा है और इस कीट की जो काले रंग की जो सुंडियां हैं खासकर ये पेड़े के ऊपर नजर आवेंगी। और जो जिन टहनियों के ऊपर भाई यो लगे मिलेगा वो टहनियां देखो देखने में भूडी लगेंगी और उसके बाद जो है ना उन टहनियों की जो बढ़वार है वो खत्म हो जाएगी और इस कीट की जो सुंडियां हैं आंवले के पेड़ को थोड़ा बहुत तो नुकसान पहुंचावेंगी। पर न्यू देखा है कि भाई ईब जो नुकसान कर दिया तो इसका नियंत्रण या इससे बचाव क्यों करना पड़ेगा। तो भाई एक तो अपना न्यू करना है कि जो उन टहनियों को जिनके ऊपर जो गांठ बन गई है उसको नियमित रूप से तोड़ कर उसने एक तो खत्म कराएं, दूसरा भाई उसके अंदर वाली जो सुंडियां हैं उनका भी खत्म करना बड़ा जरूरी है। और इसके नियंत्रण के लिए आपने मोनोक्रोटोफास 1.25 मिलीलीटर या भाई दूसरी दवा है फॉस्फेमिडान 0.6 मिलीलीटर को प्रति लीटर पानी में घोल कर जुलाई अगस्त के महीने में छिड़काव करके जो है ना काफ़ी हद तक जो है ना इस कीट से छुटकारा मिल सका है। एक खास और सुंडी आवा है इसमें जो छाल खाने वाली सुंडी का है। क्योंकि भाई जो आंवले के अलावा यो कीट प्राय देखे हैं जितने भी फलदार या छायादार या दूसरे पेड़ हैं उनने खास करके नुकसान पहुँचा दे है और यो कीट देखने में बिल्कुल नहीं आंदा पर जहाँ पर ये टहनियाँ अलग हुआ है वहाँ पर इसका मल या लकड़ी का जो बुरादा है जाड़े के रूप में आपने देखना मिलेगा। दिन के समय भाई यो कीट जो है ना सुंडी तने के अंदर सुरंग बनावेगी और रात ना जो है ना छेद तय बाहर निकल के जाड़े के नीचे रह कर जाड़े को खावेगी और भाई खुराक नली को खत्म कर दे है खा करके। जिस तरह पौधे के जो दूसरे भाग हैं उनमें जो पोषक तत्व हैं वो बिल्कुल नहीं पहुंचेंगे और जिस तरह जो है ना टहनियाँ टूट कर नीचे गिर जाएंगी और जो बाग हैं देखना जो मिल रहे हैं भाई उन बागों में इसकी देखभाल नहीं हुई तो भाई जो पेड़ हैं देखो वो सारे खत्म हो जाएंगे और ये उस पेड़ ना खा के ख़त्म कर देगी जिस तरह जो है ना नुकसान हो जाएगा। और इसको भी नियंत्रण करना है तो किस तरह करेंगे भाई, सितंबर अक्टूबर के महीने में 10 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफास 36 WSC या भाई 10 मिलीलीटर मिथाइल पैराथियन मेटर सीड बोलते हैं जिसने 50 cc की ताकत वाली लेकर 10 लीटर पानी में मिला है, जड़ा जड़ा आपने देखे हैं कि सुराख हो रहे हैं उसके चारों ओर की छाल के ऊपर आपने वो लगानी है। फरवरी मार्च के महीने में भाई देखे हैं तो भाई रुई के फोम में दवाई भर के उसने डुबो के अच्छी तरह और किसी तार ते उनकी सहायता से कीड़े के अंदर जो सुराख बना रखे उसने उसके अंदर डाल दें और सुराख को भाई फिर एकदम तय आपने गिल्ली मिट्टी ते ढक देना है। और घोल बनाने के लिए 40 ग्राम कार्बेरिल 50 घुलनशील वाली ताकत वाली दवाई लेकर 10 मिलीलीटर फेनीट्रोथियन लेकर भाई 50 cc की ताकत वाली और 10 लीटर पानी में मिलाकर भाई इसका

घोल कर अच्छी डाल, फिर वो आपने इसका छिड़काव भी कर सका है। और भाई एक बीमारी और खास देखने आवा है इसके पेड़े में, वो है डिम्मक। आंवले के अलावा भाई यो कीट भी सारी तरह के फलदार छायादार या दूसरे जो पेड़ हैं उन्हें भी काफ़ी नुकसान पहुँचाते हैं। अगर भाई इस तरह की जो जो

आपना अगर गोबर की खाद गिरनी है तो भाई वो गली सड़ी गिरनी है, बिल्कुल तैयार हुई खाद आपने खेत में डालनी है। और जहां तक भाई संभव हो सके तो भाई रानी डिम्बक को आपने खत्म करना है। तो यह तो हमने जिक्र करया भाई जो आंवले का जो पेड़ आपने लगाए हैं उनके ऊपर जो नियंत्रण किस तरह करनी है, जो बीमारी आ रही है, जो पेड़े हैं उनकी देखभाल करना बड़ा जरूरी हो जाए। और एक जानकारी भाइयों ने और दे दें, क्योंकि भाई मौसम आ रहा था इब गेहूं का, और इसमें जो है ना सुरक्षित अनाज भंडारण किस तरह करना है इसके बारे में जानकारी दे दें। क्योंकि भाई एक तो खास बात ये ध्यान रखनी है आपने, एक तो अनाज में ज़्यादा नमी की मात्रा न हो, अनाज को खुले में और भाई नमी युक्त स्थान पर बिल्कुल नहीं रखना। अनाज का उचित भंडारण न हो तो कई क्रम भाई पुरानी बोरियां व स्थान को भाई संक्रमित रहित आपने न करना। भंडारण के बाद उचित देखभाल नहीं करनी, क्योंकि भाई ये अनाज संक्रमण के कोई खास कारण हो सके हैं। और एक बात और याद रखें, अगर भाई आपने बड़ी यात्रियां भंडारण करना है गेहूं भंडारण करने से पहले किन किन बातों का आपने ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो भाई भंडारण से पहले अनाज को अच्छी तरह आपने सुखाना है। अनाज को कभी भी भाई कई तरह खुले में न रख कर किसी कमरे में या गोदाम में या टंकी में भंडारित करना है, जिससे भाई बारिश या नमी से बचाया जा सके। अनाज ढोने वाले जो वाहन हैं, कई बार देखे हैं कि भाई उनमें कोई बीमारी लग रही है या कीड़ा है या कोई सुरसरी वगैरह चलती रहे कई बार, तो भाई वो जिस तरह के अनाज घर में लेकर आएंगे तो उसमें लगने की संभावना बनी रहेगी। तो भाई भंडारण के दौरान आपने कुछ एक बातें याद रखनी है, जिस तरह के एक तो बोरियों में जो भंडारित सोचा है करने की गोदाम में, तो गोदाम में जो बोरी धरोगे थोड़ी सी दूरी बना के वो रखनी है दीवार तय। बीज है तो अगर भाई अनाज को कीड़े से बचाने के लिए आपने 250 ग्राम मेलाथियन 5% धूड़ा प्रति क्विंटल अनाज की दर तय मिलाकर भंडारण करना है। और दाणों को भंडारण करना तो भाई छोटे स्तर पर जो कि घर में भंडारित हुए हैं, प्रायः जिस तरह देखे हैं कई बार डोरा कीट इनके संक्रमण से बचाने के लिए अनाज के ऊपर और नीचे भाई कोठियां भंडारित स्थान पर 7 सेंटीमीटर या मोटी रेत की तह बनानी है। तो इस तरह भाई आप जो है ना कोई जो ये बातें हैं आपने ध्यान रखना है। तो खास बात यह है जब आप गेहूं का भंडारण करें तो ना गेहूं ना जो है ना मुंह में चाप कर देख लें, अगर कड़क देनी टूट गई तो सोच लो कि भाई वह गेहूं सूखी है और उसका भंडारण अच्छी डाल आप अपने घर में कर सके हैं। तो भाई जो सुरसरी आ जाए है डोरा लाग जाए है तो इस तरह के जो कीट खास जो गेहूं में देखने मिला है उनसे आप छुटकारा दिला सके हैं। और भाई ईब जो है ना एक जानकारी भाइयों ने और दे देने लगे हाथ, क्योंकि भाई जानकारी में क्या है कि जो किसान कॉल सेंटर है इसके नंबर की और वो नंबर है भाई 1551। तो भाई खेती बाड़ी से संबंधित जो भी समस्या है उसकी जानकारी लेनी है तो भाई इस नंबर पर आप कॉल कर सके हैं। और भाई इससे गले कार्यक्रम अंदाता यहीं संपन्न हो रहा है। साले भाई ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।

कार्यक्रम ग्राम संसार सुनिए सब बण भैया ने शले भाई की एक बार फिर राम राम। और कार्यक्रम ग्राम संसार और इसमें भाई भैया का मनोरंजन भी करावेंगे और साथ साथ में भाई जो जानकारी ताजा रहे हैं उनना भी थोड़ी बहुत ही जानकारी भैया तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं समय समय पे। पर भाई आज भी जो है ना भैया ने जरूर जानकारी देंगे और भाई उन जानकारियां पहला

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: मंगल भवन मंगल
2: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओ टी

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: ये आकाशवाणी है,
2: हर पल आपके साथ,
1: समाचार हो या सदाबहार गीत,
2: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
1: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
2: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
1: आकाशवाणी।

0: खार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: और भाई ई बैग भाइयों के लिए जानकारी कर लें साथ जा, विश्व रेड क्रॉस दिवस पर भाई आज तारीख है 8 मई, और यो जो दिन है भाई विश्व रेड क्रॉस दिवस के रूप में हर साल मनाया जा है। भाई रेड क्रॉस क्या है कि जो मानवता की सेवा के लिए सदा समर्पित है। यो दिन रेड क्रॉस के संस्थापक जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन यानी कि भाई 8 मई 1828 को याद करने और भाई आपदा युद्ध या भाई कोई बीमारियां आ जाए उन तय भाई निस्वार्थ सेवा करने वाले स्वयं सेवकों को सम्मानित करने के लिए मनाया जा है। इसका उद्देश्य क्या है कि भाई कई बार देखा है कि जो युद्ध हो जाए, घायल सैनिक हो जाए या भाई नागरिक हैं या कोई आपदा आ जाए तो निस्वार्थ भाव से भाई उनकी सहायता करना और मानवता, निष्पक्षता और भाई तटस्थता जिस तरह जो मूल्य हैं इनको भी भाई बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है रेड क्रॉस का। इसकी स्थापना 1863 में भाई जीन हेनरी ड्यूनेंट द्वारा करी गई थी जो 1859 में सोल फेरिनो के युद्ध में घायल सैनिकों की दुर्दशा देखकर भावुक हो गए थे। और भाई इस साल का भी इसका जो थीम है वह कि मानवता को जीवित रखना इसका भाई थीम है और जो स्वयं सेवकों के समर्पण को श्रद्धांजलि दे है। इसका जो महत्व है यह संस्था बिना किसी भेदभाव के मानवीय पीड़ा को कम करने के लिए दुनिया भर में काम करा है। और आप देखे हैं कि भाई जो रेड क्रॉस है बहुत सारी सहायता कर दी रहा है मानवता के लिए। हर जिले में तकरीबन भाई रेड क्रॉस के कार्यालय भी हैं और भाई उन जो कार्यालय खुल रहे हैं वो देखो मानवता की सेवा के लिए ही खुल रहे हैं। कृत्रिम अंग प्रदान कर दे रहे हैं, किसी को भाई तिपहिया साइकिल दे दे रहे हैं, किसी को बैसाखी दे दे रहे हैं। भाई जैसी जो सुविधा है, जैसी उनसे बन पड़ा है तो वो भाई पूरी जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि भाई मानवता की सेवा अच्छी ढाल हो सके। तो यह तो हमने चर्चा कर ली कि भाई विश्व रेड क्रॉस दिवस पर। यह संदेश यूनेस्को व आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
2: जलवायु और जल, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं ज्यादा बारिश और बाढ़ होती है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ता है। इन दोनों से पीने के पानी, सफाई और खेती के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। कोविड-19 जैसे महामारी के दौरान साफ पानी बहुत जरूरी होता है। पानी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित कम आमदनी वाले समुदाय होते हैं। क्या आप जानते हैं 2020 में दुनिया के 26% लोगों के पास पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी की सुविधा नहीं थी।
3: लत तो लगेगी ही क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है।
4: ऐसा देश है मेरा, हाँ, ऐसा देश है मेरा।
3: ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार रात्रि 8:15 पर FM 101.4 MHz अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। तो सुनना ना भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार को।
4: ऐसा देश है मेरा, हाँ, ऐसा देश है मेरा।
1: और भैया ने एक जानकारी और दे दें कि भाई विश्व थैलीसीमिया दिवस पर। भाई विश्व थैलीसीमिया दिवस हर साल भाई 8 मई को मनाया जाए।

यानी कि भाई आज जो है ना 8 मई है, जिसका उद्देश्य क्या है कि इस आनुवंशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है, इसकी रोकथाम के तरीकों को भी बढ़ावा देना, रोगियों के लिए भाई कई क्रम बेहतर उपचार की सुविधा सुनिश्चित करना, और भाई 2026 की जो थीम छुपा हुआ नहीं, अनिदानितों को खोजना, अनदेखे लोगों का समर्थन करना, ये भाई इसकी थीम है 2026 की। विश्व थैलेसीमिया दिवस का भाई उद्देश्य भी यही है कि जो इस रोग से पीड़ित हैं लोग, उनको सम्मान देना है, उनकी समस्याओं को उजागर करना है, और भाई बीमारी के प्रति समाज में समझ भी पैदा करना है। इसकी जो स्थापना है भाई, यह दिवस थैलेसीमिया इंटरनेशनल फेडरेशन द्वारा भाई स्थापित किया गया है। यह दिन रक्तदान की जरूरत, प्रारंभिक जांच और वैवाहिक परामर्श के माध्यम से इस बीमारी को रोकने के लिए भाई जो है ना इस महत्व पर जोर दे है कि भाई जो थैलेसीमिया के है, यो एक अनुवांशिक रक्त विकार है जिसमें शरीर भाई पर्याप्त हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता, जिससे अनीमिया हो जाए और रोगी को भाई नियमित रूप से रक्त जाने की जरूरत पड़ा है। भाई इस तरह की जो बीमारी आ जाए कई बार, देखो घातक तो है ही, पर भाई इस बीमारी का तो ये है कि भाई अपने आप को सुरक्षित रखें भाई, जैसी जो समस्या आ जाए, क्योंकि ये तो भाई एक स्थायी रक्त विकार है, यो एक अनुवंशिक विकार है जिसके कारण भाई एक रोगी के जो लाल रक्त कण हैं उनके अंदर जो है ना पर्याप्त मात्रा में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। तो इसके लिए भाई इसका जो कारण अनीमिया हो जाए, रोगी को जीवित रहने के लिए भाई हर 2 से 3 सप्ताह बाद रक्त चढ़ाने की जरूरत पड़ा है। थैलेसीमिया माता पिता के जो जीन्स हैं उनके माध्यम से बच्चों को मिलने वाला एक आनुवंशिक विकार है। प्रत्येक लाल रक्त कण में हीमोग्लोबिन के जो अणुओं की संख्या 240 से 300 मिलियन के बीच हो सका है। रोग की गंभीरता जीन में शामिल उत्परिवर्तन और उनकी जो भाई अंतःक्रिया है इस बात पर निर्भर करा है, क्योंकि भी जो थैलेसीमिया जो माइनर है उसमें क्या है कि भाई जो हीमोग्लोबिन जीन गर्भधारण के दौरान विरासत में मिलता है, और इसमें एक जीन माँ से और एक पिता से मिलता है। एक जीन में थैलेसीमिया के लक्षण वाले लोगों को वाहक के रूप में जाना जाए, या भाई उन्हें थैलेसीमिया माइनर ग्रस्त भी कहा जाए। थैलेसीमिया माइनर कोई भी कारण नहीं, इससे व्यक्ति को बस अनीमिया हो जाए है। और जिस तरह के थैलेसीमिया इंटरमीडिया का जिक्र करें तो ये ऐसे मरीज हैं इसमें जिनमें हल्के से लेकर गंभीर लक्षण तक मिला है, और एक आ जाए भाई थैलेसीमिया मेजर। यह थैलेसीमिया का सबसे गंभीर रूप है, ऐसा तब हुआ है जब एक बच्चे को माता पिता प्रत्येक से 2 उत्परिवर्तित जीन मिलते हैं, तो थैलेसीमिया मेजर तक ग्रस्त बच्चे के जीवन के पहले वर्ष के दौरान गंभीर अनीमिया के लक्षण विकसित हो जाए। प्रायः थैलेसीमिया के मरीज जिस तरह के, उनमें एक तो भाई अनीमिया दिखना ना मिलेगा, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, देर से या मंद विकास होगा, शरीर में लोह की अधिकता हो जाएगी, अपर्याप्त भूख लगेगी उसको, बड़ा हुआ प्लीहा या यकृत भाई पीड़ित बच्चा, इस तरह के जो है ना रोग के लक्षण उनमें नजर आवा है। तो भाई इस तरह की जो बीमारी है उनसे देखो बचा भी जा सका है, क्योंकि भाई जिस तरह माँ बाप है इसमें कह रहा बच्चे का कोई दोष नहीं है भाई, क्योंकि ये तो भाई एक अनुवंशिक समस्या है, आ जा है कोई बात नहीं, घबराने की हम तक कहें जरूरत नहीं है भाई, जैसे डॉक्टर से सलाह लेते रहें, जैसे डॉक्टर सलाह देंगे खून बदलना है 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में उसका इलाज चलता रहना चाहिए, तो इससे जीवन आपका चलता रहेगा। तो भाई ये तो भाइयों को जानकारी दी कि विश्व थैलेसीमिया दिवस पर, और भाई ईव करा देंगे भाइयों का मनोरंजन, तो आओ सुनते हैं भाई ये रागनी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार, ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। लीजिए, प्रस्तुत है हमारे सैनिक भाइयों के लिए कार्यक्रम जय जवान। कार्यक्रम जय जवान सुनने वाले सभी सैनिक भाइयों को आकाशवाणी कुरुक्षेत्र परिवार की ओर से नमस्कार। आज आपके पसंदीदा गीतों के साथ हाजिर है आपका दोस्त संत कौशिक। सैनिक भाइयों, आप लगातार देश की रक्षा में लगे हुए हैं दिन रात, और इसी वजह से देश के नागरिक सुकून भरी जिंदगी जी रहे हैं। आप हैं तो हम सबका वजूद है, आपको हमारा सलाम। आइए आपके अपने कार्यक्रम को आरंभ करते हैं इस मधुर गीत के साथ।

0: ये आकाशवाणी है,
1: हर पल आपके साथ।
0: समाचार हो या सदाबहार गीत,
1: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
0: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
1: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
0: आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओ, हमारे सैनिक हर परिस्थिति में देश की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। उनका त्याग समर्पण हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आइए उनके साहस वीरता को सलाम करें और हर प्रकार से उनके साथ हम डटे रहें।

अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। तो सुनना ना भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा, हर दूसरी और चौथे शनिवार को।

साथियों, सैनिक केवल सीमा पर ही नहीं बल्कि प्राकृतिक आपदाओं संकट की घड़ी में भी देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनकी वीरता हमेशा हम सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है।

राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे सैनिक कड़ाके की ठंड, धूप, बरसात में दिन रात सरहद की रक्षा करते हैं। तभी हम घरों में चैन की नींद सोते हैं। आपकी कर्तव्य निष्ठता को आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का सलाम। इसके साथ कार्यक्रम जय जवान संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम जय जवान, ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुलदस्ता, गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम लेकर हाजिर आपका दोस्त संत कौशिक, बेमिसाल, लाजवाब, हरदिल अजीज गैर फिल्मी गीतों के साथ। आइए गुलदस्ता की महफिल में सुनते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में कुछ रूह को सुकून देने वाली गजलें आप सभी श्रोताओं के लिए।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी।
2: 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है आकाशवाणी। सुनते रहें, जुड़े रहें।
3: लत तो लगेगी ही, क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है।
4: ऐसा देश है मेरा, हाँ, ऐसा देश है मेरा।
3: ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार रात्रि 8:15 पर FM 101.4 MHz अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। तो सुनना ना भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार को।
4: ऐसा देश है मेरा, हाँ, ऐसा देश है मेरा।
5: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
6: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

खुशी तो इसी गजल के साथ आज का गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गुलदस्ता यहीं संपन्न होता है। अपने दोस्त संत कौशिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता, यह आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत।

नमस्कार श्रोताओ, आकाशवाणी कुरुक्षेत्र के इस विशेष और सुमधुर कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आपके साथ आपका दोस्त संत कौशिक। साथियों, जीवन केवल भागदौड़ का नाम नहीं, बल्कि भावनाओं, रिश्तों, संघर्षों, सपनों और उम्मीदों की मधुर यात्रा भी है। कभी गीत हमारे मन की आवाज़ बन जाते हैं, तो कभी शब्द हमारे जीवन का अनुभव। आज के इस सफ़र में हम बात करेंगे इस

जिंदगी की, रिश्तों की, उम्मीदों की, कुछ प्रेरणाओं की और उन भावनाओं की जिन्हें हर इंसान कभी न कभी महसूस करता है। भारतीय संस्कृति में जब हम बात करते हैं संगीत की, तो लोक रंग जीवन की उमंग को और भी खूबसूरत बना देते हैं। जब भी पारंपरिक गीतों की बात होती है तो मन अपने आप झूम उठता है। लोकगीतों की मिठास हमें अपनी मिट्टी और संस्कृति से जोड़ती है। गीतों में बसती है मिट्टी की खुशबू, सुरों में छिपी होती है दिल की खुशबू। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं एक चुलबुले और रंगीन गीत के साथ।

0: लत तो लगेगी ही, क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है।
1: ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा,
0: ऐसा देश है मेरा। हर दूसरी और चौथे शनिवार रात्रि 8:15 पर FM 101.4 MHz अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। तो सुनना ना भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा, हर दूसरी और चौथे शनिवार को।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: शोधो गांव की सादगी और शहर की चमक दोनों का अपना अपना आकर्षण है, लेकिन सच्चा सौंदर्य हमेशा दिल की गहराइयों में होता है। हमारे पुराने फिल्मी गीतों में भारतीय जीवन की सहजता और मासूमियत बहुत ही खूबसूरती से दिखाई देती है। सादगी में जो बात है वो दिखावे में कहाँ, जी हाँ, सादगी में जो बात है वो दिखावे में कहाँ, दिल से निकली मुस्कान का कोई मुकाबला कहाँ।

शुद्ध सच्चा प्रेम केवल शब्दों में नहीं बल्कि यादों और भावनाओं में जीवित रहता है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो समय के साथ गहरे होते चले जाते हैं। प्रेम जीवन को संवेदनाओं से भर देता है। यह विश्वास, समर्पण और साथ निभाने का दूसरा नाम है। क्या खूब कहा है, कुछ रिश्ते दिल में इस तरह उतर जाते हैं कि वक्त गुजर जाए मगर वो नहीं भूलते।

0: लत तो लगेगी ही, क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है।
1: ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा,
0: ऐसा देश है मेरा। हर दूसरे और चौथे शनिवार रात्रि 8:15 पर FM 101.4 MHz अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। तो सुनना ना भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा, हर दूसरे और चौथे शनिवार को।
1: ऐसा

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

दोस्तों, जब किसी अपने का साथ जीवन में मिलता है तो दुनिया और भी खूबसूरत लगने लगती है। प्रेम शायद इंसान को संवेदनशील और सकारात्मक बना देता है। जिसे दिल से चाहो वही सबसे प्यारा लगता है। जिसे दिल से चाहो वही सबसे प्यारा लगता है। उसके साथ हर मौसम सुहाना लगता है।

श्रोताओ, कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे आते हैं, उनकी मौजूदगी से हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। उनके आने से ऐसा लगता है कि जैसे जीवन में बहार आ गई हो। कुछ लोग दुआओं की तरह मिलते हैं, जी हाँ, कुछ लोग दुआओं की तरह मिलते हैं और जीवन को खुशियों से भर देते हैं।

0: गीतों में भावनाएं हैं, बातों में एहसास, इन्हीं से रोशन रहता है जीवन का आकाश। इसी के साथ अपने दोस्त संत कौशिक को अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई सोच, नए गीतों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, मुस्कुराते रहिए, सुनते रहिए आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। अभी आप सुन रही थी कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। समय है हिंदी व अंग्रेजी में समाचारों का, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की, राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद है। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करे।

0: ये ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आर एन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहाँ तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
2: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल वेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकीय रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एक्सप्रेस टीम के टेलीलॉ नए बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है। नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
2: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। TMR जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
1: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
3: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित DRDO की रिसर्च सेंटर इमारत ने DRDO के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट 1 महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
4: 1 साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू LPG की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
5: पिछले 2 दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को LPG सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले 2 दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल LPG की सेल हुई है। पिछले 2 दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले पांच वर्षों में ये लगभग दोगुना होकर अब $35 करोड़ तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
6: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं

0: अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC U17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस VCK IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अजीब सुनिए लक्ष्मीपांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा गीत, आवाज़ें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, फिल्म का नाम आया सावन झूम के।

बहारों के सपने। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। मजरू सुल्तानपुरी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है राहुल देव वर्मा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देख लो ना, मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक ब्लॉकबस्टर फिल्म मेकर की, जिसने साल 1973 से साल 1989 के बीच अमिताभ बच्चन के साथ एक के बाद एक कई सुपरहिट फिल्में बनाई और सिनेमा के इतिहास पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों से लिखवा लिया।

0: धन्यवाद।
1: आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम बातें करेंगे जाने माने फिल्मकार प्रकाश मेहरा की। प्रकाश मेहरा का जन्म 13 जुलाई 1939 को बिजनौर में हुआ था और उनकी परवरिश दिल्ली के चांदनी चौक के इलाके में हुई। एक सामान्य परिदृश्य में पले बढ़े प्रकाश मेहरा ने आम आदमी की जिंदगी को बहुत करीब से देखा। उसके दुख दर्द, उसके जीवन की कमियों को और उसके जीवन में हो रही नाइंसाफियों को अपने जहन के भीतर जज्ब किया। तब उन्हें पता नहीं था कि वो आगे चलकर बन जाएंगे फिल्मकार और उनका नायक एक आम आदमी होगा जो बड़े बड़े कारनामे करेगा। सन 1950, प्रकाश मेहरा मुंबई आए नौकरी की तलाश में और किसी तरह से जिंदगी उन्हें फिल्मों की दुनिया में ले गई। वो बन गए प्रोडक्शन मैनेजर। बरस दर बरस प्रकाश मेहरा जिम्मेदारी भरा ये काम करते रहे और उसके बाद उन्होंने एक लकीर पार की। सन 1968 प्रकाश मेहरा के निर्देशन में पहली फिल्म आई हसीना मान जाएगी।

0: कदम।
1: हसीना मान जाएगी शशि कपूर की एक बेहतरीन फिल्म में शुमार हुई। ये फिल्म बेहद कामयाब थी। प्रकाश मेहरा की इस फिल्म के जरिए धाक जम गई। हसीना मान जाएगी बनाने के बाद प्रकाश मेहरा ने कुछ और फिल्में बनाई और इन फिल्मों के जरिए जैसे वो अपने मुहावरे को तलाश कर रहे थे, जैसे फिल्म संसार कदम दर कदम एक लेजेंड फिल्म मेकर तैयार कर रहा था। सन 1971 संजय खान और फिरोज खान को साथ में लेकर

प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों की कहानी पर बड़ा जोर देते थे और कोई अच्छी कहानी उनका मन मोह लेती थी। ऐसी ही एक अच्छी कहानी थी एक पुलिस वाले की कहानी, और प्रकाश मेहरा इस कहानी को लेकर अलग अलग नायकों के पास जाते रहे। ये नायक इस कहानी को ठुकराते रहे, लेकिन प्रकाश मेहरा का विश्वास कम नहीं हुआ। इस कहानी को एक तरफ रखा और सन 1972 में वो लेकर आए

0: इसी साल उनकी फिल्म आई आन बान। आखिरकार एक के बाद एक कई फ्लॉप फिल्म देने वाले एक बेहद लंबे कद के दुबले पतले अभिनेता अमिताभ बच्चन को लेकर उन्होंने अपनी उस महत्वाकांक्षी फिल्म पर काम शुरू किया। सन 1973 20 मई का दिन फिल्म जंजीर रिलीज हुई और इस फिल्म ने अमिताभ बच्चन को बना दिया एंग्री यंग मैन। दरअसल एंग्री यंग मैन ये जो जुमला है ये नाटककार जॉन ऑसबोर्न के प्ले लुक बैक इन एंगर से लिया गया है। इसी नाम की एक फिल्म बनी है। प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर के जरिए एंग्री यंग मैन बना दिया।
1: यही है वो इलाका जहाँ लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और न ही मैं ड्यूटी पर हूँ। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूँ।
2: मतलब कब बात बोलू साहब?

0: आज इतने बरस बाद भी फिल्म जंजीर एक कल्ट फिल्म मानी जाती है, एक कालजयी फिल्म जिसने एक बेमिसाल निर्देशक और एक जबरदस्त हीरो हिंदी फिल्म सिनेमा को दिया। फिल्म जंजीर के बाद प्रकाश मेहरा ने अगले 15 वर्षों में अमिताभ बच्चन के साथ 7 फिल्में और बनाई। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों से होकर गुजरें। सन 1976, खून पसीना।
1: अरे खून पसीने की जो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।

0: कसम इसे हाथ न लगाएंगे,
1: हाथ न लगाएंगे, हाथ न लगाएंगे।
0: अरे खून पसीने की तो मिलेगी तो खाएंगे, नहीं तो यारो हम भूखे ही सो जाएंगे।
2: इसी साल आई अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना के अभिनय वाली बेमिसाल फिल्म

0: की हेरा फेरी है और मत की हेरा फेरी।
1: सन 1981 प्रकाश मेहरा के करियर का एक बेमिसाल साल रहा। इस साल वो लेकर आए मुकद्दर का सिकंदर, एक बार फिर अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना एक साथ।
2: सिकंदर का है, मैं आऊं विशाल। पंडित जी शुरू कीजिए।
3: मंगलम भगवान विष्णु
2: अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सह रहा हूँ।
3: वस्त्र कंधे पर रखे
2: सिकंदर, क्या मत की कुछ बंद हो गया, चलो जी झड़प हो गई।
4: नहीं बताती दिला में झूठा कर दिया था, सिकंदर मुझे बचा कर यहाँ ले आया, अगर सिकंदर नहीं होता तो मैं ही तुम्हें होगी।
2: बस बस करो मेम साहब। क्या काम नहीं तेरे मेम साहब अच्छे से तू?
4: नहीं विशाल, मुझे तो सिकंदर सारी जिंदगी मेम साहब को करता।
2: नहीं
4: सिकंदर, आज मुझे कह लेने दो, आज मुझे कह लेने दो विशाल, सारी जिंदगी सिकंदर मुझसे दिल दिल में प्यार करता और मैंने इसे सिवाय नफरत का कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया।
2: सिकंदर ये तो क्या किया?
1: इसी साल आई फिल्म लावारिस।
4: तुम?
5: हाँ मैं। तुमने मुझे लावारिस कहा, जानती हो लावारिस क्या होता है?
6: मेम साहब लावारिस गंदी नाली का वो कीड़ा होता है जो न जीता है न मरता है, अपना पाप समझकर लोग जिसे फुटपाथ पर फेंक जाते हैं मरने के लिए। मौत भी कमबख्त उसे पूरा नहीं खाती, अधमरा छोड़ जाती तुम्हारे जैसे इंसानों के नोचने के लिए। इस दुनिया में कौन कैसा क्यों है ये जाने बगैर कभी किसी पे छींटे मत कसना, पर गुनाह के पीछे गुनाहगार कौन है ये कोई नहीं जानता।
1: प्रकाश मेहरा की फिल्में एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही थी। अमिताभ बच्चन का सितारा लगातार जगमगा रहा था। जाने माने फिल्मकार मनमोहन देसाई ने प्रकाश मेहरा के बारे में एक बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि शायद ही ऐसा कोई भारतीय होगा जिसने प्रकाश मेहरा की फिल्में नहीं देखी हों, एक ऐसा फिल्मकार जिसने ब्लॉकबस्टर टर्म को जन्म दिया, एक ऐसा फिल्मकार जिसने हिंदी सिनेमा में मसालेदार सिनेमा का नया व्याकरण गढ़ा और सारे देश को अपने तिलस्म की गिरफ्त में ले लिया। सन 1982 में आई नमक हलाल। सन 1984 अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा के जादुई साथ की फिल्म शराबी। कहते हैं कि जब सूरज बहुत तेज चमके उसके बाद शाम नजदीक होती है। एक के बाद एक कमाल की फिल्में देने के बाद जैसे वक्त करवट ले रहा था। सन 1989 प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन के साथ वाली एक बड़ी फिल्म आई जादूगर। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म चारों खाने चित हो गई। ऐसा लगा जैसे एक बेमिसाल फिल्मकार का जादू टूट गया। एक वक्त था जो पीछे छूट गया, एक चमक थी जो मध्यम पड़ गई, एक कहानी थी जो खत्म होने लगी। अमिताभ बच्चन के अलावा प्रकाश मेहरा ने दूसरे कलाकारों के साथ भी काम किया है। सन 1974 में प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली फिल्म आई थी हाथ की सफाई।
7: वादा

सन 1991 में अनिल कपूर को लेकर प्रकाश मेहरा ने बनाई जिंदगी एक जुआ। सन 1996 में जाने माने अभिनेता राजकुमार के बेटे पुरु राजकुमार को फिल्मों में उतारने के लिए उन्होंने निर्देशित की बाल ब्रह्मचारी। ये प्रकाश मेहरा के निर्देशन वाली आखिरी फिल्म थी। इसके बाद प्रकाश मेहरा ने किसी फिल्म का निर्देशन नहीं किया। सन 1993 में आई फिल्म दलाल के निर्माता प्रकाश मेहरा ही थे। इस फिल्म के निर्देशक थे पार्थो घोष। प्रकाश मेहरा ने एक जमाने में अमिताभ बच्चन से ये वादा किया था कि जिस दिन वो हिट फिल्म नहीं बना पाएंगे उस दिन अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर देंगे। सन 1989 के बाद प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन के साथ कोई फिल्म नहीं की। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन, इन लोगों ने मिलकर हिंदी सिनेमा का एक नया इतिहास गढ़ा है, ब्लॉकबस्टर फिल्मों का इतिहास। वो समय जरूर बीत गया लेकिन मसालेदार फिल्मों का दौर नहीं बीता। अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा को चाहने वाले आज भी बड़े चाव से देखते हैं 70 और 80 के दशक की वो बेमिसाल फिल्में।

17 मई 2009 प्रकाश मेहरा ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। पीछे रह गईं उनकी बनाई बेमिसाल फिल्में, वो कहानियां जिन्होंने हमें हंसाया और रुलाया, वो कहानियां जिन्होंने हमारा दिल जीता, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने तालियां बजाई, वो फिल्में जिनके दृश्यों को देखकर हमने निर्देशक की वाह वाह की। आज प्रकाश मेहरा नहीं है, लेकिन उनका सिनेमा है, और उस सिनेमा का कमाल है, किसी लेखक ने कहीं लिखा, फॉर्मूला खत्म नहीं होता। प्रकाश मेहरा की फिल्मों का फॉर्मूला आज दूसरे निर्देशकों की फिल्मों में जिंदा है। फॉर्मूला कभी खत्म नहीं होता। फॉर्मूला फिल्मों में प्रकाश मेहरा हमेशा जिंदा रहेंगे।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था हिंदी सिनेमा के बेमिसाल निर्देशक प्रकाश मेहरा पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान।

0: उत्पादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति रमेश गोखले। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती।

FM 101.4 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कुरुक्षेत्र केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के ठीक 10 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चांदनी रातें।

0: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन।
1: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
2: श्रोताओं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास अगली फरमाइश प्राप्त हुई है मथुरा से सबा अंसारी शकील अंसारी बुशरा हिना गुलिस्ता नंदिनी और अंजलि। अगला मैसेज जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान सलमान इरफान इसरार और नरगिस खातून। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी इकबाल सितारा बेगम नसरीन रोजी बिट्टू साजदा और हिना कोसर। फाजिलका पंजाब से भूषण खेड़ा विशु विशाल लाडी खेड़ा शालिनी टिवानशी वानी आरबी खेड़ा जीवन सिंह बुक और समस्त खेड़ा परिवार। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। मोहम्मद जाकिर मंसूरी कमरून सबिस्ता पलक लुबना और यश मंसूरी मंसूरी रेडियो लिस्नर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से हमारे श्रोता जुड़े हैं। उत्तम कुमार भगत श्वेता किशु ताशु अर्नव और सत्यम आनंद पांकुड़ झारखंड से बोहड़ागाछी पश्चिमी बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी। तालुका पंढरपुर से जाकिर मुलानी सुमैया सुबान समीर सलमा मुमताज दिलशाद नसीर और समस्त मुलानी परिवार। ग्राम सीली कला जिला यमुनानगर हरियाणा से जयसिंह काम्बोज वैजयंत काम्बोज रिदम निश्चय जयपाल धीमान और खुर्शीद चमरोडी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश कगनेजा पूनम विशाल दिशानी और निमित आहुजा। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं राम तेरी गंगा मैली फिल्म से ये गीत।

0: ये आकाशवाणी है,
1: हर पल आपके साथ।
0: समाचार हो या सदाबहार गीत,
1: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
0: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
1: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
0: आकाशवाणी।

0: लत तो लगेगी ही, क्योंकि प्रोग्राम ही ऐसा है।
1: ऐसा देश है मेरा, हाँ, ऐसा देश है मेरा।
0: ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार रात्रि 8:15 पर FM 101.4 MHz अपना आकाशवाणी कुरुक्षेत्र। तो सुनना ना भूलिए कार्यक्रम ऐसा देश है मेरा हर दूसरे और चौथे शनिवार को।
1: ऐसा देश है मेरा, हाँ, ऐसा देश है मेरा।
2: श्रोताओं, इन संदेशों के बाद आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सुनते हैं ब्लैकमेल फिल्म से ये गीत। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा, सोनिया और विशाल निजामाबाद, तेलंगाना से वाहिद रुमानी, मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसी, जुनेद जुबेर, मुकराम नोमन, जाकिर फजील, मेहरनगर उमरखेड महाराष्ट्र से अभिजीत, गवहानकर राही, सरिता, प्रणीता, अर्जुन, भागलपुर बिहार से अश्विनी कुमार साह, अमरदीप कुमार, पशुपति साह और टिकू मुस्कान, मेरठ कैंट दिग्दर्शन और कविता गौड हमारे से जुड़े हैं। मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा, तहसील रोड गंज टुंडवारा से ए एच रही, गुड़िया बेगम और वकील प्रेमी और हम्माद जली जमील, पटियाली रोड गंज टुंडवारा से एम शकील कुरैशी, नुसरत बेगम, एजाद अकील और बेबी अरिबा, खुर्जा उत्तर प्रदेश से हमारे नियमित श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश चंदन और अंकुश अरोड़ा, संभाजी चौक महाराष्ट्र से सुधाकर गायकवाड़, विकास, प्रीति, आशा, दीपांजलि, दीक्षा और शशांक बागमारे, मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी, सौरभ, साइना और निवान शर्मा, गांव हरूडी चांडील झारखंड से तुलसीदास महतो, कल्पना, मनोरमा, मनमोहिनी, दीनबंधु महतो, और ये एसएमएस हमारे श्रोताओं ने भेजा है। गंज डुंडवारा से समशूल कमर राही, यासीन हाशमी, उस्मान अयान बेगम और कलीम, भागलपुर से हमारे श्रोता दिलीप कुमार सोनी, मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु सागर, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक, बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता, साक्षी, जयश्री, अंजलि, बाला साहब, करवा, राम निवास अग्रवाल, धनंजय और पीबी कुलथे, जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना अश्विनी और विपुल कामड़े, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव और भानुप्रिया। आइए आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत।

0: ये आकाशवाणी है,
1: हर पल आपके साथ।
0: समाचार हो या सदाबहार गीत,
1: सैनिक साथियों का कार्यक्रम या हो कमेंट्री,
0: नई नई तकनीकों के साथ बदलती है आकाशवाणी।
1: 90 वर्ष में प्रवेश कर रही है गौरवपूर्ण प्रसारण की ऐतिहासिक परंपरा की पहचान
0: आकाशवाणी।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोता संदेशों के बाद एसएमएस हमें प्राप्त हो रही लगातार। करणवीर हाउस बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दीपेंद्र, वीरेंद्र, कुलदीप, सीमू एकम, दमन और अभिजोत, अगला एसएमएस। गांव निम्नाबाद जिला जींद हरियाणा से हमारे निमित्त श्रोता हैं ये जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत और करमजीत कौर। शास्त्री नगर बीड शहर से हमारे श्रोता जुड़े हैं विशाल, थानेसर से हमारे थानेसर कुरुक्षेत्र से हमारे श्रोता हैं श्याम शर्मा, मिली, चिराग, राघव, तनुज, पलक शर्मा, मास्टर उदेश, मेहर अरोड़ा, ममता, कीर्ति और भूमिका, श्री गंगानगर राजस्थान से, कनेरा मोहल्ला पटियाला से हमारे नियमित श्रोता मुकेश बत्ता, नीलम, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता, कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल, ये हमारे नियमित श्रोता हैं, लगातार हम तक मैसेज पहुंचाते हैं। सतीश, सचिन, योगेश और युद्धव कड़वासरा, गांव कलाना राजस्थान से ये हमारे श्रोता जुड़े हैं हमसे। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, टोमस, पिंकी, लवली और आरती अरोड़ा। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं ये धमाकेदार गीत फिल्म वारिस से।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरित मानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरित मानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: श्रोताओं, इस संदेश के बाद कार्यक्रम चांदनी रातें आगे बढ़ाते हैं। जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हमारे श्रोता जुड़े हैं। मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, काजल, सीमा, मानसी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। अगला एसएमएस हमें प्राप्त हुआ है ग्राम जेवरा हिसार से वीरेंद्र भयान शमशेर

शुद्ध कार्यक्रम चांदनी रातें अंतिम प्रस्तुति पर हम पहुंच चुके हैं। आप सभी श्रोताओं का प्यार और आशीर्वाद स्नेह लगातार हम तक पहुंच रहा है आपके मैसेजेस के माध्यम से। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति तीसा फिल्म से आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सिंधोली मीरगंज परेली से जिशान वारसी इमरान शेख रेहान शेख, करूला मुरादाबाद से अयूब खान इरम और सोएब खान, सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान जयनारायण तरुण चौहान और प्रतीक चौहान, सेक्टर 5 जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र मोहिनी कल्पित और बेबी करवी। आप सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति आपकी नजर।

श्रोताओ, तेजा फिल्म के इस गीत के साथ आज का कार्यक्रम चांदनी रातें यहीं संपन्न होता है। अपने दोस्त संत कौशिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम चांदनी रातें। ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है। थोड़ी देर में हिंदी में समाचार, 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जाँच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पेरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। सरकार ने कहा है कि देश में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुगता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2025 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Senior BJP leader Shubhendu Adhikari will be the new chief minister of West Bengal. BJP legislature party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become the first BJP chief minister of the state. Addressing media, Union Home Minister Amit Shah said, Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
3: अभी कुछ दिन पहले ही चुनाव की
4: The election process was completed just a few days ago. Around 8 proposals and supporting nominations were received and all of them were in favor of the same name. Sufficient time was also given for any other nomination, but no second name was proposed. Therefore, as the central observer, I declare Shubhendu Adhikari as the elected leader of the West Bengal Legislative Party.
3: विधान मंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं.
2: Mr. Shah expressed gratitude to the people for giving a strong verdict to the BJP despite numerous instances of violence and brutality. Mr. Shah further said that the expectations of the people of Bengal have placed on them and the mandate that they have given with hope and trust, they will make every effort to ensure that their faith is not broken in any way. Addressing the meeting, the Chief Minister Designate Shubhendu Adhikari said, Whatever guarantees have been announced by Prime Minister Narendra Modi, the BJP government in the state will fulfill all responsibilities. Tomorrow morning, the oath-taking ceremony of the government will be held at the Brigade Parade Ground. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK Chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. In another development, reports are also coming in that the swearing-in ceremony which was to take place tomorrow will not be held. Earlier, TVK had claimed that the actor-turned-politician is all set to form the government as he again met the governor today and staked claim to form the government, saying that he has majority numbers. Meanwhile, the Indian Union Muslim League headed by Professor Khadir Mohiddin has said that his party has not given a letter of support to Tamil Raga Vetri Karagam or TVK. In another surprise move, AMMK party leader TTV Dinakaran, a partner in the ND alliance, has approached the Governor Vishwanath Arlekar late evening and submitted a letter of support from lone MLA S. Kamaraj from Manaragudi for AIADMK General Secretary Edappadi K. Palaniswamy to form the government. Meanwhile, National Democratic Alliance Chief Ministerial Candidate N. Rangasamy met Lieutenant Governor K. Kailashanathan and staked claim to form the next government in Puducherry. Mr. Rangasamy handed over letters of support from majority of MLAs to the Lieutenant Governor. NDA Alliance MLAs and Alliance leaders accompanied him. Earlier, a meeting of NDA Alliance parties and elected MLAs elected Rangasamy as the Chief Ministerial Candidate. Supreme Court today expressed concern over the rising drug menace in Punjab. The apex court called for a fundamental shift in how the state tackles narcotics, saying that the situation is alarming. A bench comprising Chief Justice Suryakant and Justice Joy Malia Bakshi referred to a recent incident involving a mother who lost all her 5 sons to drug addiction. The bench also pulled up the state police for focusing on low-level offenders for publicity while allowing major traffickers to remain at large. The apex court also highlighted the huge pendency cases lodged under the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act. The Health Ministry has activated precautionary surveillance measures amid low global risk assessment of Hanta virus cases. Sources said the Health Ministry is closely monitoring the evolving situation relating to reported cases of Hanta virus infection on board the cruise ship MV Hontius. This is being done in coordination with the National Center for Disease Control, Integrated Disease Surveillance Program, World Health Organization and other international health authorities. Somnath Amrit Parv will be celebrated to mark the 75th anniversary of the reconstruction of Somnath Temple. The Prime Minister Narendra Modi will participate in the Somnath Amrit Parv on the 11th of this month at Prabhas Patan in Somnath. Speaking to media, Gujarat State Cabinet Minister Jitubhai Vaghani said that various events will be organized at Somnath as part of the Somnath Amrit Parv, showcasing India's rich cultural and heritage traditions. And that is the end of this news bulletin.
5: 104 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का कुरुक्षेत्र केंद्र है। रात्रि के 11:10 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण यहीं संपन्न होते हैं। कल प्रातः 5:55 पर आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।